नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट

0: शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के 2 मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती।

सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ हैं। वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आइए सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ईश्वर प्रदत्त इस जीवन में हमारा मन प्रधान है, वो हमारे वास्तविक विचारों की प्रतिमूर्ति है। मन निर्मल तो जीवन संयमित।

प्रभु नाम जपते जपते मन भूल जाता है संसार के बंधनों को। इस मगन मन से होते हैं असंभव कार्य भी संभव।

आस्था का ही अनोखा रूप है देशभक्ति। मातृभूमि की सेवा और उनके प्रति समर्पण की भावना ईश्वर भक्ति के समान ही संतोष देने वाली है। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं देशगान।

सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस आज सुनिएगा 250वां भाग। से संगीत सरिता के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक भाग तीसरी। आप सुन सकते हैं कलाकार पंडित कालीनाथ मिश्र, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का समय 7:00 का। हम है राही प्यार के कार्यक्रम सुन सकते हैं 7:30 से 8:00 से समाचार प्रभात, 8:15 से त्रिवेणी, 8:30 से चित्रलोक, 9:30 से आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार खयाम पर। सुबह 10:00 से सेलुलॉयड के सितारे इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुनेगा। अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। कार्यक्रम रंग तरंग का समय 11:00 का और 12:00 से हिंदी में समाचार। दोपहर 12:05 से यादों की महफिल, 1:00 से सुरीला सफर, 2:00 सुनिए त्रिवेणी और 2:15 से दोपहर समाचार। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 से, 3:00 से सखी सहेली, 4:00 सुनिएगा कार्यक्रम आज के मेहमान। इसमें आज सुनिए अभिनेता निर्देशक पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत।

5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण। शाम 5:30 से तराने नए पुराने और 6 बजे से हिंदी में समाचार। शाम 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 से संध्या रंजन। शाम 6:45 से सुनिए संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक। आज सुनिएगा तीसरी कड़ी, कलाकार हैं पंडित कालीनाथ मिश्र। शाम 7 बजे से जय माला। 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग।

रात 8 बजे से हवा महल में सुनिए झल की अधूरी बात। लेखन वीएम आनंद का, निर्देशन विजय दीपक छिब्बर का। रात 8:15 से नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुन सकते हैं चित्रलोक। 8:45 से समाचार संध्या। रात 9 बजे से कार्यक्रम आपके लिए। से आज के फनकार। आज रात ये आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता उत्पल दत्त पर। रात 10 बजे से छाया गीत। 10:30 से सुनिए ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस। आज सुनिए 285वीं भाग।

राक्षस इतने बलवान और बड़े योद्धा हैं, उन्हें नन्हे नन्हे वानर भला किस प्रकार मार सकेंगे? सीता जी का ये संशय हनुमान ने सुमेरु जैसा अपना आकार दिखाकर पल भर में मिटा दिया। फिर छोटा रूप धारण कर बोले, हे माता, वानरों में बलबुद्धि तो नहीं होती, किंतु प्रभु की कृपा से छोटा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। सीता जी को सभी प्रकार से संतुष्ट करके पवन पुत्र ने अपनी भूख मिटाने के लिए न केवल फल फूलों का आहार करना आरंभ किया, बल्कि इस क्रम में पूरी वाटिका ही उजाड़ डाली। रोक टोक करने वाले रखवालों को मसल कुचल कर मार डाला। विध्वंस का समाचार सुनकर रावण ने बंदर को पकड़ लाने के लिए योद्धा भेजे। उनका संहार सुन अपने पुत्र अक्षय कुमार को पठाया। एक भयंकर गर्जन के साथ जब हनुमान ने एक वृक्ष उखाड़कर उसे भी मार डाला तो रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को आदेश दिया कि वो जाकर

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं, आपको रामकृष्ण दास का नमस्कार। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं आज के तबला कलाकार श्री कालीनाथ मिश्रा जी का।
2: नमस्कार। नमस्कार
1: मिश्रा जी, आप बनारस घराने के बहुत ही सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। हमने सुना है कि बनारस के जो बाज है उसको पूरब अंग का बाज कहा जाता है। दिल्ली से तबला शुरू हुआ और उसके बाद लखनऊ आया और लखनऊ से बनारस। तो बनारस बाज का क्या खासियत है? इसमें हमने सुना है कुछ थपिया बाज भी होता है और दिल्ली किनार का बाज होता है, तो इस बारे में थोड़ा आप हमारे श्रोताओं के लिए प्रकाश डालें।
2: सबसे पहले मैं कालीनाथ मिश्रा अपने साथियों कलाकारों के साथ सुनने वाले सभी संगीत सरिता को मैं प्रणाम करता हूं। और जैसा कि दास बाबू ने जिक्र किया थाप,

0: हमारे बनारस घराने का जो थाप का ये
1: क्या बात,
0: ये जो तका का जो बोल है, पहले तो मैं बताऊं आपको दास बाबू कि तबला का मतलब क्या होता है। तबला ये फारसी शब्द है, इसका नाम था तबल
1: जी।
0: और हमारे गुरु जी ने मुझे बताया कि त से होता है तल, ब से होता है बल और ल से होता है लय।
1: क्या बात,
0: और हमारा लय प्रवाह है ये, तो तीनों का एक समावेश होना चाहिए।
1: हाँ, इसीलिए मुझे याद आया, किसी तबला वादक ने कहा है कि पखावज से तबला बना है।
0: जी हाँ जी हाँ,
1: कि तब भी बोला इसे कुछ बात
0: जी जी
1: है।
0: हाँ,
1: इसके बारे में
0: पखावज
1: बताइए ना।
0: क्या है दास बाबू, कि पखावज को काट के तबला का निर्माण हुआ और ये सारा से जाता है हमारे अमीर खुसरू साहब को।
1: अच्छा,
0: हर म्यूजिक के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ पखावज मैच नहीं होता था, तो उन्होंने पखावज को काटा और सारा श्रेय जाता है हमारे दिल्ली घराने के सिद्धार्थ खान साहब को, जिन्होंने तबले के बोलों को निर्माण किया कि तबला कैसे बचेगा। तो पखावज को काटा, तो पखावज तो लकड़ी था, तो उसको काट के बनाया गया और सिद्धार्थ खान साहब ने बजाया उसको। तो थाप का जो अंदाज है वो हमारे श्रेय जाता है हमारे बनारस घराने के राम सहाय जी, बूंदी महाराज जी, किशन महाराज जी। किशन महाराज जी का थाप का तो खैर क्या बात है। थाप का एक अंदाज होता है कि आपके बोलों में वजन होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: लेकिन वो थाप आप हर जगह किसी के साथ अगर आप संगत कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ, गाने के साथ,
1: नाच में ज्यादा थाप लगा
0: नाच
1: सकते।
0: में, और अगर तबला प्लेयर, तबला वादक सोलो बजा रहा है,
1: अच्छा,
0: तो वो उस वक्त स्टेज पर शेर है, वो थाप भी दे सकता है, जोर से बजा सकता है। वो थाप का एक अंदाज होता है, ये भी थाप है
1: जी।
0: लेकिन ये हम गाने के साथ कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ कर, लेकिन जब सोलो बजाएंगे
1: क्या कहें,
0: लगे कि किसी ने पानी में एक लाठी मार दिया।
1: आज आप कौन सा ताल बजाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए?
0: आज हमने सोचा कि ताल प्रवाह है, तो सुनने वाले श्रोताओं को मैं आज झपताल के बारे में बताता हूं। झपताल, वो पलक झपता है ना, वहां से शुरुआत हुई झपताल। दस मात्रे का ताल है और इसमें भी दो ताल है। देखिए पहले कैसे बनाने वालों ने कैसा बनाया है कि रूपक ताल के तीन चार अलग अलग तालों का नाम है, तीन ताल में भी अद्धा ताल करते हैं, अलग अलग आदि ताल भी है। झपताल में दो ताल है, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, एक पर ताली, तीन पर ताली, आठ पर ताली और छह पे खाली है। और इसी का एक ताल का नाम है सुल ताल, सुलफाक ताल, वो भी दस मात्रे का है। तो प्रस्तुत करता हूं श्रोता झपताल।
1: मैं इसमें और एक बात जानना
0: चाहूंगा,
1: आपने सुलताल के जिक्र की।
0: हाँ,
1: सुलताल पखावज के लिए बजता
0: जी, पखावज का बोल है वो।
1: और एक ताल होता है उसूले फाकता,
0: वही वही है
1: वो। क्या, लेकिन वो पखावज पे तो नहीं बजता होगा?
0: नहीं, पखावज का ही है वो, धा।
1: अच्छा,
0: धा देन।
1: और अमीर खुसरो की बनाई हुई ताल,
0: अमीर खुसरो साहब का है, लेकिन वही पखावज के अंदाज से बनाया।
1: अच्छा,
0: धा धा दिन धा टीट धा टेटे धा गदे गिन धा, ये अंदाज है। अब वो झपताल कैसे बजेगा श्रोता, सुनिए दास बाबू प्रस्तुत है झपताल।

0: अब देखिए दास बाबू, ये हमारे बनारस की खास स्टाइल है
1: जी,
0: उसका एक अंदाज है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने के पहले आलाप जोड़ शुरू करते हैं बिना तार के
1: जी,
0: उसी तरह से तबला वादक भी शुरू कर सकता है
1: जी,
0: जिसको कहते हैं हम आमद।
1: अच्छा,
0: ताल में आने का अंदाज़।

इसको कहते हैं गमक। ये आपको ज्यादातर सरोद में मिलेगा। मुझे याद है कि मैं कार्तिक कुमार जी के साथ जब बजा रहा था इसी संगीत सरिता में जी, तो

0: क्या बात है मिश्रा जी, आपने डग्गे का काम बड़ी अच्छी तरह से बताया, बहुत अच्छा लगा। इससे मुझे याद आ रहा है आप ही के घराने के एक बहुत अच्छे तबला वादक कुमार बोस जी,
1: क्या
0: पंडित कुमार बोस, उन्होंने भी डग्गा पर बहुत काम किया है।
1: आपको मैं बता दूं दास बाबू, आपने नाम जिक्र छेड़ा तो किशन महाराज जी के ऐसे ऐसे शागिर्द हैं, उसमें से इनको तो मैं कहता हूं कि ही इज जस्ट लाइक टाइगर ऑन स्टेज, कुमार दादा। उनका रियाज करने का अंदाज, अरविंद आजाद है देखिए पूना में
0: जी,
1: उनका भी एक अंदाज है, तो उनका जो तरीका है वो किशन जी के, महाराज जी के, हमारे गुरु जी के शिष्य हैं वो।
0: इसी सिलसिले में और एक बात याद आ रही है, जब मैं कुछ तबला वादकों से बात कर रहा था तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये बनारस के तबला वादक कभी कभी ढोलक का अंग भी डग्गे में दिखा
1: जी हाँ, जी हाँ, एकदम जरूर
0: है। उसका क्या मामला है? और जब किशन महाराज जी से एक बार मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे ताल वाद्य
1: जी
0: का समावेश बनारस के तबले में
1: जी
0: आया
1: हाँ,
0: है
1: जी हाँ,
0: उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन हमारा अभी ये एपिसोड चल रहा था झपतार
0: जी,
1: हम जब आगे के एपिसोड में आएंगे कि दादरा कहरवा क्या होता है उसमें हम जरूर दिखाएंगे। दास बाबू, मैंने पहले भी कहा था कि पुराने फिल्मों में प्योर क्लासिकल को लिया गया है
0: जी।
1: आपको पता है फिल्म प्रोफेसर में झपतार का एक बड़ा सुंदर गाना है,
0: अच्छा,
1: लता दीदी और रफी साहब का गाया हुआ है।

ताल प्रवाह इस श्रृंखला की ये थी तीसरी कड़ी। जाने माने तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस कुछ ही पलों के बाद।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संगीतकार खयाम की पुण्यतिथि, तो आज के इस कार्यक्रम में उनके संगीतबद्ध गीतों के जरिए उन्हें याद करेंगे।

लता मंगेशकर और हरी ईरानी की आवाज में हसरत जयपुरी की बोल आप सुन रहे थे खयाम का संगीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। खयाम का संगीत बद किया ये गीत फिर सुबह होगी फिल्म से है आशा भोसले की आवाज साहिल लुधियानवी के बोल।

फिर सुबह होगी। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, खय्याम का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: खयाम का संगीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के फिल्म के इस गीत में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा, तलत महमूद का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

तमाशे तू दिखाए जा के हम तेरे चिराग हैं, जलाए जा बुझाए जा हम तेरे चिराग हैं, जलाए

0: तेरे चराग है, जलाए जा बुझाए जा, हम तेरे चराग है, जलाए जा बुझाए जा।
1: अली बाबा और 40 चोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज, असद भोपाली के बोल, उषा खन्ना का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आपको बता दें कि सुबह 9:30 पर आप आज के फनकार कार्यक्रम सुन सकते हैं, जो कि संगीतकार खयाम पर केंद्रित है, और इसके साथ ही 10 बजे से पुनः प्रसारण में सुनिए अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: हल्दी के गुणों से भरा वीको टर्मरिक WSO क्रीम, जो आपके चेहरे के कील और मुहासे दूर करे और आपको दे प्राकृतिक सुंदरता, अब सिर्फ 10 रुपए की सैशे पैक में भी।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मशहूरों में जान तो दांतों की शान, यही है वीको की पहचान।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मोहब्बत इसको कहते हैं। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, खयाम का संगीत। संगीतकार खयाम की पुण्यतिथि पर आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम उन्हीं के संगीतबद्ध गीतों से सजा है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की अगली रचना फिल्म शोला और शबनम से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, कैफी आजमी के बोल।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
4: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
3: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
5: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
3: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
6: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA

0: अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
1: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जांच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
3: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
0: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रूपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक

कुख्यात गिरोह के तीन आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की

0: आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मयूरभंज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया, वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता। भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोक गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे

0: स्वादिष्ट स्पेस डिश। हिंदुस्तान की खबर है, पत्र लिखता है भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा, बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू। ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार। सारी दुनिया में 19 अगस्त का दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आपको इसका इतिहास बताएं। दरअसल विश्व फोटोग्राफी दिवस का जो ताल्लुक है वो है डगेरोटाइप नाम की एक फोटोग्राफी प्रोसेस से, जिसका आविष्कार किया था फ्रांस के लुईस डगेरो और जोसेफ निकोफोन ने 1837 में। फिर हुआ ये कि 9 जनवरी 1839 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज ने डगेरोटाइप प्रोसेस की उद्घोषणा की और 19 अगस्त 1839 के दिन फ्रांस की सरकार ने इसका पेटेंट खरीद लिया और इसे सारी दुनिया के लिए मुफ्त में उपलब्ध करवा दिया। तो इस तरह से ये मानना चाहिए कि 19 अगस्त के दिन फोटोग्राफी की सुविधा सारी दुनिया के लिए उपलब्ध हो गई थी और इसलिए विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। जरा सोचिए कि वो जमाना कैसा था जब फोटोग्राफी बड़ा ही महंगा शौक होता था और बहुत ही रईस लोग अपने फोटो खिंचवा सकते थे।

फोटोग्राफी ने विज्ञान की प्रगति के साथ बहुत सारे बदलाव देखे हैं। एक जमाना था जब फोटोग्राफी के लिए फिल्म रोल की जरूरत पड़ती थी और एक निश्चित संख्या में फोटो क्लिक करने के बाद ही उस फिल्म को धुलने भेज दिया जाता था। जब वो डेवलप होके और प्रिंट होके आती थी तब हमें ये देखने मिलता था कि तस्वीरें किस तरह से आई हैं। इनमें से कई तस्वीरें बेकार भी हो जाती थी। जाहिर है कि फिल्म रोल वाले वो दिन बड़े ही सुहावने थे और बहुत ज्यादा जिज्ञासा और बेकरारी से भरे हुए थे, क्योंकि फिल्म रोल के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता था। आज भी वो काली सफेद तस्वीरें पुराने जमाने की यादों को हमारे सामने ताजा कर देती हैं।

आगे चलकर जमाना बदल गया और अब तो वो जमाना आ गया है जब फोटोग्राफी के लिए लोग कैमरे से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं। जरा सोचिए कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मोबाइल आपके लिए कम्युनिकेशन मीडियम का काम भी करता है और दूसरी तरफ वो आपके लिए कैमरे का काम भी करता है। जिंदगी के हर महत्वपूर्ण या आम पल को आप तस्वीरों में बांध सकते हैं, लेकिन इसका असर ये हुआ कि तस्वीरों का जो महत्व था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि तस्वीरें बड़ी आम हो गई। ये तस्वीर खींची और ये सोशल मीडिया पर चढ़ा दी या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज दी और उन्होंने फौरन देख ली और वो खुश भी हो गए। यानी चीजें आसान हो गईं तो उनका महत्व कम हो गया, पर फिर भी आज जिंदगी के कुछ पल तस्वीरों में कैद हो जाते हैं और हम विकल होकर उन पलों को याद किया करते हैं।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

सुखिंदर सिंह और ए आर रहमान की आवाजों में आप सुन रहे थे ए आर रहमान का संगीतबद्ध किया ये गीत द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से। और वाकई हमारे देश की बात ही कुछ और है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी विरासत हमें हमारे सभी साथियों ने सौंपी है, चाहे वो हमारे शहीद हों या हों हमारे साहित्यकार या संत, सभी ने हमें कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जिससे हमारी संस्कृति समृद्ध हुई है। आज गोस्वामी तुलसीदास की जयंती है, जिनका नाम बचपन में राम बोला रखा गया था, और राम भक्ति में लीन संत तुलसीदास ने श्री राम के चरित्र को विभिन्न रचनाओं में ढाला। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पाठ वर्षों से घर घरों में किया जाता है। अवधि भाषा में रचित इस महाकाव्य को आप विविध भारती पर भी रोजाना सुनते हैं सुबह 6:35 से। तो संत कवि तुलसीदास जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हैं और एक ऐसा गीत सुनते हैं जिनमें रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को शामिल किया गया है।

0: विक्रम मोंटर से की आवाज़ और उन्हीं के संगीतबद्ध किया ये गीत आपने सुना राम सेतु फिल्म से। इसे लिखा शेखर अस्तित्व ने और साथ ही तुलसीदास कृत रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां भी इसमें शामिल रही।
1: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, CID, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
3: मैं यहां, यहां।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

जबरिया जोड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। तनिष्क बागची का संगीत, रश्मि विराग के बोल, अल्तमश फरीदी और यासिर देसाई की आवाजें। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर चित्रलोक। और इस दुनिया में सबसे कीमती है वो भावना जो एक इंसान को दूसरे इंसान से प्रेम सहानुभूति रखने के लिए प्रेरित करती है। वो व्यक्ति जो स्वयं से पहले दूसरों को रखते हैं, मानवता की एक मिसाल कायम करते हैं और अपनी इस भावना से हमें भी प्रभावित करते हैं। और इसी भावना को उजागर करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रतिवर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को उन व्यक्तियों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने मानवतावादी संकटों में यानी कि युद्ध आदि परिस्थितियों में मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी जान गंवाई। क्योंकि जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई युद्ध हो, सशस्त्र संघर्ष हो, तो उसमें जितने दोनों पक्ष के व्यक्ति जो लड़ रहे होते हैं, वास्तविक रूप से युद्ध में जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, उन्हें तो नुकसान कई बार पहुंचता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो व्यक्ति वहाँ लोगों के संरक्षण के लिए जाते हैं, उन तक जरूरी सामान पहुंचाते हैं या चिकित्सकीय सहायता लेकर जाते हैं, उन्हें भी बहुत बड़े पैमाने पर अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो उन्हें याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को मनाया गया 19 अगस्त 2009 को। और हम ऐसे सभी व्यक्तियों को नमन करते हैं।

0: भाग मिल्खा भाग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सिद्धार्थ महादेवन और साथियों की आवाजें, प्रसून जोशी के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

जावेद अली की आवाज में आप सुन रहे थे पुष्पा द राइज पार्ट वन। फिल्म से ये गीत राखी बलम ने इसे लिखा, देवी श्री प्रसाद ने संगीत से सजाया। और आज है विश्व फोटोग्राफी दिवस, जो कि हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस में डेगुराइट फोटोग्राफी प्रक्रिया के पेटेंट की घोषणा की गई थी और फोटोग्राफी की इस तकनीक को लुई डिग्रे और जोसेफ नाइस फोर निप्स ने इजाद किया था, इसीलिए इसे डेगुराइट फोटोग्राफी कहते हैं। और तो जब साल 2010 में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने की शुरुआत की गई तो इस तारीख को इसीलिए चुना गया। और फोटोग्राफी तो बहुत ही अच्छी चीजें मानी जाती है, क्योंकि अगर आप किसी याद को कैद करना चाहते हैं, कहीं आप घूमने जाते हैं या किसी खास उत्सव में आप शामिल होते हैं तो फोटोग्राफ आप अपने पास रखते हैं। बचपन की कितनी तस्वीरें हमारे पास है और हमारे जो पूर्वज हैं उनकी, उन्हें भी हम अपनी उनकी तस्वीरों में देख लेते हैं। लेकिन इन दिनों तस्वीर की तकनीक बदलती चली जा रही है और मोबाइल अब हमारे हाथ में आ चुका है और हम केवल यादों को कैद करने का माध्यम ही तस्वीर को नहीं बनाते बल्कि लगातार ढेर सारी तस्वीरें खींचते हैं, जिन्हें देखने के लिए भी कई बार हमारे पास वक्त नहीं होता। क्योंकि पहले जिस तरह से चुनिंदा तस्वीरें खींची जाती थी और बैठकर एक साथ एल्बम में वो तस्वीरें देखी जाती थी, और जब भी कभी सब हम सब मिलते थे, चाहे वो गर्मियों की छुट्टियां हो, चाहे कोई भी मौसम हो, और जब भी कुछ ज्यादा लोग हम मिलके बैठते तो बस एल्बम निकाला जाता और याद की जाती वो सारी बातें कि उस तस्वीर को खींचने से ठीक पहले क्या हुआ था, क्यों किसी ने ऐसा अजीब सा मुंह बनाया हुआ है, ये क्यों कोई हंस रहा है, किस तरह के कपड़े किसी ने पहने हैं, वो कपड़े कहाँ से लाए गए थे, इस तरह की ढेरों बातें, ढेरों यादें ताज़ा होती हैं। लेकिन इन दिनों जब हजारों फोटो हम खींचते हैं लगातार, बल्कि एक ही दिन में हम पता नहीं सैकड़ों फोटो तो हम खींच ही लेते हैं, तो उन्हें देखने का धैर्य भी अब खोता जा रहा है। आपका क्या मानना है इस बारे में हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं गीत।

0: सनम तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। नीति मोहन, अकाशा सिंह और दर्शन रावल की आवाजें, समीर अंजान के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय कहा हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और बात हो रही है विश्व फोटोग्राफी दिवस की। तो ये बताइए कि क्या आप आज के इस दिन को मनाने के लिए सेल्फी लेने वाले हैं या किसी की फोटो खींचने वाले हैं या शेयर करने वाले हैं अपनी कोई बेहतरीन तस्वीर या अपनी खींची हुई कोई खूबसूरत तस्वीर? ये आप सोचिए, तब तक ये गीत भी सुन लीजिए।
4: Hey!

0: सत्यमेव जयते टू का ये गीत आपने सुना, जारा एस खान और जैस मानिक की आवाजें, जैस मानिक और तनिष्क बागची के बोल, उन्हीं का संगीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रूमी और तनिष्क बागची की आवाजें, तनिष्क बागची का संगीत, नीरज राजावत के बोल। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक, और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। सुनिधि चौहान और शाश्वत सिंह की आवाजें, अमिता भट्टाचार्य के बोल, फिल्म तू झूठी मैं मक्कार।

हर टेंशन को झटक कर झूमते नाचते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। और हाँ, दिन भर में जहाँ भी रहिए, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा। कार्यक्रम चित्रलोक में आज के लिए बस इतना ही।

0: सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
0: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है जाने माने संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी पर।

खया फिल्म उद्योग में ये नाम एक बेमिसाल संगीतकार का नाम है। एक ऐसा संगीतकार जिसकी फिल्मोग्राफी में एक भी गाना ऐसा नहीं है जो उनके स्टैंडर्ड से कम हो। एक ऐसा संगीतकार जिसने हमेशा हर गाने में अपना 100% दिया।

11 फरवरी 1927 को नवा शहर पंजाब में मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी का जन्म हुआ था। बचपन से ही संगीत का शौक था और इस शौक के चलते ही एक ख्वाब आंखों में पलने लगा था। ये ख्वाब था कुंदन लाल सहगल की तरह गाना और फिल्मों में एक्टिंग करना। जी हाँ, खयाम कुंदन लाल सहगल की तरह एक्टर और सिंगर बनना चाहते थे। खयाम के पिता को साहित्य, कविता और संगीत से लगाव था। वो अपने बच्चों को लेकर जलंधर जाते और उन्हें फिल्में भी दिखाया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों के भीतर देशभक्ति का जज्बा भी भरा था। जब नवा शहर से जलंधर ट्रेन जाती तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ता खटकर कलां। यहाँ ट्रेन रुकती तो पिता अपने बच्चों से कहते, इस गांव को सलाम करो क्योंकि ये शहीद भगत सिंह का पैतृक गांव है। और बच्चे ऐसा ही करते। खयाम के भीतर देशभक्ति का जज्बा इस बचपन से आया था। इसका क्या असर हुआ, ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं। फिलहाल एक दिलचस्प किस्सा। 11 बरस की उम्र थी खयाम की। संगीत सीखने का जुनून बहुत ज्यादा था। वो किसी को भी बताए बिना जलंधर से बिना टिकट ट्रेन में दिल्ली भाग आए। दिल्ली में उनके चाचा रहा करते थे। चाचा के पास पहुंचे और उन्हें जब सारी बात बताई तो वो बहुत गुस्सा हो गए। वहाँ उनकी दादी मौजूद थीं, जिन्होंने चाचा को शांत करवाया। संगीत के इस शौक को देखते हुए चाचा ने खयाम को हुस्न लाल और भगत राम की निगरानी में रखवा दिया, जहाँ खयाम ने 5 बरस संगीत सीखा। इस तरह से हुस्न लाल और भगत राम खयाम के पहले संगीत गुरु हुए। 17 बरस की उम्र होते होते खयाम एक बार फिर घर से भाग निकले। ये घर से दूसरी बार भागना था

इस बार वो दिल्ली नहीं आए बल्कि सीधे मुंबई आ गए। थोड़े दिन संघर्ष किया और उन्हें ये समझ में आया कि अभी उनकी उम्र बहुत कम है और ये सही वक्त नहीं है मुंबई में स्ट्रगल करने का, इसलिए खयाम वापस लौट गए। संगीत के इस जुनून को देखते हुए किसी दोस्त ने उनकी मुलाकात चिश्ती साहब से करवाई। चिश्ती साहब यानी गुलाम अहमद चिश्ती, जो एक संगीतकार थे और चिश्ती बाबा के नाम से मशहूर थे। खयाम लाहौर में उनसे मिलने पहुंचे, उनसे कुछ गाने को कहा गया। खयाम ने जो गाना सुनवाया उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर चिश्ती बाबा ने उन्हें अपना सहायक बना लिया एक शर्त पर। शर्त ये थी कि रहने और खाने की सहूलियत मिल जाएगी पर पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि पैसा मिलता नहीं था इसलिए पैसे की किल्लत हुई तो अपने भाई के पास जा पहुंचे। भाई का एक फलता फूलता ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। जब इस स्थिति के बारे में खयाम ने भाई को बताया तो बड़े भाई ने एक जोरदार तमाचा खयाम को रसीद कर दिया। उस रात खयाम सो न पाए, करवटें बदलते रहे और अपनी जिंदगी के बारे में सोचते रहे। आखिरकार उन्होंने एक फैसला किया। सन 1943 में खयाम फौज में शामिल हो गए। यहाँ एक गाना आपको सुनवाते हैं। जब भारत जंग से मुब्तिला था, जब हौसला पस्त हो रहा था, तब जानिसार अख्तर ने देश का हौसला बढ़ाने के लिए एक गीत लिखा था और इसे खयाम ने स्वरबद्ध किया था।

फौज में रहते हुए भी ख्वाब में उन्हें कुंदन लाल सहगल दिखते, अपने आराध्य, अपने हीरो। मुंबई उनको पुकारता था। आखिरकार 3 बरस फौज की नौकरी करने के बाद खयाम ने फौज से इस्तीफा दे दिया, वापस चिश्ती बाबा के पास चले गए। यहाँ जाने माने निर्देशक बीआर चोपड़ा ने चिश्ती बाबा से जोर दिया कि आपको खयाम को पैसे देने चाहिए। इस तरह से खयाम की तनख्वाह तय हो गई 125 रुपया माहवार। पहली बार खयाम के जहन में ये बात आई कि संगीत से पैसा भी मिल सकता है और इज्जत भी मिल सकती है। सन 1947 में खयाम चिश्ती बाबा के सहायक रहमान से मिलने के लिए लाहौर से मुंबई आए। यहाँ उनकी मुलाकात अपने पुराने गुरुओं से हुई, हुस्नलाल भगतराम, और उन्होंने पहली बार खयाम से एक गाना गवाया और इस तरह से खयाम गायक बन गए। यहीं रहमान के साथ मिलकर उन्होंने जोड़ी बनाई और ये जोड़ी शर्मा जी वर्मा जी के नाम से संगीत देती रही। जब अगस्त में भारत आजाद हुआ तो रहमान पाकिस्तान चले गए, शर्मा जी वर्मा जी की जोड़ी टूट गई। आखिरकार खयाम शर्मा जी के नाम से संगीत देते रहे। इसी दौर का गीत है सन 1948 में आया बीवी फिल्म का मोहम्मद रफी का गाया ये गीत।

इस दौर में खयाम ने प्यार की बातें, बीवी और पर्दा जैसी फिल्मों में संगीत दिया। समय बीतता चला जा रहा था। आखिरकार सन 1952 आया जब जिया सरहदी ने उन्हें फिल्म फुटपाथ के लिए साइन किया। मजरूह सुल्तानपुरी, अली सरदार जाफरी और चंदूलाल शाह जैसे लोगों ने जोर दिया कि इस फिल्म का संगीत उन्हें शर्मा जी के नाम से नहीं देना चाहिए बल्कि अपना असली नाम रखना चाहिए, मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी। अब इतना लंबा चौड़ा नाम तो फिल्मों में चलता नहीं, इसलिए अपने नाम में से खयाम ने खयाम शब्द को चुना और आगे के करियर में उन्होंने खयाम के नाम से ही संगीत दिया। यानी फुटपाथ वो पहली फिल्म थी जिसमें बतौर संगीतकार उनका नाम आया खयाम। इस फिल्म में दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। अली सरदार जाफरी और मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत खूब कामयाब हुआ था।

ये कामयाबी का पहला स्वाद था। खय्याम कामयाब होने के बावजूद ज्यादा फिल्में नहीं हासिल कर पाए, पर यूं था कि मुंबई में उनके पैर जम गए थे। सन 1958 में राज कपूर ने फिल्म फिर सुबह होगी के लिए शंकर जयकिशन की बजाय खय्याम का चुनाव करवाया। साहिर लुधियानवी ने इस फिल्म के गाने लिखे। दोस्तोवस्की के उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर बनी इस फिल्म का संगीत खूब चला और खय्याम की खूब ख्याति हुई।

सन 1964 में फिल्म शगुन आई। साहिर लुधियानवी के गीत इस फिल्म में खयाम साहब की शरीक हयात जगजीत कौर ने कुछ गाने गाए।

दिक्कत ये थी कि खय्याम साहब के गाने तो बड़े मशहूर हुए, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं और फिल्म जगत में ये बात चल निकली कि खय्याम अनलकी हैं। जिन फिल्मों में वो संगीत देते हैं वो अमूमन चलती नहीं हैं। बहुत बरस तक खय्याम साहब के पास काम नहीं था, जबकि उनके काम की बहुत तारीफ होती रही थी। सन 1976, यश चोपड़ा ने जमाने भर के विरोध के बावजूद फिल्म कभी कभी के लिए खय्याम को साइन किया। कभी कभी खय्याम के करियर का एक माइलस्टोन बन गई।

कभी कभी सुपरहिट हुई और इसके बाद आई खयाम के करियर की ज्यादातर फिल्में। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों के गाने सुने जाएं। फिल्म त्रिशूल, खयाम की शैली से बिल्कुल अलग गाना।

0: puchi ga puchi gam gam.
1: सागर सरहदी की फिल्म बाजार में खयाम ने जैसे अपनी रूह को निचोड़ दिया था।

मुजफ्फर अली ने अपनी फिल्म बनाई उमराव जान और इसके लिए खय्याम को चुना गया। खय्याम ने इस फिल्म में अपने पूरे हुनर से काम लिया।

फिल्म उमराव जान के लिए खय्याम को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। सन 1981 में जब यश चोपड़ा ने फिल्म सिलसिला का संगीत देने के लिए खय्याम को आमंत्रित किया तो वो इस फिल्म की कहानी से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी। ये खय्याम के उसूल थे जिनसे वो कभी समझौता नहीं करते थे। सन 1983 कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान, इस फिल्म के लिए हबशी की आवाज मिल नहीं रही थी। उन्होंने बहुत सारे गायकों के ऑडिशन लिए और आखिरकार इस ऑडिशन में कामयाब हुए विविध भारती के हमारे पूर्व सहयोगी कब्बन मिर्जा। और आया ये काल

खयाम की फिल्मोग्राफी अपनी क्वांटिटी में भले कम हो लेकिन क्वालिटी में खयाम का कोई जवाब नहीं। उनकी फिल्मोग्राफी में एक भी फिल्म और एक भी गाना ऐसा नहीं मिलता जिसमें कोई समझौता हो। वो हमेशा अपना 100% अपनी हर फिल्म और हर गाने में उतारते रहे। सन 1980 में आई चंबल

0: धीरे धीरे फिल्म संगीत से खयाम की दूरी बढ़ती चली गई। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में संगीत दिया, टाइटल सॉन्ग्स तैयार किए और वो भी कमाल के थे। आज के फनकार कार्यक्रम में खयाम की बात करें और उनके गैर फिल्मी एल्बम्स की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने मीना कुमारी के अशार कंपोज किए, एल्बम था आई राइट आई रिसाइट।
1: जान

चाहे मुकेश हो, आशा भोसले या मोहम्मद रफी, खयाम ने सभी के लिए गैर फिल्मी एल्बम तैयार किए। जब मोहम्मद रफी गाते हैं पाँव पड़ूं तो रिश्याम, तो यूं लगता है जैसे वो पूरे समर्पण के साथ अपनी रूह को अपनी आवाज में उतारे दे रहे हैं।

0: लौट चलो,
1: बेगम अख्तर की यह गजल खय्याम ने ही कंपोज की थी।

फिल्म संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने खय्याम को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आधे घंटे के इस वक्त में खय्याम के हर एक गाने, हर एक फिल्म की चर्चा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन खय्याम की विदाई फिल्म संगीत से मेलेडी की, ईमानदारी की, उसूलों की विदाई है, नाजुकी की विदाई है।

गीता संगीतकार खय्याम पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम शोध आलेख और स्वर यूनुस खान प्रस्तुति मनीषा जैन।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला।

0: दोस्तों, जब कोई हमारी फोटो लेता है या हम सेल्फी लेते हैं, तब कुछ इस तरह मुस्कुराते हैं जैसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। अगर सोचा जाए तो ऊपर बैठकर रब हमारी हर पल की फोटोग्राफी कर रहा है, तो क्यों ना हर पल मुस्कुराया जाए। हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पायल शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो विविध भारती। आइए सुनते हैं आपके दिलों की बातें आपके पसंदीदा गीतों के साथ। आ रहा है आज का पहला फोन कॉल। हेलो विविध भारती। हेलो विविध भारती।
1: मेरा नाम राजविंदर सिंह पन्नू है
0: जी।
1: मैं पंजाब अमृतसर को बिलोंग करता हूँ।
0: अच्छा जी।
1: और अभी मैं इस टाइम मुंबई में रहता हूँ।
0: अच्छा जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं पहले फोटोग्राफी करता था, स्टिल फोटोग्राफी, और उसमें मेरे जो सब्जेक्ट था पहले तो नेचर था।
0: अच्छा।
1: और नेचर के साथ साथ में फिर थोड़ा अनुभव होता गया और मैं जो वेडिंग फोटोग्राफी है या कोई इवेंट फोटोग्राफी है और ये करता रहा
0: जी।
1: और बीच बीच में कभी कोई सीखने के लिए आता तो उसको भी परामर्श देता था।
0: अच्छा, फोटोग्राफी में आपको कौन सी सबसे ज्यादा प्यारी लगती है आपकी फोटो?
1: नेचर फोटोग्राफी मुझे ज्यादा पसंद है।
0: अच्छा।
1: जैसे पेड़ पौधे हैं या कोई पक्षी है, कोई जानवर है, तो उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे रहते हैं, उसको जानने

0: की उत्सुकता मेरे मन में रहती थी
1: अच्छा
0: और मैं उसी के लिए वो घोंसले कैसे बनाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हैं, तो ये है इंसान का व्यवहार कैसा है और जानवरों और पक्षियों का व्यवहार कैसा है।
1: जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही पेशेंस का काम है, क्योंकि एक घोंसले को बनाते हुए काफी लंबा समय होता है पक्षी को।
0: एक्चुअली कहीं ना कहीं ये जो पेशेंस है ये हमें सिखाता है कि जीवन के अंदर हमने कैसे अपने आप को पेशेंट करना है, कैसे रहना है। अगर कोई मान लो किसी का हमने किसी को बुलाया है तो वो टाइम पर नहीं आया मगर हमें इंतजार करना है उसका
1: जी,
0: तो वो पेशेंस सिखाता है और ये पेशेंस हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है
1: जी,
0: क्योंकि परमात्मा की तरफ से भी जो भगवान ने इंसान को दिया है पेशेंस रख कर ही कोई कार्य कर सकता है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और साथ साथ में मैं एक पेंटिंग बना रहा हूँ, तो मतलब ये पेशेंस का काम है, ये पेशेंस के बगैर नहीं हो सकता है।
1: सही बात है। और फोटोग्राफी की जो दुनिया है वो पूरी अलग है दुनिया, ये सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो आज आप विविध भारती पर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: मेरे को बहुत सारे गाने पसंद है मगर उसमें जो सबसे मुझे बेस्ट गाना लगता है
1: जी
0: वो है तस्वीर तेरी इस दिल में बसाई है
1: जी।
0: ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है
1: जी।
0: जैसे फोटोग्राफी में रंगों के साथ जीवन की कला सीखते हैं, रोशनी और अंधेरे को अनुभव करने के लिए हम तस्वीरों के माध्यम से अपने आप को पेश कर सकते हैं।
1: जी, बहुत ही खूबसूरत बातें आपने की। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है तो आपको शुभकामनाएं और सुनने वाले सारे श्रोताओं को शुभकामनाएं।
0: मेरी तरफ से विविध भारती के मेरे श्रोताओं को, मेरे प्यारों को बहुत बहुत मुबारकबाद।
1: जी, धन्यवाद। और आ रहा है मुंबई तक आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।

0: हेलो विविध भारती।
1: हेलो विविध
0: हाय।
1: भारती,
0: हाँ जी, आपका शुभ नाम।
1: मेरे नाम है जुमूर।
0: जी जुम्मूर जी, आपसे दूसरी बार बात हो रही है।
1: हाँ जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: जी मैं तो आर्टिस्ट हूँ और मुझे फोटोग्राफी का बड़ा शौक है और मैं नेचर फोटोग्राफी करती हूँ।
0: अच्छा, तो कौन सी तस्वीर
1: हाँ
0: है आपकी जो सबसे फेवरेट है अभी तक?
1: ऐसे तो काफी सारी तस्वीरें हैं जो मैं लेती रहती हूँ, ऐसे पर्टिकुलर कोई एक नहीं है, बहुत सारी है।
0: अच्छा, तो आपने फोटोग्राफी को एज अ करियर लिया है?
1: नहीं, करियर तो नहीं लिया है, लेकिन एज ए हॉबी मैं लेती हूँ उसको,
0: ठीक है।
1: और मैंने उस कोर्स भी किया है, मैंने उसको अच्छी तरह डेवलप करने के लिए। और आजकल जो मिनिमलिस्टिक जो करते हैं फोटोग्राफी, जिसमें जो एक ऑब्जेक्ट होता है उसको ब्यूटीफुली अरेंज करके फोटोग्राफी की जाती है, और आजकल जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी होती है वो इसी कॉन्सेप्ट को लेके किया जाता है, तो काफी स्कोप है।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो दीजिए अपनी पसंद का गीत, कौन सा सुनेंगी आप?
1: तू खींच मेरी फोटो।
0: तो हम आपको वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि भाई आप फोटो निकालते रहें और खुश रहें। ठीक है
1: जी
0: जी,
1: जी थैंक यू सो मच।
0: आ रहा है आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।

0: डिजिटल पेमेंट करो यूपीआई थी।
1: आले यार यूपीआई तो बचावी लीधो।
0: अरे एक काम करो फेशियल पण करावी लो, डिजिटल पेमेंट करी देजो।
2: भारत करे छे डिजिटल चुकवणी।
3: दरेक लेवड देवड हवे छे सेल्ली।
4: पूजा प्लस। पूजा मॉनसून सेलमां आ वर्षे फायदानो वरसाद। मेन्स गार्मेंट पर 50% सुधी डिस्काउंट। पूजा प्लस, रावपुरा, वडोदरा।

जमूरे, एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चलो जमूरे, रह जाए सब दिल थाम कर प्यारे।

0: हेलो विविध भारती।
1: वडोदरा।
0: हाँ जी।
1: मैं झाला रमणीकलाल बोल रहा हूँ। द्वारका जिला का गांव में पकीटोड़ी से।
0: द्वारका जिला से बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो बारिश में क्या हाल है वहाँ? पानी कहाँ तक भर गया?
1: बारिश अभी हुई नहीं है, कम है।
0: कम है वहाँ पर? अच्छा।
1: तो बारिश द्वारका जिसको कहता है कि जरूर बारिश करे।
0: जी बिल्कुल, हमारी तो प्रार्थना ही ये रहती है कि सब जगह पर बारिश अच्छे से हो जाए। क्या
1: मित्रों का
0: करते
1: नाम
0: हैं
1: ले
0: आप?
1: सकता हूँ?
0: जी
1: दर्जी काम करते हैं।
0: अच्छा, बढ़िया। हाँ, मित्रों का नाम लेना चाहते थे आप?
1: तो किरीट सोलंकी है, हिरेन झुपेड़ा है, धीरज भाई रबारी है, धीरज गजर है,
0: हाँ
1: रसीलाल
0: जी
1: गठिया है, सभी
0: जी जी
1: मित्र सुनता है।
0: जी तो आपके द्वारका के बारे में कुछ बताइए हमें।
1: द्वारका तो अच्छा धार्मिक मंदिर कृष्ण भगवान का है। हमारे यहाँ होली के पूनम पर सभी लोग पैदल चल के जाते हैं और बड़ी पूनम से बोला जाते हैं फादर से की
0: और
1: पूनम
0: जन्माष्टमी
1: को।
0: पर अब आने ही वाली है,
1: आज जन्माष्टमी तो और
0: बहुत
1: बहुत
0: बढ़िया से सेलिब्रेट
1: बिजी
0: करते
1: होती है।
0: हैं। जी
1: और तो द्वारका जिसका दर्शन मुश्किल से करना पड़ता है।
0: ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमें। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म दो दिलों की दास्तान का सुनना है, अमरा ही मेरे अमरा ही।
0: ओके जी, तो आ रहा है आपके लिए द्वारका तक ये गाना। नमस्कार, सुनते रहिए विविध भारती वडोदरा।

0: दोस्तों, ये था आज का फोन इन प्रोग्राम। आपके फोन कॉल्स, आपके पसंदीदा गीत, इसी तरह आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। करना है सिर्फ एक फोन कॉल। हर सोमवार सुबह 10 से 11 के बीच हमें रहता है आपके फोन कॉल्स का इंतजार। हमारा यानी वडोदरा का एसटीडी कोड है 0265। जी हाँ दोस्तों, 0265। और हमारा कॉलिंग नंबर है 2648495। आई रिपीट, 2648495। तो मिलते हैं अगले फोन इन प्रोग्राम में। तब तक के लिए पायल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड बाय। दोस्तों, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा विविध भारती के वडोदरा केंद्र से।
1: दोस्तों, पायल शर्मा द्वारा प्रस्तुत लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो विविध भारती आप सांभळी रह्या हता। कार्यक्रम नु प्रसारण विविध भारती ना वडोदरा केंद्र पर थी करवामां आव्युं। दोस्तों, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ना अवसर पर आवो सांभळीए बेताब फिल्म नु आ गीत।

जो मिला हो गया क्या मेरे पास है, दर्द ही दर्द है।

0: દોસ્તો, આજે આપે જે ગીતો સાંભળ્યા તે ગીતો હતા ધૂલ કા ફૂલ, બૈજુ બાવરા, દૂર ગગન કી છાંવ મે, હમ દોનો, દો આંખે બારા હાથ, દો ઓર દો પાંચ, ઇમ્તિહાન, એક ફૂલ દો માલી, પુકાર, ધી બર્નિંગ ટ્રેન, પાઠશાળા, વૈસા ભી હોતા હૈ અને ભાભી કી ચૂડિયા ફિલ્મના. આ સાથે જ ફિલ્મ સંગીત અહીં સમાપ્ત થાય છે.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है. श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है.
2: The investment story. हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है. आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं. इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है. इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे.
3: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी.
1: श्री वैष्णव ने कहा कि देश के 99.6% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है.
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है. पिछले एक दशक में 38

0: 1000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मकाओ के लियोन योक चोंग और एनजी वेंग ची को हराया। क्वार्टर फाइनल में ध्रुव और तनिषा का मुकाबला चीन की जोड़ी चेंग फांग हुई और गुआओ शिनवा से होगा। भारत के साथ गोल में क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑल आउट हो गया और श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया गया। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 342 अंक गिरकर 76,893 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 24,051 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। फिल्म है दिले नादान, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें, नक्श लालपुरी के बोल, खयाम का संगीत। आज संगीतकार खयाम की याद का दिन है।

चंबल की कसम, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, खयाम का संगीत था। आइए सुने आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गीत सुलक्षणा पंडित की आवाज में। नक्शलालपुरी के बोल, खयाम का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: कभी कभी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल थे खयाम का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।

0: था देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: तुम इसको खेल समझे हो मगर एक दिन दिखा देंगे मोहब्बत इसको।

0: मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना। संगीतकार थे खयाम, फिल्म थी मोहब्बत इसको कहते हैं। आज का ये प्रोग्राम खयाम साहब के नाम।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
1: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
0: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

0: लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाजें थी। मखदूम मोहिउद्दीन के बोल थे, खयाम का संगीत था, फिल्म थी बाजार। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, CID, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम मेरे साथ, यानी रेडियो सखी के साथ। अब वो जो इबारत है वो मैं पढ़ के सुना दूं, क्योंकि बहुत सारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं हैं, तो उन्हें भी पता चल जाए कि आज की इबारत क्या है और इबारत से जुड़े हुए शब्द, मतलब इसमें जो शब्द होते हैं उनसे जुड़े गाने आपको ढूंढने हैं और लिखने हैं। चांदनी रात बहुत खामोश थी, आकाश पर चांद और तारे चमक रहे थे। खिड़की के पास बैठी वो देर से दूर उसी तारे को देख रही थी। जाने क्यों उसे लगता था कि उस चमक में कोई पुरानी याद छिपी है। टेबल पर एक तस्वीर रखी थी, तस्वीर में दो लोग थे, कभी बहुत पास आज बहुत दूर। उसने गुनगुनाया, आप यूं फासलों से गुजरते रहे। उन दिनों का दीवानापन भी कितना अजीब था। एक आवाज पर दिल धड़क उठता था, एक नजर पूरी रात जगा देती थी, फिर न जाने कब रंजो गम ने प्रेम की जगह ले ली। वो तस्वीर उठाकर देर तक देखती रही, मन ही मन जैसे कोई गीत बज उठा, चोरी चोरी कोई आए चुपके चुपके, काश कोई सचमुच आ जाए, दरवाजे पर दस्तक दे और कहे कि इतने बरसों की दूरी शायद बस एक भूल थी। मगर दरवाजा खामोश था, सिर्फ हवा पर्दों को हिला रही थी। उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया, आप और हम या तुम और हम, कभी यही तो एक पूरी दुनिया थी। अब तस्वीर में बची दो मुस्कुराती आंखें थी और उन आंखों के पीछे छिपी एक अधूरी कहानी। तभी उसकी नजर फिर उस तारे पर गई, वो अब भी चमक रहा था। उसे लगा शायद प्रेम कभी खत्म नहीं होता, लोग दूर चले जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, तस्वीरें पीली पड़ जाती हैं, लेकिन किसी रात किसी अकेली खिड़की के बाहर वही प्रेम एक तारे की तरह टिमटिमाता रहता है। उसने तस्वीर को वापस मेज पर रखा और धीमे से कहा, इस तरह तोड़ा मेरा दिल कि अब दर्द भी तुम्हारी याद जैसा प्यारा लगता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, आप भी चाहें तो बुन सकते हैं कहानी, लेकिन साथ में जरा वो जो तारों वाली बात है कि उसकी नजर फिर उस तारे पर गई। तो बचपन में बहुत सारे तारे देखते थे एक साथ आंगन में लेटकर चारपाई पर, ऐसा ही एक गाना भी है गुलजार साहब का लिखा हुआ। बहरहाल वो गाना तो याद कीजिए, लेकिन तारों वाले गाने तो बहुत सारे आपको लिखने ही है, साथ में वो याद साझा कीजिए कि जब तारे गिनते थे तो आसमान में तारे गिनते गिनते संख्या भूल जाते थे और तारे वहीं के वहीं रह जाते थे। तो कई बार सप्तऋषि तारा और तारों के कई नाम हम गिनाते थे, ध्रुव तारा, वो देखो वो ध्रुव तारा है, वो सप्तऋषि तारा। तो ऐसी कोई याद है तो वो जरूर साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। चलिए अब गानों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहेलियों का। पहेलियां भी तो बूझनी है, जरा बताइएगा कि किस फिल्म का ये गाना है और गीतकार का नाम क्या है। संगीतकार का नाम तो आप बूझ चुके हैं, आज उनकी याद का दिन है जिन संगीतकार का ये गाना है। वैसे बूझिए आप गीतकार संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम। पहली आसान तो है ना, ये गाना तो आप पहले बहुत बार सुन चुके हैं।

शंकर हुसैन फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, जानिसार अख्तर के बोल थे, खयाम का संगीत था। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना है, सही जवाब दिया है। बहुत सारे श्रोताओं ने शब्द लिखे हैं, चांदनी, फासले, रात, रंजोगम, चोरी चोरी, तुम और हम, आंखों, मौसम, याद हो सकते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने तारे से जुड़े हुए बहुत सारे गाने लिखे हैं, तारे से जुड़े हुए अनुभव नहीं साझा किए हैं। और चांदनी रात की एक खूबसूरत बात होती है, जब चांदनी रात में घूमने निकलते हैं तो उसका कुछ अलग ही आनंद होता है। उससे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें होंगी, वो भी आप साझा करते रहिए। अब हम आपने क्या लिखा है वो हम बताते चलते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम में कई बार सुबह आने से पहले ही रात बहुत अंधेरी लगने लगती है, और खासकर तब जब हमें अपने प्रेम का इंतजार हो। प्रेम जब एक तरफ से कम होने लगे तो सबसे पहले मन स्वीकार करने से इनकार करने लगता है और हम तरह तरह के ख्याल में डूब जाते हैं। प्रेम में इंतजार का कोई आकार नहीं होता, वो तो हवा में घुल जाता है, आंखों में ठहर जाता है। कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। वो दिल तोड़कर चला गया, लेकिन क्या इस तरह जाने से प्रेम खत्म हो गया? प्रेम बड़ी गहरी चीज है। प्रेम में आकर्षण तो वक्ती है, फर्क इतना है कि तुम प्रेम में कितने गहरे तक डूबे हो। बात बहुत साधारण है, ऐसा क्यों होता है जब कोई एक प्रेम के सहारे सदियां बिताने का मादा रखता है और दूसरा दिल तोड़कर चला जाता है? लेकिन इसमें बड़ा कौन होता है, दिल तोड़कर चला जाने वाला या जो आखिर तक प्रेम करता रहता है, जरा ये भी बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज दोपहरी दो प्रेमियों की दोपहरी होगी, जहां उनके मिलने बिछड़ने के किस्से होंगे, उनके रोमांस की बातें होंगी, गिले शिकवे होंगे। चांदनी रात में अकेला कोई महबूब की तस्वीर सीने से लगाए तरह तरह के सवाल जवाब कर रहा होगा। उसका गया महबूब अब तक आया नहीं, फिर क्या वो अब

नहीं आएगा? आखिर कब तक कोई एक तारे में महबूब की आकृति तलाशती रहेगी? क्या वो सचमुच नहीं आएगा? ये तो आपको बताना है कि वो महबूब आएगा, दरवाजे पर जो दस्तक हुई थी सचमुच कोई आया या नहीं। बहरहाल चलिए आगे बढ़े और अब आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम। फिल्म है नूरी और इसमें कौन कौन से शब्द आ रहे हैं आज की इबारत के, बताइए और साथ में हीरो हीरोइन का नाम बूझिए।

शास्त्रीय और लोक संगीत का मेल उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत का अनूठा संतुलन बनाया। कम शोर ज्यादा सुकून उनकी धुनों में और पश्चिमी या भारी शोर की बजाय ठहराव, खामोशी और रूहानी मिजाज होता था। अब हम आपको चोरी चोरी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं जिसमें चांदनी है, चांदनी रात है और साथ में एक पहेली हम पूछ रहे हैं आपसे। इस पहेली को आप देखते हैं कि बूझ पाते हैं कि नहीं। कौन सा एक गीत है जिसमें चांदनी रात है, इतराना है, खुद से शर्माना है और ऐसे शब्द हैं। फिर देखा है ये शब्द भी है, नीला अंबर शब्द है। आपको गाने के बोल अगर याद आए तो लिखिए, फिल्म का नाम लिखिए, हीरो हीरोइन कौन थे ये भी आपको ही लिखना है। जरा याद कीजिए, फिर से दोहरा देते हैं हम आपको। जिसमें चांदनी रात है एक गाना, अभी एक गाना सुनवाएंगे चोरी चोरी फिल्म का जिसमें चांदनी रात है। इसके अलावा एक गाना और है जिसमें चांदनी रात है, खुद से शर्माना है और देखा है कई बार, नीला अंबर शब्द है और आज की यादों की महफिल कार्यक्रम में वो गाना हमने आपको सुनवाया भी था। चलिए सुनते हैं ये गाना।

कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण बीच में विघ्न आया, इसके लिए हम माफी आपसे चाह रहे हैं। चोरी चोरी फिल्म का गाना ये रहा। आपको बूझना है गीतकार का नाम।

0: ये हिस्सा, अलमारी का हिस्सा साफ सफाई करोगे या आंगन बुहारोगे, या ये सजा भी होती थी। तो इस तरह की कोई याद आपके जहन में है तो जरूर साझा कीजिए। फिलहाल माया फिल्म का गाना सुनिए और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।
1: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन

माया फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें थी। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सलील चौधरी का संगीत था। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और एक श्रोता ने लिखा है कि जब छोटे थे तो दीदी के गांव जाया करते थे, छत पर खटिया डालकर तारे गिना करते थे और आपस में चाची की लड़कियां हम सब बहनें मिलकर यही कहती थी कि तूने कितने तारे गिने। आज वो दिन है कि तारे आसमान पर दिखाई नहीं देते, गिने या देख भी ले तो ऐसा लग रहा है कि बरसों बीत गए तारे नजर आए हुए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि जो पिछला गाना सुनवाया था याद को लेकर और अभी तस्वीर को लेकर ये गाना सुनवाया है। और जब बात तस्वीर की चली है तो तस्वीर से जुड़ा हुआ और कौन सा गाना

इस वक्त आपके जहन में गूंज रहा है, हो सकता है आपका वो गाना यहां पर हम बजाते हैं अभी तुरंत। और एक श्रोता ने लिखा है कि पहले हमारी नानी जी हमेशा तारा देखकर ही शाम का खाना खाती थी। तारे को पहले दर्शन करके, तारीख को पहले दर्शन करके उसका भोग लगाकर खाती थी। भाई चांद को देखकर खाना खाने की परंपरा के बारे में हमें पता है कि जब कोई व्रत त्योहार होता है, कोई खास त्योहार जैसे करवा चौथ का व्रत है, तो महिलाएं चांद देखकर खाना खाती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि छोटे छोटे तारों के साथ चांद बड़ा ही अपना लगता है, हमें बहुत सारी बातें हम याद करते हैं चांद से जुड़ी हुई, पर वो हमारी बातों का जवाब नहीं देता। चांद से बहुत सारी बातें पूछते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देता, बस महसूस जरूर होता है कि वो हमें सुन रहा है, पर कभी तो एक छोटा ही सही जवाब देना चाहिए ना। हम रोज देखते हैं कि मगर कई दिनों से हमें चांद दिखा ही नहीं, कल ही हम आसमान में देखकर आसमान से पूछ रहे थे कि हमारे चांद को कहाँ छुपा रखा है। भाई चांद से तो सभी बतियाते हैं, बचपन में तो चांद के जो चांद में परछाई दिखती है, लोग कहते थे कि कोई वो बुढ़िया है जो सूत काटती है, और कई गानों में भी, कई कविताओं में भी ये बात आती है। तो चांद से जुड़ी हुई तो बहुत सारी बातें हैं हमारे जहन में, बहुत सारी पहेलियां हैं। आपके जहन में कौन सी बात है वो आप साझा कीजिए। हाँ तो आपने तस्वीर वाला गाना याद किया क्या जो हम सुनवाने जा रहे हैं? कहीं यही गाना तो आपने नहीं याद किया, या कोई और गाना हो तो वो भी बताइए। और ये गाना सुनते सुनते जरूर बताइए कि किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म है सावन को आने दो।

सावन क्वानेदू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, अरुण गोविल और जरीना वहाब। हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और तस्वीर से जुड़े हुए गानों के बोल भी लिखे हैं। तस्वीर बनाता हूं तस्वीर नहीं बनती, ये बोल कई श्रोताओं ने लिखा है। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, और सावन को आने दो फिल्म का नाम था, हमारे श्रोताओं ने बताया है। और फिर एक श्रोता लिख रहे हैं तस्वीर बनाता हूं, फिर एक श्रोता लिख रहे हैं कि दूर गगन की छांव और खुले आसमान के नीचे रहने वाले को ही पता होता है कि तारों को गिनना और अंधेरी रात में चांद देखने का मजा ही अलग होता है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर तेरे दिल मेरा बहला न सकेगी, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाने के बोल यही लिखे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा कि सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, और चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। मतलब इबारत से जुड़े हुए ये गाने लिख रहे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि आज की इबारत में खयाम के संगीत सा ठहराव है, चांदनी रात की खामोशी, खिड़की के बाहर टिमटिमाता तारा, मेज पर रखी पुरानी तस्वीर और बरसों बाद भी धड़कती हुई एक अधूरी कहानी। एक श्रोता ने लिखा है कि खयाम शब्दों की गहराई को समझते थे, खयाम साहब के जो गाने हमने सुनवाए उसके लिए इन्होंने लिखा है कि उनके गाने सिर्फ संगीत नहीं बल्कि बेहतरीन शायरी और साहित्य का एहसास कराते थे। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से। आपको पूछना है कौन है हीरो कौन है हीरोइन, और साथ में एक पहेली और शामिल है कि ऐसा ही एक गाना है मुकेश की आवाज में, कौन सा गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है। और शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म का नाम आपको बूझना है। तो एक ये पहली होगी, दूसरी पहली कि कौन है हीरो हीरोइन इस गाने में।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना था और हीरो हीरोइन का नाम हमने पूछा था, राजेश खन्ना, लीना चंदावरकर। और एक पहेली और पूछी थी जो ये थी कि मुकेश की आवाज में एक और ऐसा ही गाना है, ऐसा नहीं मतलब जिसमें दीवानापन शब्द आता है, और उसमें फिल्म का नाम हमने पूछा था और गाने के बोल। मुकेश की आवाज में गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है, गाने के बोल बताइए फिल्म का नाम। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। हिंट के लिए हमने आपको ये बता दिया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत दिल को छू लेने वाली है, और ये बात हमारे कई श्रोताओं ने लिखी है। आप सभी से एक गुजारिश है कि आप प्रार्थना करें कि मैं जल्द ही भारत आ सकूं और विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपके दर्शन कर सकूं। क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप विदेश से अपने देश में लौटना चाहते हैं, और ये मेरा बहुत बड़ा सपना है, ये लिख रहे हैं। आपका सपना पूरा हो, हम शामिल हैं आपकी इस दुआ में। और हमारे और भी श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो जिम्मेदारियों का बोझ है, पहले हम तारे गिनते थे, आसमान साफ होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब छोटे भाई बहन एक साथ खेलते थे तो बोलते थे ये हिस्सा तारे का मेरा है, फिर हम आपस में एक दूसरे से कहते थे कि मेरी तरफ के तारे ज्यादा हैं, फिर करते करते लड़ाई हो जाया करती थी। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गर्मियों के दिन में गांव जाने पर जब छत पर सोते थे तो बीच रात में अजिया माँ काकी को उठाने लगती थी, सात डरिया सप्तऋषि दिखाई दे रहा है, भोर होने वाला है। क्या बात है भाई, तब तारों से चांद से ही समय का अनुमान लगा लिया जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में चांदनी रात की खामोशी है, खिड़की के बाहर टिमटिमाता तारा, मेज पर रखी पुरानी तस्वीर वर्षों बाद धड़कती है। तो जो मैंने इबारत लिखी है उसकी समीक्षा इन्होंने कर दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम में दीवानी प्रेयसी, चांद तारों में प्रियतम की तस्वीर देख उसका इंतजार कर रही है, दिल में उठा दर्द आंखों से बयां हो रहा है। कौन सा गाना आपने सोचा था कि अब बजेगा ये, जिसमें इबारत में कौन सा शब्द आता है ये भी बताइएगा। फिल्म शगुन, आपको पहचाननी है आवाज किसकी है, किसकी आवाज में ये गाना है, और संगीतकार का नाम भी। संगीतकार और जिनकी आवाज है उनसे एक खास रिश्ता भी है, जरा बताइएगा।

0: शगुन फिल्म का गाना, जगजीत कौर की आवाज, साहिर उद्यानवी के बोल, खयाम का संगीत। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, लेकिन एक सवाल और पूछा था कि जो संगीतकार हैं और गायिका हैं, इनका खास रिश्ता था, इसके बारे में हमारे श्रोताओं ने नहीं बताया। इसके जवाब का भी हमें इंतजार रहेगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि मजबूरी से दिल तोड़कर चले जाने वाले उस सपनों के सौदागर का प्रेम धागा इतना पक्का था कि प्रियतमा के रूह में सदा के लिए फंस गया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि ममता जी, आज की अधूरी इबारत को पूरा नहीं करेंगी क्या? भाई, ये तो इबारत को पूरा तो आपको करना था, हमने तो आपसे ही पूछा है शुरुआत में, कार्यक्रम की शुरुआत में, कि अंत क्या चाहते हैं आप, कि वो जो दरवाजे की दस्तक हुई थी वो आ जाए या नहीं, तो आप बताइए कि क्या करना है। वैसे दुख का अंत सुख से होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। सुनिए ये प्यासा फिल्म का गाना, बुझिए हीरो हीरोइन का नाम और आवाज किसकी है ये भी बताइएगा।
1: हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो।
0: दो आवाजें हैं, दोनों के नाम बताइए।

थे पूछा था हमने, सभी ने सही जवाब दिया है। साहिर लुधियानवी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था, फिल्म थी प्यासा और माला सिन्हा गुरुदत्त के अभिनय से सजी थी फिल्म। हमारे श्रोताओं ने यह भी सही बताया। और एक पहली हमने आपसे पूछी थी कि मेरे दीवानेपन की कोई दवा नहीं महबूब की मेहंदी, और पूछा था कि एक और गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है, सभी ने सही जवाब दिया, यहूदी फिल्म ये मेरा दीवानापन है, मुकेश की आवाज। और हमारे कई श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत में जो कहानी बुनी बहुत पसंद आई, और एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो आज की कहानी थी अगली बार जब आइएगा तो ऐसी ही कोई कहानी लेकर आइएगा। क्या बात है भाई, लेकिन कहानी का अंत आप सबने बताया नहीं, हमने पिछली दफा भी कहानी का अंत पूछा था, आप सभी ने बताया था वही अंत हमने किया था, लेकिन आज हमारे श्रोता हम ही से पूछ रहे हैं, तो चलिए अंत फिर अंत में जो लाइन लिखी है उसी अंत से उसी लाइन से हमें समापन करना पड़ेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि ये रचना केवल बिछड़ने का रोना नहीं है बल्कि ये एहसास कराती है कि सच्चा प्रेम पाना या खोना नहीं बल्कि किसी को अपनी रूह में हमेशा के लिए संजो लेना है। प्रेम का पैगाम कबूल हो गया है तो दोबारा भेजने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए अब जब असली प्रेम सच्चा प्रेम होता है तो दुख दर्द कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इबारत का अंत यही था तो इसी गाने से अंत करते हैं। फिल्म का नाम जरा बता दीजिए, क्या है फिल्म का नाम, और गीतकार संगीतकार का नाम पता है तो वो भी बताइए।

शहनाई फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना। सुरीला सफर का ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत।

नमस्कार। सारी दुनिया में 19 अगस्त का दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आपको इसका इतिहास बताएं। दरअसल विश्व फोटोग्राफी दिवस का जो ताल्लुक है वो है डगेरोटाइप नाम की एक फोटोग्राफी प्रोसेस से, जिसका आविष्कार किया था फ्रांस के लुईस डगेरो और जोसेफ निकोफोन ने 1837 में। फिर हुआ ये कि 9 जनवरी 1839 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज ने डगेरोटाइप प्रोसेस की उद्घोषणा की और 19 अगस्त 1839 के दिन फ्रांस की सरकार ने इसका पेटेंट खरीद लिया और इसे सारी दुनिया के लिए मुफ्त में उपलब्ध करवाया।

बढ़ा दिया। तो इस तरह से ये मानना चाहिए कि 19 अगस्त के दिन फोटोग्राफी की सुविधा सारी दुनिया के लिए उपलब्ध हो गई थी और इसलिए विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। जरा सोचिए कि वो जमाना कैसा था जब फोटोग्राफी बड़ा ही महंगा शौक होता था और बहुत ही रईस लोग अपने फोटो खिंचवा सकते थे।

फोटोग्राफी ने विज्ञान की प्रगति के साथ बहुत सारे बदलाव देखे हैं। एक जमाना था जब फोटोग्राफी के लिए फिल्म रोल की जरूरत पड़ती थी और एक निश्चित संख्या में फोटो क्लिक करने के बाद ही उस फिल्म को धुलने भेज दिया जाता था। जब वो डेवलप होके और प्रिंट होके आती थी तब हमें ये देखने मिलता था कि तस्वीरें किस तरह से आई हैं। इनमें से कई तस्वीरें बेकार भी हो जाती थी। जाहिर है कि फिल्म रोल वाले वो दिन बड़े ही सुहावने थे और बहुत ज्यादा जिज्ञासा और बेकरारी से भरे हुए थे, क्योंकि फिल्म रोल के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता था। आज भी वो काली सफेद तस्वीरें पुराने जमाने की यादों को हमारे सामने ताजा कर देती हैं।

आगे चलकर जमाना बदल गया और अब तो वो जमाना आ गया है जब फोटोग्राफी के लिए लोग कैमरे से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं। जरा सोचिए कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मोबाइल आपके लिए कम्युनिकेशन मीडियम का काम भी करता है और दूसरी तरफ वो आपके लिए कैमरे का काम भी करता है। जिंदगी के हर महत्वपूर्ण या आम पल को आप तस्वीरों में बांध सकते हैं, लेकिन इसका असर ये हुआ कि तस्वीरों का जो महत्व था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि तस्वीरें बड़ी आम हो गई। ये तस्वीर खींची और ये सोशल मीडिया पर चढ़ा दी, या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज दी और उन्होंने फौरन देख ली और वो खुश भी हो गए। यानी चीजें आसान हो गई तो उनका महत्व कम हो गया, पर फिर भी आज जिंदगी के कुछ पल तस्वीरों में कैद हो जाते हैं और हम विकल होकर उन पलों को याद किया करते हैं।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
2: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।

0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
3: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पर्टी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गई। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। NEET UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें जिसमें ये बताया जाए कि राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। NEET UG 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें

0: उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रूपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओड्राफ के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। IMD ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। BRO के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध आर

0: FID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गाँव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
1: भारत ने गोल में दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने दो मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्ण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दिल अपना और प्रीत पर आई इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की धुन थी। फिल्म है 11,000 लड़कियां, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, एन दत्ता का संगीत है।

11,000 लड़कियां, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, एन दत्ता का संगीत था। सदाबहार नगमे प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं धूल का फूल फिल्म का गाना सुधा मल्होत्रा की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल, एन दत्ता का संगीत है। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्ते सभी सखियों को, सभी सखियाओं को, सभी सखाओं को और सुनने वालों को स्वीकार कीजिए चंचल वर्मा का नमस्कार। और दीपा बैठी है मेरे सामने, कैसी हो दीपा?
1: बिल्कुल ठीक। और हमारे सभी साथियों को यानी हमारे सखियों को
0: हेल्दी नमस्कार।
1: हाँ बिल्कुल, हेल्दी नमस्कार देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम लगातार ना उस प्रेरणाओं में रहें, इंस्पिरेशन में रहें।
0: हाँ।
1: ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आपको दे रहे हैं, आप भी हमें देते हैं
0: जी।
1: हमारे साथी देते हैं जो हमें सुनते हैं उनकी तरफ से भी। और अगर कभी कहीं कोई भूल चूक हो जाए और इन दिनों ये दिन ऐसे चल रहे हैं, अगर कहीं थोड़ा सा भी आलस आ रहा हो ना, तो फिर से ऐसा लगता है कि हाँ हमारे किसी एक दोस्त ने कहा है अपनी सेहत का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, लगातार इस बात पर अपना ध्यान रहे कि अपनी सेहत का और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके साथ कोई हल्का फुल्का उसे कहीं हल्के में ना ले,
0: कोई समझौता नहीं करना है। और आपके कहने से पहले ही मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि हेल्दी नमस्कार आएगा, इसीलिए बहुत उत्सुकतावश
1: हाँ,
0: मैंने कह दिया।
1: तो एक बार फिर से अपने साथियों को, सखियों को और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: चलिए और बता दें कि आज किस विषय पर हम बात करेंगे। देखो, सुंदर दिखने का शौक अगर सबको होता है तो सुंदर फोटो आए, ये भी शौक सबको होता है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि हम यूं ही बैठे हैं, किसी ने फोटो खींचने का अंदाज उसका इतना अच्छा था ना, तो वो फोटो देखकर हमें लगता है कि उस दिन तो मैंने कोई तैयार भी नहीं हुए थे, हम बाल भी नहीं बनाए थे, और कई बार हम जिस जगह पर बैठे होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत नहीं होती। लेकिन ये फोटोग्राफी का कमाल है कि आपकी जो छवि है वो उभर कर इतनी सुंदर सामने आती है कि लगता है कि तारीफ कर दो जिसने फोटो खींची है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है। और वो जो सुनहरे पल कैद हो जाते हैं हमेशा के लिए, और फिर जब कुछ सालों के बाद हम एल्बम खोल के देखते हैं, वो वक्त याद करते हैं, तो भाई ये आविष्कार कितना ऐतिहासिक है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और बहुत सारे संदेश इस विश्व फोटोग्राफी दिवस के लिए आए हैं।
0: और एक समय था ना कि कई बार जब कैमरे से फोटो क्लिक होती थी तो हम इंतजार करते थे कि कब वो पूरी रील पहले खींची जाएगी, फिर उसे धुलाई पे जाएगी।
1: हाँ।
0: और फोटो जब डेवलप होके आएंगे तब हम उन्हें देखेंगे। लेकिन अभी जिस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में, जिसे हम मोबाइल के नाम से जानते हैं, आपने जैसे ही क्लिक किया आपके हाथ में फोटो होता है
1: जी।
0: अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं तो आपके पास उसे भेजने के यानी कि एक दूसरे के साथ शेयर करने के ऑप्शन भी होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अब धुलाई करवाएंगे इतना इंतजार ही नहीं करना होता, और तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप तुरंत जाकर प्रिंट भी ले सकते हैं उसका। अगर आपको एक हार्ड कॉपी यानी कि अपने पास में रखनी है, आपको कई बार लगता है कि कहीं कोई डिलीट ना हो जाए, तो उसे हमेशा के लिए अगर सुरक्षित रखना है तो बहुत लंबा समय इंतजार नहीं करना है।
1: बिल्कुल सही कहा। और जो डिलीट वाली बात कही है ना आपने, दिल में कहीं कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं कभी कभी चंचल, जो हमें डिलीट कर देनी चाहिए।
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: यानी कि जो नफरत की, क्रोध की भावनाएं हैं उन्हें भुलाकर हमेशा अपने दिल में एक इंसानियत की, जो मानवता की भावना है, दूसरों का भला करने की भावना है, उसे हम सहेज कर रख सकते हैं।
1: बिल्कुल सही, ताकि हम आगे जो जीवन में चलें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यानी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े, और खुशियों को और मन की शांति और सुकून को प्राथमिकता देते हुए आगे निकलते चले जीवन में। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए देखिए, आज है विश्व मानवता दिवस,
0: और यही हमने शब्द लिया है जब हम बात करेंगे कि शब्द हमारे और विचार आपके, तो मानवता को लेकर हमारे सुनने वालों के क्या विचार हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें जरूर लिखकर भेजें। तो मानवतावादी दिवस के बारे में भी बात होगी और मानवता के बारे में हमारे सुनने वालों की सोच क्या है इस बारे में ही बात होगी।
1: और साड़ियां पहनना कैसा लगता है, ये विचार अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पसंद है आपको साड़ी पहनना?
0: भाई महिलाओं को साड़ी पहनना पसंद ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, और खास मौके जब आते हैं ना। वैसे हम जो भी कैजुअल कपड़े जो होते हैं हम पहन लेते हैं, कई बार सलवार सूट पहनते हैं, कई बार हम जीन्स टॉप भी पहनते हैं, कहते हैं कि वेस्टर्न आउटफिट कभी करने का मन करता है। लेकिन जब कोई खास मौका हो, किसी से मिलने जाना है, घर पे कोई उत्सव है, कोई त्योहार है, या कभी मन में लगाना कि नहीं आज कुछ मन में खास बनने का अवसर है, तो उस वक्त सबसे पहला परिधान जो हमारे जहन में आता है वो होता है साड़ी।
1: बिल्कुल,
0: और इतने सारे प्रकार है ना साड़ी के कि कई बार चुनना मुश्किल होता है, लेकिन अलग अलग मौके के हिसाब से साड़ियां चुनी
1: जा सकती है, जैसे कि सावन के महीने में लहरिया साड़ी।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और लहरिया साड़ी की ही आज हम बात करेंगे। लहरिया साड़ी राजस्थान में तो बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन आजकल हर जगह ये पहुंच चुकी है, तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं इसके बारे में जरूर हमें बताएं कि हमारी सखियां किस तरह से लहरिया पहनती हैं, या उनके वार्डरोब में साड़ी है कि नहीं
1: है या नहीं। और जिस दिन आपको साड़ी पहन के कहीं जाना है तो फिर घर में एकदम अफरा तफरी होती है ना कि भाई मुझे जाना है, अब हम जल्दी नहीं आ पाएंगे, तो ऐसे में कुछ झटपट बना के रख दें, खिला

0: दें घर में, जो पीछे परिवार में बच्चे रह
1: हाँ
0: गए हैं या पतिदेव रह गए हैं या कोई और परिवार के सदस्य, तो क्या झटपट बनाया जा सकता है? कुछ संदेश आए हैं, हम चाहते हैं आप और कुछ रेसिपीज
1: बिल्कुल,
0: भेजिए।
1: हमारी सखियां बड़ी होशियार हैं, वो इस तैयारी में होती है कि भाई आज जल्दी से कुछ बनाना है, तो उनके पास उनके पिटारे में झटपट वाले कौन से व्यंजन होते हैं, खासतौर पे जो स्नैक्स के आइटम होते हैं ना, तो वो हमें लिखकर भेजें। तब तक एक गाना सुन लेते हैं सबके साथ
0: चलिए
1: में।

0: दीपा, हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये जो समय है ये तन्हा ना बीत जाए, इसमें सबको साथ लेकर हमें चलना है और कई बार अपनी यादों को भी साथ संजो कर चलना होता है। फोटो उसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जो हमारी तस्वीरें होती हैं पुरानी
1: जी.
0: वो हमें उन यादों से जोड़े रखती हैं, हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं उनसे भी जोड़े रखती हैं। तो कई बार मन में आता है कि फोटोग्राफी क्या चीज है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि फोटोग्राफी रोशनी का इस्तेमाल करके चित्र बनाने की एक कला होती है और 19 अगस्त का दिन होता है, इसे विश्व स्तर पर फोटोग्राफी के रूप में हम मना रहे हैं आज भी, और विविध स्तर और रचनात्मक तरीकों से फोटोग्राफी की कला और शिल्प का इस दिन सम्मान किया जाता है।
1: अगर इसके इतिहास में थोड़ा जाएं हम चंचल, तो शुरुआत

0: में फोटोग्राफिक प्रक्रियाओं में डेगोरियो टिप ये हाँ, आविष्कार किया गया था
1: बिल्कुल,
0: जिसे 19 अगस्त 1839 में फ्रांसीसी सरकार ने दुनिया को उपहार के रूप में ये घोषित किया था।
1: और ये उपहार देखो ना कितना बहुत काम की चीज बन गई हमारे।
0: बिल्कुल, तो ये लुई और जोसेफ निप्स इन दोनों ने मिलके इस टाइप को ये जो आविष्कार है इसको विकसित किया था और इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ जिसने हमारी और आपकी छवियों को कैप्चर करने और उससे सुरक्षित और हमेशा संरक्षित रखने के लिए आप यूं कहें कि एक क्रांतिकारी बदलाव आ गया है।
1: बिल्कुल सही कहा,
0: हम सबके ही जीवन में
1: और इसी की याद में तो आज का दिन हम मना रहे हैं। और ये दिन जो इस आविष्कार का सम्मान करता है, फोटोग्राफी को इस तरह से मतलब पेश करता है और सदियों में ये विकसित हुआ जिसने कला

0: मतलब पेश करता है और सदियों में ये विकसित हुआ, जिसने कला, विज्ञान, पत्रकारिता, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति सभी को प्रभावित किया है। फोटोग्राफी की दुनिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां वो जो अपना जुनून है, अपना शौक है, उसे साझा भी करते हैं और जो उनका काम है इसके माध्यम से सबकी वाहवाही भी बटोरते हैं इसे दिखाकर, है ना।
1: अब अगर कभी पूछा जाए कि एक तस्वीर क्या है, तो एक तस्वीर किसी स्थान या अनुभव या विचार या किसी समय को जब कैद कर लिया जाता है, उस क्षण को, उसे एक हम तस्वीर कहते हैं। भाई अगर कभी पूछ लिया किसी ने ये सवाल, तो हम कम से कम परिभाषा तो दे सकते हैं, है ना।
0: जी, सही कहा दीपा।
1: और फोटोग्राफी के रूपों का सम्मान करते हुए हर साल एक वैकल्पिक थीम के साथ इस दिन को मनाया जाता है। तो इस साल का जो थीम है वो है घर, यानी हमारा हाउस होम जो हम कहते हैं। तो ये थीम उस स्थान या उस एहसास को दर्शाती है जिसे हम अपना घर मानते हैं, जहां आप रहते हैं, ये आपका कोई आपका गृह, आपका देश या वो स्थान जिस जहां आपको अपना सा लगे, एक सुकून भरा महसूस हो, तो ये थीम है। तो आप घर को लेकर के तस्वीरें अलग अलग खींच सकते हैं और सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह पर आज के दिन उस फोटोग्राफ को शेयर कर सकते हैं।
0: और देखो हमारे सुनने वाले लिख रहे हैं कि ये अद्भुत कला बीते हुए पलों को, भावनाओं को, यादों को हमेशा के लिए सहेज लेती है। अच्छी तस्वीर केवल एक दृश्य नहीं दिखाती, बल्कि अपने भीतर एक पूरी कहानी, एहसास और पूरा समय समेटे हुए रहती है। फोटोग्राफी ने दुनिया को देखने और समझने का नजरिया भी बदला है। तस्वीरें समय को रोक नहीं सकती, लेकिन बीते हुए समय को हमारी यादों में हमेशा के लिए जीवित रख सकती हैं। और ये बहुत अच्छी बात लिखी
1: है। बिल्कुल। और एक संदेश और आया है बड़ा प्यारा सा। ये संदेश में कहती है हमारी सखी कि सच कभी कभी हमारा ऐसे ही खींचा गया फोटो इतना अच्छा होता है कि उसके सामने बहुत ही बन ठन के खींचे गए फोटो बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। मतलब हम कभी कभी बिल्कुल तैयार होकर के खड़े होते हैं कि हाँ हमारा क्लिक करना चाहिए फोटो, लेकिन एक कैजुअल वाले भी जो पिक्चर है फोटो खींची हुई वो बहुत सुंदर लगती है उसके सामने।
0: और एक संदेश में बात लिखी गई है कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं। तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं। ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं और अपने नए दिन और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश कहता है कि पहले के समय में हमारे देश में लोगों के पास कैमरे नहीं होते थे, कैमरा बहुत महंगा हुआ करता था।
0: हाँ।
1: उसकी रील भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली होती थी और फोटो खिंचवाने के बाद धुलवाने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, और तब जाकर के फोटो मिलते थे। अच्छी आई या बुरी वो तो बाद की बात थी। फिर कलर फोटो खिंचने लगी और पहले स्टूडियो में जाना पड़ता था फोटो खिंचवाने के लिए। आज के समय में मोबाइल से ही फोटो खींचे जा सकते हैं, किसी के पास भेज दो, कोई टाइम नहीं लगता। अब तो लोगों के पास मोबाइल है, कैमरे बहुत कम लोगों के पास, लोग भी बहुत कम रखने लगे हैं, और वो भी उन्हें जिन्हें कैमरे का शौक है या वो जो कि इसको प्रोफेशनली इसको लेते हैं, वो लोगों के पास कैमरे होते हैं।
0: लेकिन उन कैमरों में भी आजकल ये एक सुविधा आने लगी है कि आप तुरंत उसको डेवलप करा सकते हैं। पहले जो कहते ना कि इंतजार करना पड़ता था ना, जो इंतजार की घड़ियां हैं वो लोगों की कम हो गई हैं। कई बार हम शादी में भी देखते हैं ना, फोटोग्राफर जब तस्वीर खींचते हैं तो चार पांच फोटो एक साथ में खींच लेते हैं और फिर आप सेलेक्ट करवा लेते हैं कि किस फोटो को फाइनल करके रखा जाए।
1: बिल्कुल।
0: कई बार होता है कि आंखें बंद हो गई, कहीं आप यहां वहां देख रहे होते हैं, तो वो फोटो पहले ऐसा ये सुविधा हमारे पास नहीं थी। अगर आपकी तस्वीर में आंखें आपने बंद कर ली, झपका दी, या आप कहीं इशारे से कुछ कह रहे हैं, आपका हाथ जहां का तहां है वहीं रह जाएगा।
1: हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और आज के दिन क्या क्या होता है, तो आज के दिन पे फोटोग्राफी की कला और शिल्प का सम्मान किया जाता है। चंचल, दुनिया भर के फोटोग्राफर तरह तरह के प्रदर्शनियों में भाग लेकर के अपने काम को चित्रित करते हैं। फिर अलग अलग वर्कशॉप्स होती हैं, कई जगह पर ऐसा होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें फोटोग्राफी के बारे में जानकारी दी जाती है। फिर फोटो वॉक करने वाले और टूर फोटोग्राफी के शौकीन को आसपास के स्थानीय लोगों का पता लगाने और उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए भी एक साथ ले जाया जाता है। तो ऐसा भी होता है कि आपको फोटोग्राफ खींचनी है, तो आपको कोई ऐसे छोटे से गांव, कोई ऐसे जगह हो, ट्राइबल एरिया कोई हो, तो वहां पे लेके जाते हैं और उनको बोला जाता है कि ये विशेष समुदाय इनका फोटोग्राफ खींचा जाए और फिर इन्हें अलग अलग जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साझा की जाती है वो सारी तस्वीरें।
0: हमारे एक श्रोता का संदेश है कि पहले तस्वीरें कैमरे में कैद होती थी, पर आजकल इसकी जगह मोबाइल ने ले ली है और डिजिटल रूप में ये होने लगी है। तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती है। तस्वीरों का होना हमारे

0: सपनों को हमारे नजदीक रखता है, यादों से जोड़े रखता है। तस्वीर हमारे लिए खास थी और हमेशा खास ही रहेंगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं। तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, बिना बोले सब कुछ कह देती हैं। और ये दिन नए और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देता है।
0: हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि एक समय था जब राजा रजवाड़े या बहुत धनाढ्य परिवार के लोग होते थे, उनके पास कैमरा होता था या फोटो का चलन उस समय ज्यादा था। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया, वैसे वैसे सुविधाएं भी सुलभ होती गईं, जैसे सामान्य मानवीय तक फोटोग्राफी का जमाना था। पर्यटन, धार्मिक स्थल और सभी जगह फोटोग्राफी होने लगी और ये एक व्यवसाय था। जब लोग अपनी तस्वीरों को घर पर पोस्ट के द्वारा भेजा करते थे, ऐसे वक्त ने लोगों के साथ कैमरों को भी रखा और आज मोबाइल के माध्यम से जो चीज़ कभी दुर्लभ थी वो सहज हो गई है। तो चलिए अभी गीत सुन लें।
1: चलिए।

0: साथ ही आना, और मैं भी तुम्हें बुला रही हूँ दीपा सखी, बस आना क्योंकि बहुत सारे संदेश हैं, इन्हें भी पढ़कर सुनाना। तो पहले एक संदेश मैं ही पढ़कर सुना देती हूँ।
1: चलिए
0: और
1: सुनाइए।
0: फोटोग्राफी की हम बात कर रहे थे ना, इस पर अपना एक किस्सा हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि कॉलेज के दिनों की उन्होंने बात लिखी है। कॉलेज में उन्हें एक कार्ड बनवाना था, उन्हें फोटो की जरूरत थी, तो शहर के पास, आगे लिखते हैं कि शहर के पास ही हमारी दुकान थी, उसके पास में एक फोटो स्टूडियो था, उसमें दोनों पिता पुत्र काम किया करते थे। लेकिन उस दिन लड़के के पिता दुकान पर नहीं आए थे, और उसी दिन क्योंकि मुझे फोटो की जरूरत थी और उनके लड़के के साथ मेरी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन वो लड़का बोला कि मैं तुम्हारी तस्वीर अच्छी बना दूंगा। लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि शायद भूतकाल में उनके साथ ऐसी कुछ घटना हो चुकी थी उसके साथ में।

0: लेकिन उस लड़के ने विश्वास दिलाया कि वो फोटो अच्छी लेगा, तो डरते डरते उसकी बात पर विश्वास करके वो तैयार हो गए फोटो खिंचवाने के लिए। और जब वो तस्वीर ले रहा था लड़का, तो मैं बहुत डरा हुआ था, घबराहट भी चेहरे पर थी और मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई, उसने तस्वीर मेरी बहुत अच्छी बनाकर दे दी। वो तस्वीर मेरे पास आज भी है, जब भी मैं उस तस्वीर को देखता हूँ तो उसमें मेरा चेहरा बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ दिखाई देता है।
1: देखिए कितने मजेदार उनकी यादें हैं ना तस्वीरों को लेके। और 1962 की एक याद हमारे श्रोता भाई यहाँ पे साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया की शादी का फोटो एल्बम बनाने पहली बार फोटोग्राफर को बुलाया गया था साल 1962 में। उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, हर जगह हर एक फोटो खींचने के बाद फ्लैश का लैंप बदलना पड़ता था। और उन दिनों मेरा बचपना था, तो 11 साल की उम्र थी उनकी। मंडप के बीच भाई भाभी के फोटो खींचते वक्त मैं भी हर फोटो में बीच में खड़ा हो जाता था।
0: और पहले ऐसा अक्सर होता था कि छोटे बच्चों को बड़ा शौक होता था कि वो हर तस्वीर में नजर आए।
1: हाँ,
0: और कहीं ना कहीं से वो झांकता हुआ चेहरा उनका नजर आ ही जाता था। पुराने एल्बम जब भी हम खोलते हैं ना, तो एक ना एक बच्चा ऐसा नजर आएगा जो हर फोटो में कहीं ऊपर से कहीं नीचे से अगल बगल से, या और जब तक फोटो उन्हें हटाया जाए वो फोटो क्लिक हो चुकी होती थी, वो एंड टाइम पर इस तरह से तस्वीर में घुस जाते थे।
1: और ये देखो एक और मजेदार संदेश आया है, हमारी सखी कह रही है कि फोटो में तो ऐसी ताकत है कि सिर्फ फोटो देखकर ही 18 साल पहले मेरी शादी हुई थी। वो कैसे, उधर से फोटो कागज में लपेट कर आई और इधर से हमने कागज में लपेट के दे दी फोटो और बस हो गई शादी। क्या बात है भाई, ये जमाना कितना सुलभ और सुंदर और एकदम सादा सा था, है ना।
0: बातें आगे बढ़ाएंगे, पहले एक गीत सुन लीजिए।
1: चलिए।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और हमने बहुत सारी बातें फोटोग्राफी के बारे में की। और आज एक और दिवस हम मना रहे हैं, 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस, और ये उन लोगों की याद में मनाया जाता है दीपा, जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट जो भी आए हैं उनमें या तो अपनी जान गंवा दी या फिर मानवीय उद्देश्यों के कारण और अपने दूसरों की सहायता के कारण उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया।
1: जी, और इसके पीछे अगर इतिहास जाने तो वो ये था कि 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर हमला हुआ जिसमें करीब 22 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए, और जिनमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वियरा डिमेलो भी शामिल थे। तो साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस इसके रूप में नामित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, और फिर ये प्रस्ताव स्वीडन ने रखा था।
0: और जिस दुर्घटना की या जिस हादसे की आप बात कर रही हैं, ऐसा माना जाता है कि अब तक जितनी भी त्रासदी हुई उनमें ये बहुत खतरनाक थी, और करीब 4000 से भी अधिक राहत कर्मी ने इसमें जान गंवाई थी, उनको निशाना बनाया गया था। और कि जो जानलेवा हमले हुए थे इसमें न जाने कितने घायल हुए, कितनों ने अपनी जान दे दी, और कुछ गिरफ्तार भी हुए, कुछ का अपहरण भी हुआ। इस तरह की घटनाएं ना हो, मानवता लोगों में बनी रहे, इसीलिए ऐसे दिन मनाए जाते हैं ताकि जो भी अशांति संघर्ष है उससे अलग किया जा सके खुद को और एक शांति

0: ये स्थापना की जा सके।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये देखिए ना, ये विश्व भर में फैली अशांति और संघर्ष में लाखों लोग अपने सरजमी से भी अलग हो जाते हैं और किसी अन्य जगह पर उन्हें स्थापित किया जाता है, तो ऐसे लोगों की संख्या आज ये अनुमान किया जाता है कि 6.5 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को एक जगह दे दी जाए, उनके भी एक ठिकाना उनका हो जाए और उनका जो जीवन यापन है बराबर चलते जाए, तो ये भी एक उद्देश्य है मानवतावादी दिवस का।
0: और इस पर बहुत सारे संदेश भी हमें मिल रहे हैं। मानवता, जो हमने एक शब्द दिया था कि शब्द हमारा है, विचार हमारे श्रोताओं को लेकर भेजने हैं, तो मानवता के बारे में जो विचार उन्होंने लेकर भेजे हैं, मानवता जो मानव से जुड़ी उसकी क्रियाशीलता को दर्शाती है कि वो दूसरों के प्रति कैसा भाव रखता है। मानवता के मूल में क्षमा, सहिष्णुता, दया, प्रेम, ये सभी भाव हैं जो आदमी का आदमी के प्रति उसकी सोच को दिखाता है। जिस समाज में हम रहते हैं वहां हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उन सब में मानवता का भाव रखना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी संवेदनाएं, हमारे परोपकार मानवता से जुड़े हुए विषय हैं, ये अलग नहीं है। दूसरों के प्रति दया भाव रखना, प्रेम रखना, अहंकार त्याग कर सरल ढंग से पेश आना, ये सब मानवता के ही स्तंभ हैं।
1: बिल्कुल। और एक और संदेश है, मनुष्य को जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, सद्भावना, आपस में मेल मिलाप की राह पर चलना चाहिए, नहीं तो कैसे मानवता महकेगी और वसुधैव कुटुंब की भावना होगी कैसे। तो विश्व हमारा परिवार है, ऐसी मानवता की महक और सार्थकता की आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: बिल्कुल सही बात लिखी। इसी तरह से एक छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत बड़ी बात कहता है कि मानवता कहने में कोई बात नहीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाने, किसी का हाथ थामने और बिना किसी के स्वार्थ के जब मदद करने में है, वही मानवता है। इंसानियत की सबसे खूबसूरत भाषा वही है जिसे बोलने के लिए शब्दों से ज्यादा एक संवेदनशील दिल की जरूरत है।
1: और एक और संदेश आया है चंचल, ये कहते हैं कि मानवता शब्दों और विचारों का वो सेतु है जो करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में पिरोता है। ये किसी भी संकुचित दायरे या सीमा से परे जाकर मनुष्यता के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करता है।
0: बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मानवता के ऊपर मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता द्वारा जो बात कही गई है वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ आप सभी को। मानवता और इंसानियत, जिसका अर्थ होता है किसी दूसरे के प्रति दया, प्रेम और भलाई करना, सभी के प्रति प्यार की भावना रखना, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का हित सोचना। और वाकई में ये चीजें भी देखने को नहीं मिलती हैं। आगे लिखते हैं कि ये व्यक्तिगत व्यवहार से जुड़ा हुआ है, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव, यही मानवता है।
1: बिल्कुल सही। और आज के समाज में देखो मानवता को लेकर बहुत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। कभी कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं दुर्घटना हो गई, किसी संकट के समय लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। रक्तदान करना, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना और पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी मानवता के रूप है।
0: बिल्कुल। आज जब विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को दीपा बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जो कहते हैं ना कि मानवता, इसे तकनीक से हम जोड़ के देख ही नहीं सकते ना। कोई व्यक्ति कितना भी उसके पास धन है, लेकिन वो उसके धन का वो सिर्फ अपने लिए ही सहेज कर रखता है, किसी की सहायता नहीं करता, तो कहते हैं कि उसके धनी होने का भी कोई महत्व नहीं है। अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, भले आपने बहुत सारा धन खर्च नहीं किया, आपने कोई छोटी सी ऐसी काम कर दी, छोटी सी ऐसी कोई बात कह दी जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अगर मान लीजिए किसी दुखी दिल है, उसको सहारा दे दिया, सांत्वना के दो शब्द कह दिए, तो ये भी मानवता का परिचय देता है। हमारे समाज में मानवता के बहुत सारे उदाहरण हैं दीपा, जिसमें प्राकृतिक आपदा के समय या किसी दुर्घटना के समय जब लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद करते हैं, रक्तदान करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो ये चीजें है ना, यही असली मानवता होती है।
1: हमारे एक सखी ने 4 शब्द लिखा है मानवता के लिए, जियो और जीने दो।
0: क्या बात है। तो चलिए अब गाना सुन लेते हैं।

0: जितनी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ।
1: और भाई एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होनी ही चाहिए। जब कोई उत्सव होते हैं ना, तो ये भावना हमारे देश में सब जगह देखने को मिलती है। सब मिलजुल कर उस त्योहार को मनाते हैं। और महिलाओं में सावन के महीने का एक खास आकर्षण होता है। सब मिलकर सखियां साथ झूला झूलने जाती हैं।
2: बिल्कुल।
1: और तीज के दिन खास तौर पर लहरिया पहना जाता है। अभी हाल ही में तीज का त्योहार गया है, जिसे राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया गया।
2: बिल्कुल।
1: तो जो राजस्थान की हमारी सखियां ना, जो इस वक्त सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, तो वो हमारी बात से जरूर सरोकार रखती होंगी कि उन्होंने भी लहरिया पहना होगा, नहीं पहन पाई किसी कारणवश, तो मन में मलाल जरूर रह गया होगी लहरिया नहीं पहन पाई।
2: तो कोई बात नहीं, इस दफा लहरिया साड़ी ले आए, क्योंकि सावन अभी बाकी है। तो और उसे पहन के खूब सुंदर सजे धजे और ढेर सारे तस्वीरें खींचे, और फिर अब तो कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म से आप साझा कर सकती हैं।
1: और जब आपने सजने धजने की बात कही ना, तो साड़ियों के बहुत अलग अलग प्रकार

0: होते हैं। हर परिधान के साथ में एक अलग तरह का श्रृंगार किया जाता है, जो ज्वेलरी हम पहनते हैं ना, जो जेवरात हम पहनते हैं, तो हर परिधान के साथ अलग तरह के जेवर पहनते हैं। अगर आपने बनारसी साड़ी पहनी है तो जेवर अलग तरह के होंगे, आपने सूती कोई साड़ी पहनी है तो अलग तरह के होंगे, जॉर्जेट की पहनी है, लहरिया पहना है, अब लहरिया में भी आपने भारी भरकम पहना है या हल्का फुल्का पहना है, तो आपके जो श्रृंगार की चीजें होती हैं वो उस तरह से हो जाती हैं। बहरहाल हम बताते हैं कि लहरिया राजस्थान की एक पारंपरिक और बहुत खूबसूरत साड़ियों में से एक होती है, और इसकी खास पहचान होती है इसके जो लहरदार और तिरछे पैटर्न बने होते हैं,
1: जो बने होते हैं जी,
0: और खास तौर पे राजस्थान की जो रंग बिरंगी संस्कृति उत्सव है, वहां की जो संस्कृति है उससे जुड़ी हुए ये परिधान होते हैं।
1: अब देखो ना चंचल, ये लहरिया, ये शब्द ही लहर से आया है।
0: हाँ।
1: इसमें कपड़े को विशेष तरीके से मोड़ कर या बांध कर रंगाई की जाती है, जिससे कपड़े पर लगातार लहरों जैसी धारियां बन जाती हैं, और ये खास तौर पे टाई और डाई यानी वो तकनीक, बंदेज या रंगाई इसकी तकनीक का ही एक रूप है। और इस साड़ी के लहरदार धारियां इसकी खासियत के साथ इसकी सबसे प्रमुख पहचान भी है। लहरिया साड़ी ज्यादातर आप देखो तो एकदम चटक कलरों में होगी, है ना, पीली, गुलाबी, लाल, हरा, नीला, नारंगी, सारे जो चटक कलर होते हैं हमारे, वो इनमें इन साड़ियों को आप देख सकते हो। हालांकि आजकल अब थोड़े से इंग्लिश कलर, इंग्लिश टोन्स भी लेने लगे हैं, लेकिन फिर भी
0: जो पारंपरिक
1: कलर जो इस साड़ी के साथ जाता है ना, गुलाबी पहन लीजिए आप, हरा पहन लीजिए, आहा,
0: जैसे आपने
1: लाल कलर की सुर्ख साड़ी हो तो क्या बात है।
0: आपने पीले कलर का अगर बेस है तो उसपे कुछ नारंगी या हरे रंग की धारियां होंगी, अगर गुलाबी बेस है साड़ी का तो कुछ ज्यादा गहरे रानी रंग की या हरी सी कुछ धारियां, तो जो बीच में धारियों का रंग अलग होता है ना, वो इसे और खूबसूरत बना देता है।
1: बिल्कुल खूबसूरत बना देता है। और शादी ब्याह में तो आप देखिए थीम रखने लग जाते हैं आजकल तो, कि एक किसी फंक्शन पे हम ये वाली साड़ी या इसका लहंगा बना करके पहनेंगे, और फिर देखिए जब चटक कलर में पारंपरिक नृत्य होता है तो उसका तो जो नजारा ही कुछ एक अलग आनंद देता है।
0: हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश हमें मिल रहे हैं। एक संदेश में कहा गया है कि लहरदार यानी लहरिया साड़ी मूल रूप से राजस्थान, विशेषकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ की पारंपरिक पहचान है। अपनी खूबसूरत लहरनुमा डिजाइन के कारण राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मुंबई, सभी जगह सावन, तीज और मेलों के अवसर पर यह बहुत पसंद की जाती है। राजस्थान की इस कला का ये मुख्य केंद्र है। यहाँ के स्थानीय त्योहारों में और रोजमर्रा के पहनावे में लहरिया का विशेष स्थान है। उत्तर भारत में सावन मास, हरियाली तीज, रक्षाबंधन के मौकों पर इन लहरिया साड़ियों का बहुत भारी क्रेज देखने को मिलता है, और गुजरात, महाराष्ट्र के पारंपरिक बाजारों में शादी ब्याह के उत्सव पर भी इनकी बहुत मांग रहती है। सावन और मानसून के मौसम में हरी, पीली, लाल और मल्टी कलर की लहरिया साड़ी पहनी जाती है, जो जॉर्जेट, कॉटन
1: फैशन में है ये मल्टी कलर वाली
0: जी। और अलग अलग फैब्रिक में लोग इन्हें पसंद करते हैं।
1: और हम अगला संदेश सुनाए चंचल, तब तक हम अपनी सखियों से भी पूछते हैं कि लहरिया साड़ी आपने इन दिनों में पहनी या नहीं पहनी, हमें जरूर बताइएगा। और सुनिए ये संदेश, ये भी यही बता रहा है संदेश कि टाई एंड डाई ये वाले कला से इसको बनाया जाता है, जिसमें पानी की लहरों की तरह तिरछे और सुंदर धारियों वाले पैटर्न बनते हैं, और राजस्थान का ये पारंपरिक पहनावा है। साथ में कह रहे हैं कि इसमें कपड़े को तिरछा मोड़ कर धागे से बांधा जाता है, फिर चमकीले रंगों से रंगा जाता है। पचरंगा लहरिया जो है उसमें 5 रंगों वाली विशेष डिजाइन होती है, यहाँ की सबसे पुरानी और लोकप्रिय शान है ये वाली स्टाइल, और प्रमुख प्रकार और रंग है लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बहुरंगी शेड सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर कपड़े की बात करें तो ये संदेश कहता है कि जॉर्जेट, क्रेप, शिफॉन, सिल्क जैसे इन जैसे हल्के और जो लहरदार, जो एकदम बिल्कुल आराम से जो जिसे पहना जा सके, ऐसे वाले फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। गोटा पत्ती का वर्क होता है फिर तो, त्योहारों और शादियों के लिए इस तरह महीन गोटा पत्ती या जरदोसी का काम इस पर किया जाता है। राजस्थानी सावन और उत्सवों के माहौल में सजी खूबसूरत लहरिया साड़ियां, ये ताजा डिजाइन आजकल खूब वहां के मार्केट में आप देख सकते हैं।
0: सिर्फ साड़ियां ही नहीं, जो पुरुष हैं वो दुपट्टे डालते हैं लहरिया कि जो दुपट्टे बनने लगे हैं, वो कुर्ता पायजामा पहनकर उस पर लहरिया पहनना, सिर्फ हम कहते हैं ना कि महिलाएं शौकीन होती हैं, तो लहरिया के जो दुपट्टे हैं जहां महिलाएं उनको शौक से पहनती हैं, तो पुरुष भी इसे बहुत चाव से अपने कुसल कुर्ते पजामे पर सजाते हैं।
1: और सिर्फ दुपट्टा ही नहीं, पुरुष तो उसके कुर्ते बनते हैं, शॉर्ट कुर्ता जीन्स के ऊपर आप पहनिए, देखिए क्या खूबसूरत लगता है।
0: इसके अलावा पगड़ियां भी पहनी जाती हैं, पगड़ियों में भी लहरिया होता है, जो पगड़ी जिस कपड़े की आप बांध कर पहनते हैं उसमें भी लहरिए का इस्तेमाल किया जाता है। एक अन्य संदेश में कहा गया है कि लहरिया इसके ब्राइट कलर

0: कॉम्बिनेशन और लाइट वेट होना ये हर उम्र की महिलाओं पर बहुत फबता है। हाथ से बनी असली लहरिया साड़ी रंग की शुरुआत, इसमें रंग जो है वो धुलाई में थोड़ा सा निकल सकता है क्योंकि ये टाई डाई से बनाई जाती है।
1: और लहरिया को एक प्रकार, एक संदेश में हमारी सहेली ने लिख भेजा है, एक दली यानी इसमें केवल एक ही रंग की लहरदार धारियां होंगी और इसमें 5 अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होगा जो बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी। और एक होता है, एक और प्रकार है मोठड़ा। तो जब लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती हुई चेक्स वाला पैटर्न बनाती हैं, मतलब एक तरफ से और दूसरे तरफ से जब आती है तो उसे मोठड़ा कहते हैं।
0: तो चलो वे गाना सुन लेते हैं, सुंदर साड़ियों की बात हो रही है, सुंदर गीत।

0: और देखो जब हम तुम दोनों मिल जाते हैं ना तो बहुत सारे संदेश लेकर आते हैं, और अब कुछ आगे संदेश की तरफ बढ़ते हैं। और हमने बात की थी ना कि कुछ छटपट बनने वाली जो चीजें होती है ना उनकी बात की जाए, क्योंकि कई बार हमारे पास समय की कमी होती है या अचानक से मेहमान आ जाते हैं, हमें कहीं जाना होता है और हम ऐसे ही किसी चीज की तलाश में रहते हैं कि झटपट ऐसी कोई चीज बना दी जाए जो स्वादिष्ट भी हो और जिसे आहार बना रहे पेट में।
1: बिल्कुल सही।
0: सूजी के अप्पे ऐसे होते हैं जिन्हें झटपट बनाया जा सकता है। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए हमारे श्रोता ने हमें लिखकर भेजी है। 1 कप सूजी में 1/2 कप दही और 1/2 कप पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बना लीजिए। इसमें 1/2 कप बारीक

0: कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, घिसा हुआ गाजर मिलाएं, दो हरी मिर्च और हरा धनिया भी काट कर डाल दें। अब ये जो सब्जियों की सामग्री बनाई गई है, इसमें आप जो चीजें नहीं खाते हैं उन्हें आप ना डालें, और कुछ स्वाद के लिए और चीजें डालना चाहते हैं तो उन्हें आप जोड़ भी सकते हैं। आगे इसे बनाने के लिए रेसिपी है कुछ इस तरह से है कि एक छोटे पैन में एक चम्मच गर्म तेल करके डालें, राई, जीरा, नीम की छोटी पत्तियों का तड़का लगाकर इसमें एक गाढ़ा घोल तैयार कर दें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब आधा चम्मच इसमें कुछ भी आप या तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इस तरह का कुछ भी डाल सकते हैं, और तुरंत अप्पे के सांचे में डालकर गर्मा गर्म फूले फूले अप्पे तैयार कर लीजिए। नारियल की चटनी या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ में इसे परोसकर खाया जा सकता है।
1: बिल्कुल। और एक और ये रेसिपी भेजी हमारी सखी ने, भुट्टे की टिकिया बनाना बताया है कि कटोरी, एक कटोरी उबले हुए भुट्टे आप ले लें, मिक्सी में पीस लें, एक कटोरी उबला हुआ आधा आलू ले सकते हैं, आधा कटोरी पनीर, और इन सबको मिक्स कर लें, हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह डाल लें, और थोड़ा सा चाहें तो शिमला मिर्ची डाल लें, सब कुछ मिक्स करके अपने हिसाब से मसाले डाल लें, टिकिया बनाकर इसे सेक लें।
0: और अभी गाना सुन लेते हैं,
1: चलिए।

अच्छा, अगर झटपट से आपको बनाना है, कोई अचानक आ जाए, तो आप ऐसा करिए कि थोड़े से पोहे को पानी के में अंदर से धो के उसको निचो लीजिए, और फिर जो उबले हुए अगर आलू पड़े हैं फ्रिज में, तो उसको भी आप इसके साथ में मिक्स कर लीजिए, और फिर देखिएगा जब आप पोहा निचोड़ेंगे ना, तो अच्छे से वो फूल जाते हैं थोड़ी सी देर के बाद। इसमें उबले हुए आप आलू डालिए, भुनी हुई अगर मूंगफली घर में है तो उसको दरदरा पीस के वो भी डाल लीजिए, एक ब्रेड का टुकड़ा

0: पानी में भिगोकर उसे भी निचोड़कर मसलकर अच्छे से डाल दीजिए। अब बारीक कटे हुए प्याज डालकर आप अगर खाते हैं तो बारीक धनिया पत्ती प्याज अगर खाते हैं तो वो डाल लीजिए, हरी मिर्ची डाल लीजिए और इसका एक थोड़ा सा डो जैसा मतलब आटे जैसा तैयार
1: हाँ,
0: कर
1: मतलब
0: लीजिए।
1: ये एक साथ नहीं खट्टा हो जाए।
0: हाँ, टिकिया का टिकिया जैसा बनना है और बस आप टिकिया का उसका शेप लेकर के झटपट से आप चाहें तो फ्राई कर लीजिए या शैलो फ्राई कीजिए और देखिए बन गई आपकी बढ़िया सी टिकिया।
1: और बस हमारी सखियां टिकिया बनाकर खाएंगी क्योंकि समय हो चला है पूरा। हम लेते हैं इजाजत, दीजिए चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी को इजाजत,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत।
1: हमारे सामने है एक बहुत बेहतरीन कलाकार जिनके हाथ में सब कुछ है, सारी रेखाएं हैं कला की, और उन्हीं रेखाओं में से रेखाएं चुनने की बारी आई तो हम भी थोड़ा परेशान हो गए किस विषय पे बात की जाए। तो हम आपसे ही पूछ लेते हैं पंकज जी कि आप क्या ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, वॉइस ओवर डायरेक्टर भी हैं, और आपकी आवाज में भी बड़ा दम है जो अभी लोग सुनने वाले हैं। इसलिए विविध भारती में आपका स्वागत करते हैं बहुत हृदय से, बहुत प्यार से, और पहला प्रश्न हम आपसे पूछ चुके हैं, स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विविध भारती सारे दर्शकों को और विविध भारती से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया, याद किया और कहा कि हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे
1: जी।
2: और जैसे आपने कहा कि मैं एक्टर भी हूं, सिंगर भी हूं, डायरेक्टर भी हूं, प्रोड्यूसर भी हूं, वॉइस ओवर डायरेक्टर
1: जी,
2: एज ए डबिंग डायरेक्टर मैंने तकरीबन 18-20 फिल्में की हैं और अलग अलग विषय पे झुकी हैं। तो आपने मुझे पूछा कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट इसमें से पसंद है, तो मुझे सारे ही पसंद है। जब जब जो मेरे पास सामने जो प्रोजेक्ट होता है
1: जी,
2: मैं उसको बहुत आनंद से, बहुत अंतरात्मा से करता हूँ
1: जी,
2: बहुत सिंसेरिटी से।

0: करता हूँ ताकि इसमें मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी जो भी है
1: जी,
0: वट एवर आई एम कैपेबल ऑफ, मैं उसको अच्छी तरह से कोशिश करके बहुत अच्छी तरह उसको प्रस्तुत करूं।
1: तो चलिए हम इसको और सरल बना देते हैं पंकज जी। छोटे वाले पंकज ने जो बहुत छोटा सा था उम्र में, वहां पे उस पंकज ने सबसे पहले क्या किया था?
0: ये बात जाती है बहुत पीछे जाती है, व्हेन आई वाज इन कश्मीर
1: जी।
0: असल में मैं कश्मीरी पंडित हूँ, पंकज रैना, रैना से नाम तो समझ ही आया होगा आपको कि हम कश्मीरी पंडित हैं
1: जी।
0: कश्मीर में रहते थे, जवाहर नगर हमारा अपना घर था, और हमारा जो घर था वो एक कल्चरल हब जैसा था।
1: अच्छा,
0: ये पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है
1: जी,
0: पंडित महेंद्र नाथ रैना, जो आत्मा से अंदर से बहुत अच्छे लेखक और शायर थे
1: जी।
0: वैसे वो जे एंड के असेंबली में काम करते थे, कार्यरत थे, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा थी वो एक कवि की थी और लेखक की थी
1: जी।
0: तो उनकी वजह से जो मेरे जो बाकी भाई बहन थे वो भी कला क्षेत्र से जुड़ गए थे।
1: अच्छा,
0: पिताजी वैसे बहुत सारे पेपर्स के भी एडिटर रहे हैं जो हमारे जे एंड के में हुआ करते थे। लेकिन हमारे घर में जैसे मेरे एक भाई, बड़े भाई थे भुवनेश, वो पेंटर स्कल्प्टर थे, पेंटिंग में स्कल्पचर का काम था उनका, उनको स्कल्पचर और पेंटिंग का शौक था। तो हमारा नीचे एक कमरा था जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला डेडिकेटेड था, उसमें पत्थर पे भी स्कल्पचर बनते थे, लकड़ी पे भी बनते थे, ऑयल पेंट भी होता था, ये सब चीज। हम बहुत छोटे छोटे थे।
1: अच्छा।
0: तो हमारे बड़े भाई थे, उनसे बड़े भाई थे जो फिजिक्स के डीन प्रोफेसर हुए हैं, वो मेरे पहले गुरु थे, जो प्रोफेसर तेज रैना, जिन्होंने कभी किसी संगीत सीखा नहीं, जिन्होंने उस तरह को कुछ किया नहीं, लेकिन मैं जब 10 साल की उम्र में था तो उन्होंने मुझे पहली एक गजल सिखाई थी इसकी, फैज अहमद फैज की, तो मैंने वो बच्चों के कंपटीशन में गा के मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। तो दूरदर्शन नया नया आया था 1972 में कश्मीर में, तो फिर वहां से मैं बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाने लगा।
1: मैं आपको यहां रोक रही हूं, आपको फैज अहमद फैज की एक गजल गाने पर फर्स्ट प्राइज मिला था, तो हमारा अधिकार बनता है कि वो गजल हम भी सुने जिसपे आपको प्रथम पुरस्कार मिला था, और वो हमारा हमारे श्रोताओं का अधिकार तो बनता है, तो अगर आप कुछ गुनगुना दें उसके कुछ हिस्से तो
0: मेरी, लेकिन बच्चों जैसी आवाज कैसे आएगी?
1: अब इस उम्र की उसी आवाज में सुना दीजिए, हम सुनना चाहते हैं।
0: दोनों जहान तेरी

0: क्या बात है।
1: दोनों जहान तेरी।
0: आ खूबसूरत आवाज है, इतना तो विश्वास है कि हमारे श्रोता तालियां जरूर बजा रहे होंगे सुनते सुनते। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वो जो बच्चा है वो रेडियो पे जा रहा है ना गाने के लिए या।
1: टेलीविजन पे और रेडियो पे। फिर टेलीविजन में बच्चों का प्रोग्राम होता था
0: जी
1: 1972 में, तो मैं वहां जाने लगा। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं छोटा सा था, तो मैं गाता भी था। उससे पहले भी मैंने एक, जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, तो उनका एक एनुअल फंक्शन में मैंने ऑन द स्पॉट कहा था कि मैं भी गाऊंगा। उनका वो 15 अगस्त का प्रोग्राम था,
0: जी
1: तो मैंने वो बच्चों की आवाज में ही 8 साल की उम्र में ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। और
0: आहा
1: मैंने कहा था मैं भी गाऊं, जिद की मैंने।
0: जी जी
1: और चारों तरफ लोग खड़े थे, बहुत पुरानी बात है, इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 70 की
0: हाँ
1: बात कर रहा हूं मैं। और लोग उस वक्त, उस तरह का स्टेडियम बना भी नहीं था, तो उस तरह के लोग आसपास खड़े थे, सब सबकी आंखों में आंसू थे। मैं, मेरी आवाज एकदम लता जी जैसी थी, बच्चों की आवाज थी, ऐ मेरे वतन के लोगों गा रहा था। तो यहां से एक तरह से, जैसे बोलते हैं ना, वो समझ आने लगा कि हाँ इसकी आवाज बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलने लगा।
0: जी
1: फिर वो होते होते फिर वो बच्चों का प्रोग्राम आ गया दूरदर्शन का, फिर रेडियो में सुनने लगे। आकाशवाणी और विविध भारती का मेरे
0: जी
1: जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बचपन से, जो कि तब तो टेलीविजन था नहीं, नया नया आया था, घर में एक रेडियो होता था, चाहे मर्फी का या फिलिप्स का, लेकिन वो तार से जुड़ा होता था, इलेक्ट्रिसिटी, वो चलता था। और गीत और तरह तरह के प्रोग्राम आते रहते थे, हम सब सुनते थे।
0: जी
1: भाषा उच्चारण सीखने में तो काफी योगदान रहा है विविध भारती का और आकाशवाणी का, तो हम इनके हमेशा से शुक्रगुजार रहे हैं, अब हम भी रहते हैं। आज भी बहुत सौभाग्य है कि आकाशवाणी में आके हम कुछ चर्चा कर पा रहे हैं आकाशवाणी और विविध भारती के बारे में।
0: जी
1: तो इनका बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में। जबकि कहते हैं कि देखिए, हर प्रांत, हर राज्य का एक अलग भाषा होती है, हर राज्य की एक अलग डायलेक्ट होता है, हम जाते हैं तो वो दिखता है जब कोई बात करता है। लेकिन इन सब चीजों पे हमने जब वर्क किया, तो हमें, क्योंकि अगर आप कश्मीरी नॉर्मल

रेडियो प्लेज जो होते थे, तो हमारा फिर ड्रामा के लिए ऑडिशन हुआ रेडियो का, तो उसमें हम अच्छी ग्रेड में हुए, तो फिर हम उसमें प्लेज करते थे। तो वहां से कुछ न कुछ, शुरू शुरू में कभी 15 रुपए का चेक मिलता था, फिर बाद में धीरे धीरे 50 रुपए का हुआ, ऐसी शुरुआत हुई। तो यहां से तो आना शुरू हुआ ही था जब कोई ना कुछ, लेकिन पिताजी की वजह से हमें इस तरह का वो नहीं था, उनका हम आज भी धन्यवाद करते हैं बहुत।

0: हम आज भी धन्यवाद करते हैं, बहुत करते हैं कि उन्होंने कभी हमें सप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं,
1: जी
0: कि उन्होंने हमें खिलने दिया जैसे हम खिलना चाहते थे।
1: जी
0: तो उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा, उन्होंने सिखाया कि हाँ, ये अब चेक मिला है तो कहाँ रखे, 15 रुपए का चेक मिला है, छोटे छोटे थे। तो पिताजी अपने साथ बैंक ले गए, उन्होंने बोला कि ये अकाउंट खुलवाया तो इसमें चेक डाल दो। फिर जब वो पैसे जमा होते थे तो हम कभी वो हमारे लिए कभी कभी शूज लेके आते थे, जाते थे, कभी वो लाते थे। तो उस तरह का उन्होंने सिखाया शुरू से, बचपन से, कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इकोनॉमिक जब से कुछ पैसे कमाए हैं तो उनको कैसा उपयोग होना चाहिए। फिर होते होते मैं घर से निकल पड़ा था, एक्चुअली सच बताएं तो मेरे
1: निकल
0: भाग्य
1: पड़े थे,
0: में
1: मतलब
0: ऐसा था
1: भाग
0: कि मैं,
1: पड़े थे या निकल पड़े थे?
0: नहीं, घर वालों की सहमति से ही आया था, ऐसा नहीं
1: अच्छा
0: भाग के नहीं आया।
1: जी
0: तो मैं 1980 में दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने भारतीय कला केंद्र में एडमिशन लिया। मैं थिएटर भी करता था और मैं पंडित अमरनाथ जी से म्यूजिक भी सीख रहा
1: संगीत
0: था।
1: भी सीख रहे।
0: और वो भारतीय कला केंद्र दिल्ली मंडी हाउस में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो श्री राम लोगों का है। तो वहां हमने म्यूजिक क्लास में मुझे एडमिशन मिला अमरनाथ जी के यहाँ। तो पीछे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी थी और बाकी टाइम सब, हर वक्त क्लास नहीं होता था लेकिन बाकी टाइम 1-2 घंटे निकाल के मैं और हम लोग, मेरे कुछ साथी थे, उनके साथ हम थिएटर वगैरह, प्लेज पढ़ना, प्लेज की रीडिंग करना और प्ले करना। तो वहां पर श्रीराम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, फिक्की ऑडिटोरियम, बहुत सारे ऑडिटोरियम मंडी हाउस में थे। तो वहां हम कभी कभी फिर नाटक करते थे और कभी कभी यहाँ, छोटे ही थे, आई थिंक ऑलमोस्ट टीनेज की एंड ही था मेरा कुछ ऐसा जब मैं दिल्ली
1: 18,
0: आ गया था।
1: 20 इयर्स का एज होगा,
0: 19-20 साल की
1: हाँ,
0: उम्र
1: हाँ.
0: थी। तो वहां मैं 5 साल दिल्ली में रहा। वहां पे उस दौरान फिर मैंने कुछ वहां भी रेडियो में मैंने म्यूजिक में ऑडिशन दिया तो मैं, मुझे पास हुआ था दिल्ली रेडियो से। मैं सिंगिंग में बी हाई ग्रेड में
1: मतलब
0: पास
1: रेडियो
0: हुआ।
1: का साथ छोड़ा नहीं?
0: रेडियो मेरे साथ में हमेशा रहा है।
1: जी,
0: और मेरी बहन का तो ये था कि हमारे एग्जाम्स होते थे ना,
1: हाँ,
0: तो उसका रेडियो चलता रहता था, गीत भी चलते रहते थे, वो प्रिपेयर भी करती
1: भी
0: रहती थी। मुझसे ऐसा नहीं होता था, उससे हो जाता था।
1: जी, लड़कियां मल्टी टैलेंटेड होती हैं।
0: तो मेरी ट्रेनिंग ही इस तरह की रही है
1: जी।
0: लेकिन कभी उस तरह की वो रही नहीं डेस्परेशन की हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं नौकरी करनी है, ऐसा नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है ट्रेनिंग ऐसी होती रही, उसके साथ में इंडल्जेंस वैसी होती रही, जैसे कि जैसे म्यूजिक भी था, थिएटर भी था और अपनी भाषा पे और उच्चारण पे तो शुरू से ही ध्यान देते थे। तो आवाज का भी कुछ एक समझ आया कि आवाज को कैसे इस्तेमाल करना है।
1: जी,
0: कुछ वहां दिल्ली में प्रोग्राम करने का मौका मिलता तो एंकरिंग करने का मौका मिला।
1: जी,
0: तो इस तरह की सारी चीजें होती रही अपने आप ही, सच बताएं तो।
1: मतलब आपके लिए अपने आप ही सब हो रहा था और उसी अपने आप में आपने ना आवाज की बात के बारे में कई बार बोला।
0: जी,
1: उच्चारण के बारे में कई बार बोला। तो मैं आपके जीवन की जो परिधि पे हम चल रहे थे उस परिधि पे एक मिनट के लिए रुक के एक बात पूछना चाहती हूँ। आप वॉइस ओवर डायरेक्टर हैं, हमारे श्रोताओं में कई सारे बच्चे हैं जिनकी आवाज बहुत अच्छी है, शायद उनको मॉड्यूलेशन भी आता है खुद से अपने आप से, और वो ऐसा सोशल मीडिया पे कई चीजें करके भी डालते होंगे, पर वो चाहते हैं कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएं। तो उसके लिए वो क्या करें, अगर आप थोड़ा सा बीच में कुछ सिखा दें फिर हम आपकी यात्रा पे वापस आ जाएंगे।
0: मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई वॉइस ओवर या डबिंग करना चाहता हो या वॉइस एक्टर बनना चाहता हो,
1: जी,
0: उसे सबसे पहले तो अपनी भाषा पे और उच्चारण, जो मैं बार बार कह रहा हूं,
1: जी,
0: क्योंकि ये आजकल सबसे ज्यादा कमी अगर मुझे कहीं महसूस होती है, कहीं ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट सुनने में, तो ये बहुत तकलीफ होती है कि लोग, उनका भी शायद कितना दोष है, उनके शिक्षक वैसे हैं क्या, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, उच्चारण पे बहुत ध्यान देना चाहिए, वॉइस क्वालिटी पे देख उनकी वॉइस। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज में बेस कैसे आएगा,
1: हाँ,
0: ऐसा नहीं है। मुझे कहीं लोग सवाल पूछते हैं कि हमारी आवाज ऐसे कैसी होगी, आपके जैसे हमारी आवाज कैसी होगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की एक आवाज, एक अपनी क्वालिटेटिव आवाज वो नेचर से मिलती है।
1: जी,
0: उसमें थोड़ा सा हम लोग एनहांसमेंट कर सकते हैं अगर हम उसका थोड़ा रियाज करें, जैसे हम खरज का रियाज करें मॉर्निंग में उठ के, वो संगीत
1: खरज का रियाज कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा
0: वॉइस को थोड़ा सा नीचे के टोन, जैसे ऑक्टेव्स हैं, जैसे सप्तक है, मंद सप्तक है, मध्य सप्तक है और तार सप्तक है, तीनों ऑक्टेव्स जो है उसमें मध्य सप्तक से आपको मॉर्निंग में, चूंकि आप नींद से उठते हैं तो उसके बाद आपके पास थोड़ी सी बैठी होती, मतलब
1: काफी
0: बेस
1: अच्छा होता
0: है, तो
1: है,
0: उसमें
1: हाँ,
0: आप नीचे की तरफ सा
1: के
0: नी,
1: बाद
0: हाँ
1: नी,
0: नीचे
1: जी,
0: आए
1: जी,
0: आ, आ, आ, नीचे की तरफ जितना जाएंगे, और कहते हैं कि जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर छू सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि वेन्यू आप जब खर्च का रियाज करते हैं तो तार सप्तक में आपकी आवाज और भी

0: आगे
1: खुलती
0: जब
1: है।
0: खुलती है
1: जी
0: तो इस तरह का मुझे लगता है वॉइस क्वालिटी में अगर थोड़ा बदलाव लाना है तो थोड़ा आपको खर्च का रियाज करना पड़ेगा, चाहे आप संगीत का करें या आ करके ही कर सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की, हर एक स्त्री की अपनी अपनी एक वॉइस क्वालिटी है जो नेचुरली होती है, तो उसको ही कैसे अच्छा इस्तेमाल करना है वो आपको ढूंढना है। अगर आपका उच्चारण सही है, अगर आपकी आवाज अच्छी है, तो आपको उच्चारण पे पढ़ के आपको पढ़ाई बहुत करनी है,
1: जी
0: किताबें बहुत पढ़नी चाहिए आपको, और थोड़ा सा लाउडली पढ़नी चाहिए। जैसे आप अकेले अगर हो तो किताबें पढ़ना चाहिए उसको,
1: किस तरह की किताबें पढ़नी
0: कोई भी,
1: चाहिए?
0: जैसे उपन्यास हो कोई भी हो,
1: अच्छा
0: जिसमें अगर आपको, क्योंकि भाव की भी जरूरत होती है,
1: जी
0: आवाज के साथ में उच्चारण के साथ में भाव भी चाहिए,
1: जी
0: तभी आप अच्छे आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं।
1: जी
0: जब आपको मालूम, क्योंकि मेरे संगीत के योगदान ने मुझे उसमें एक अलग तरह का, एक मेरे जीवन में योगदान किया है, कि क्योंकि मैंने बेसिकली थोड़ा म्यूजिक भी सीखा है, बहुत ज्यादा मैं उस्तादी म्यूजिक नहीं सीखा है, मैंने बेसिक म्यूजिक सीखा है, जो मैंने संगीत सीखा है उस वजह से मेरे डायलॉग डिलीवरी में, या मैं जब डबिंग करवाता हूं किसी से, तो मैं उनको वो गाइड कर सकता हूं कि इस सेंटेंस का भाव ऐसा है और किस शब्द को आपको कितना पुश करना है, कितना सॉफ्ट करना है, और उसको कैसे साथ में लेके चलना है, तो वो मैं इसलिए बता पाता हूं क्योंकि मेरा संगीत से मेरा जुड़ाव है, संगीत की मेरी सोल है,
1: जी
0: मेरी म्यूजिक की सोल। मुझे वो जो सुरों की जान पहचान की वजह से मुझे लगता है कि जो डायलॉग को हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं
1: जी
0: वाइल एक्टिंग या रेडियो एक्टिंग या फिल्म की एक्टिंग या टेलीविजन की एक्टिंग करते हैं, तो वो भाव उसमें आना बहुत अनिवार्य होता है, आवश्यक है, तभी तो आपके सेंटेंस में वो एक वो कन्वे होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं।
1: जी
0: तो उसमें उच्चारण के साथ साथ, वॉइस के साथ साथ आपको भाव पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
1: जी
0: और जैसे आजकल तो बहुत सारे एपरेटस हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डर होता है, उसमें कुछ चीजें रिकॉर्ड करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, दो एक छोटा पैसेज रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने उसको सुन लिया। तो अगर आप जेन्युइनली एनालिटिकली अपने उसको जो आपने रिकॉर्ड किया उसको सुनेंगे और समझेंगे कि कहीं त्रुटि है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, तो आप उसको दोबारा से कर सकते हैं,
1: खुद खुद के गुरु भी बन सकते हैं
0: खुद क्या। और वैसे भी बहुत सारी कुछ लोगों की क्लासेस चलती हैं जो वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस एक्टिंग, ये सब चीजें और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सिखाते हैं, काफी लोग इंस्टीट्यूशन से, वो वहां पर भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उसका मंत्र जो है कुछ करने के लिए दीवानापन और दीवानगी होनी चाहिए। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: जी तो वो पागलपन चाहिए, अगर पागलपन है तो आप
0: दीवानापन चाहिए।
1: और कुछ शिक्षाएं तो इसमें दी गई हैं, तो आप उन शिक्षाओं का भी ध्यान रखें।
0: जी जी बिल्कुल, बिना गुरु के ज्ञान तो मिलता नहीं है, और गुरु आपको बनाना पड़ेगा किसी को गुरु कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनसे सीखूं।
1: जी
0: तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही।
1: जी
0: तो हम बचपन में गए थे वापस?
1: नहीं, अभी बचपन में नहीं जाते एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं। और वापस आके जब आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी, और आपने कहा कि संगीत ने आपका बहुत साथ दिया,
0: जी जी,
1: आपने बहुत अच्छे से दिल्ली में सीखा भी संगीत, तो अगर आप हमें कोई गीत गाकर सुना दें ताकि वही गीत हम हमारे श्रोताओं को सुना पाए।
0: ठीक है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपका दिल चाहे तो मतलब
1: नहीं, स्वागत है, स्वीकार है जी।
0: मैं चूंकि संगीत से मेरा बहुत पुराना साथ है, मेरा इट हैज बीन माय फ्रेंड ऑलवेज, मेरा साथी हमेशा संगीत रहा है, अकेलेपन का भी बहुत साथी रहा है
1: जी।
0: बीच में तो काफी साल मैं एक्टिंग करता रहा, 1987 में पहली बार मैंने बॉम्बे में सीरियल किया था। एक्टिंग करते करते करते मैं डबिंग करता रहा, वॉइसिंग करता रहा, फिर डबिंग डायरेक्टर बना करते करते, उसके बारे में बाद में तो बात करूंगा आपसे। तो उसके साथ साथ मैं अभी एक प्रोग्राम करने वाला हूं, मैं एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, हमारे बहुत बड़े आइकॉन फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं धर्म जी, धर्मेंद्र
1: जी,
0: उनको ट्रिब्यूट देने का मेरा बड़ा दिल किया, तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, प्यार ही प्यार बेशुमार टाइटल रखा है मैंने प्रोग्राम का, और आई थिंक अगले अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास मैं सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में वो शो कर रहा हूं। उसमें एक गीत मुझे बहुत पसंद है, धर्म जी को मैंने डेडिकेट किया, उसमें गाने तो बहुत सारे हैं, हमने तकरीबन बहुत सारी लिस्ट बनाई है, उसमें एक गाना है जो मुझे बहुत बेहद पसंद है, उसकी दो लाइनें आपको सुनाता हूं, क्योंकि आपने मुझे कहा है कि दो लाइनें सुना दीजिए।

0: ये खूबसूरत गीत आपने गाया और हमने हमारे श्रोताओं को सुनाया, मतलब हमारे श्रोताओं की भूख बढ़ गई है कि अब जो भी गीत आप चुनेंगे वो उस गीत को आप गाकर सुनाएंगे और फिर हम आगे सुना देंगे।
1: वाह वाह, मेरा सौभाग्य
0: है ना, ये होता रहेगा। पर अब आपने बताया कि 1987 में आप मुंबई आए थे और पहला
1: 1986 में आया था,
0: 1986 में
1: जनवरी 20-40 साल हो गए तकरीबन मुंबई में।
0: ऐसा बताने से उम्र पता चल जाती है,
1: मुझे कोई गम नहीं उसका।
0: पर आप 1986 में मुंबई आए और यहाँ पर आके आपने अपना एक नया कदम, एक नया पायदान चढ़ा, एक नई सीढ़ी चढ़ी यहाँ से आपने, तो अब जरा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। थोड़ा
1: ऐसा सुनने में आया था कि बॉम्बे में बिना गॉडफादर के कुछ होता नहीं है।
0: अच्छा।
1: तो ये बात एक तरह से वाजिब भी है, अच्छी भी है, सही भी है। लेकिन अब जब मेरा कोई था ही नहीं बॉम्बे में, तो मुझे तो खुद ही अपनी पगडंडी बनानी थी, अपने रास्ते खुद बनाने थे। तो मैं उससे पहले भी कई बार, एक बार ऐसे छुट्टियां होती थी मेरे कॉलेज में, तो वो सब दिल्ली में भाग भाग के आता था, क्योंकि बम्बई अपनी तरफ खींचता था मुझे हमेशा शुरू से। फिर फाइनली मुझे बॉम्बे आना ही पड़ा। मुझे बहुत लोगों ने वहां दिल्ली में कहा कि आप दिल्ली में क्यों रहते हैं, आप बॉम्बे जाना चाहिए, आपको बॉम्बे में इतना अच्छा, आपके टैलेंट का विकास होगा, आपको बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे। तो मैं बॉम्बे आया, तो उसके बाद फिर मैंने इधर उधर कुछ, मैंने एक फोटो सेशन करवाया था। उस वक्त के बेस्ट फोटोग्राफर जो थे, स्टिल फोटोग्राफर, उनका नाम था गौतम राजाध्यक्ष
0: जी। जी,
1: अब वो है नहीं
0: जी,
1: लेकिन मैंने बड़ी बहुत जद्दोजहद करी, बहुत मेहनत करी, तो मैंने उनका पता ढूंढा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फोटो सेशन

0: कराना है तो सिर्फ आपसे करवाना है।
1: बड़े महंगे हुआ करते थे उस समय
0: लेकिन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे थे वो, बहुत ही अच्छे। एंड ही वॉज द बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, बहुत बड़े बड़े लोगों का करते थे। एंड ही अग्रीड टू डू माई फोटो सेशन फॉर दैट टाइम। एंड तो फिर उनके घर पे उन्होंने मुझे, बाबुलनाथ मंदिर के पास में उनका घर था ह्यूज रोड पे, तो वहां उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, बोला यू कम ऑन सैटरडे वी विल शूट। तो उन्होंने खट खट खट खट मेरी तस्वीरें लेते गए वो, और कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने दी। तो फिर मेरे पास जब वो उस जमाना वो था तो कुछ फोटोग्राफ्स दी थी, तो मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने वो दिया उनका अपना पीछे। अच्छा उस वक्त ऐसा जमाना था कि फोन भी नहीं होता था सबके पास में, सबके मतलब केयर ऑफ नंबर होते थे। मेरे भी एक अंकल रहते थे बैंड्रा में, तो पीछे उनका केयर ऑफ नंबर देके हम लोग रखते थे नाम और केयर ऑफ नंबर। कभी कभी वो फोन करते भी थे और मैसेज मिस भी हो जाते थे।
1: हाँ।
0: और मेरी आंटी घर पे रहती थी, वो बोलती थी अरे बेटा किसी का फोन आया था, वो कोई अच्छा सा था, नाम भी अच्छा सा था, कुछ क्या कुछ बताती थी, कोई कुछ मैसेज मिलता नहीं था,
1: भूल गई।
0: लेकिन हाँ वो भूल जाती थी। तो इस तरह का भी वक्त देखा है। तो फिर बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। उस वक्त मुझे एक एड फिल्म मिली थी ब्रूक बॉन्ड की, थ्री रोजेस चाय।
1: अच्छा
0: आई थिंक दैट वाज कुछ साउथ के लिए था।
1: हाँ।
0: उसमें एक मॉडल थी राधा और मुझे उन्होंने लिया था। ज्योति ठाकुर डायरेक्टर थे उस एड के, बहुत बड़े एड फिल्म मेकर थे ज्योति ठाकुर। तो उस एड में मुझे काम करने का मौका मिला था ब्रूक बॉन्ड की थ्री रोजेस चाय। फिर मैंने जिंगल गाया, एक बन फूल आयुर्वेदिक तेल का जिंगल मुझे गाने का मौका मिला। मैं बहुत मतलब मैं जितनी मुझसे कोशिश खुद से हो सकती थी मैं करता था, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, मुझे कोई लॉन्च करने वाला था नहीं। तो आई हैड टू डू माय ओन थिंग्स। तो आई यूज टू बी इन टच, मैं पृथ्वी थिएटर में अक्सर जाता था, वहां लोगों से मिलना होता था, वहां बहुत लोग मिलते थे। कुछ मैंने उस पहले आके इप्टा के साथ में भी एक उनके साथ फंक्शन किया था इप्टा डे का, तभी वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे। इकबाल कुरैशी साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, कुलदीप सिंह जी थे, तो एम एस सत्यू साहब, ये लोग बहुत पुराने इप्टा के लोग थे। तो इन लोगों के साथ में भी इप्टा डे में भी मैंने गाया भी था, एक्टिंग भी किया था। तो इस तरह से मुझे जितने जितने मुझे जो भी मौका मिलता था मैं कर लेता था। आई थिंक आई यूज टू, मुझे लगता है अपने आपको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, शायद रिफाइन कर रहा हूँ। तो इनिशियली वैसे ही काम चलता रहा। फिर ये 1987 में दूरदर्शन में एक सीरियल आता था अधिकार, उसमें मेरा उसमें हुआ था, तो मैंने उसमें एक्टिंग की। फिर उनका ही नेटवर्क 7 का ही मंजू सिंह जोत सिंह का एक कहानी, उसमें मैंने एक्टिंग की। फिर उसके बाद तरह तरह के करता रहा। फिर मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताऊं, मैं जो मैंने शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है। मैंने प्यार किया फिल्म की कास्टिंग हो रही थी।
1: हाँ।
0: तो मैंने प्यार किया कास्टिंग के लिए मुझे किसी ने मुझे भेजा था, बोला उनको जरूरत थी उस वक्त एक्टर्स की। तो उन्होंने शायद सलमान खान और भाग्यश्री का सिलेक्शन हो चुका था, उसमें किरदार था जीवन का
1: जी।
0: उसके लिए मुझे उन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया, सूरज जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था। और उस स्क्रीन टेस्ट में सलमान खान भी मौजूद थे और भाग्यश्री भी। वो एक प्रॉपर सीन शूट हुआ राजश्री प्रोडक्शंस की सीढ़ियों में, जहां पे वो लिफ्ट है, वहां सीढ़ियों से उतरते मैं एकदम सूटेड बूटेड आता हूँ और नीचे आके सलमान और भाग्यश्री खड़े हैं, उनके साथ मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उस फिल्म के लिए। वो एक डायलॉग था, वाह सुमन वाह, पराए अजनबी घर में पराए लोगों से इतना दोस्ताना, ये सब डायलॉग्स थे। तो सलमान आके मेरा कॉलर पकड़ते हैं, सूट पकड़ते हैं, तो मैं ऐसे, वो डायलॉग बाजी थी, वो मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उसमें। और हमारे दो लोगों का, मेरा हुआ था और एक और लड़का था, मेरा सिलेक्शन मुझे मालूम पड़ा हुआ था। लेकिन फिर वो फाइनली दैट रोल वेंट टू अप टू मोनिश बहल। तो वहां से थोड़ा मेरा लगा था कि हाँ सचमुच जो लोग कहते हैं कि गॉडफादर होता है तो गॉडफादर होना चाहिए। लेकिन मेरी कोशिशें एकदम बरकरार थी, चालू थी, मैं हमेशा कोशिशें करता रहा, करते करते करते फिर टेलीविजन में करते रहे, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए। महाराणा प्रताप मेरा एक तरह से लास्ट सीरियल, उसके बाद मैंने फिर टेलीविजन नहीं किया। महाराणा प्रताप था, अदालत, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए, कागज की कश्ती
1: जी,
0: तो अब तो नाम भी याद नहीं रहते कितने,
1: उस इतने सारे सीरियल्स कर लिए, गाने तो याद रहते हैं। अब आपने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि जिंदगी में जो कुछ आता जा रहा है वैसे ही चलता जा रहा है
0: जी।
1: तो एक गाना अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुना दें और उनको एक डेडिकेट कर दें तो बड़ी खुशी होगी, श्रोताओं को भी और हमको भी।
0: लेकिन मैं दो ही लाइनें गाऊंगा, उसके बाद आप ओरिजिनल गाना चलाएंगे
1: जी। ओरिजिनल जो गाए हैं वो गा देंगे। आप दो पंक्तियां।

0: जिंदगी का साथ निभाता चला
1: क्या
0: गया।
1: बात है, मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत बहुत खूबसूरती से आपने गाया, और अब सुनते हैं यही गीत।
2: मैं जिंदगी

0: तो ये गाना तो आपने सुना दिया और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमसे बात करने के लिए बुलाया है या गाना गाने के लिए। तो विविध भारती की एक बात है कि यहाँ पर अगर कोई हुनरबाज आता है तो हम सारे हुनर का आनंद उठाते हैं और सब में बांटते हैं। तो ये
1: नहीं,
0: प्रेम
1: मुझे
0: का
1: भी
0: बात है
1: खुशी है
0: आपका।
1: बिल्कुल आपके साथ जिस तरह हम जो वार्ता कर रहे हैं, जो भी एक चर्चा कर रहे हैं,
0: जी
1: मेरे बारे में चर्चा हो रही है, मेरे सफर के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें मेरा साथी तो आकाशवाणी विविध भारती है ही, और विविध
0: जी
1: भारती के श्रोताओं को
0: जी
1: खासकर, उनको भी तो गीतों का आनंद मिलना चाहिए, उनको भी हमारी बातों
0: जी
1: का आनंद आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो अब जब बातों का आनंद चल रहा है तो अभी तक तो आप मुंबई आए, फिर से दूरदर्शन यानी प्रसार भारती ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको बहुत सारे नाटकों का, धारावाहिकों का हिस्सा बनने का मौका मिल
1: जी
0: गया।
1: जी
0: अब आपने धारावाहिक कर लिए, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन साथ साथ में कुछ फिल्में भी आपके हाथ में आ रही हैं और आप उन फिल्मों में भी काम कर रहे हैं,
1: जी
0: एक एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। तो वो जमाना कैसा था, आप काम करते थे तो कैसा लगता था, और आपने किन-किन जगहों पर क्या-क्या किरदार किए, ये बड़े प्यारे से प्रश्न है जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं।
1: असल में शुरुआती दौर में बेसिकली मेरे जहन में ऐसा बैठा था कि एज मैटर्स अ लॉट। जैसे मैं 20s में था तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी मुझे अगर लीडिंग कैरेक्टर्स मिल जाएं, फिर मुझे वो लीडिंग कैरेक्टर ही चाहिए थे। उसके बदले में मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ भी दी उस वक्त, क्योंकि शायद मेरा गाइड या मेंटोर या गॉडफादर कोई था नहीं, या जो मुझे मतलब समझा सकते थे। मैं खुद ही अपनी एनालाइज करके अपनी डिसीजंस लेता था।
0: जी
1: जैसे मुझे मैंने प्यार किया नहीं मिली तो मेरा दिल थोड़ा सा दुख
0: टूटा
1: गया था।
0: होगा।
1: तो
0: हाँ
1: देवानंद साहब से मैं बहुत मुतासिर था, बहुत उनसे प्रभावित था, तो उनसे मुझे मेरे मित्र ने मिलवाया था देव साहब से।

0: उनके असिस्टेंट, चीफ असिस्टेंट थे, तो वो देव साहब बहुत प्यार करते थे मुझे, कश्मीरी करके बुलाते थे, ए कश्मीरी कम हियर, कम कम, व्हेन हैव यू कम, उस तरह से बहुत स्टाइल से बात करते थे
1: थोड़ा और इसको क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात करते समय देव साहब यहाँ पर आए थे, तो देवानंद को सुनना हम चाहते हैं, अगर थोड़ा और सुना
0: मैं उनके अंदाज में बताऊंगा जो उन्होंने मुझे जवाब दिया
1: जी,
0: था
1: जी, बिल्कुल,
0: क्योंकि एक फिल्म बन रही थी उस वक्त अव्वल नंबर
1: जी,
0: देव साहब का ऑफिस खीरा नगर सेंटरक्रूज में भी था जहां मैं कई बार उनसे मिला भी था, उनका आनंद डबिंग भी था और महबूब स्टूडियो में वहां भी एक उनका कमरा था जहां पे वो अक्सर बैठते थे बैंड्रा में, मुझे उन्होंने सूचना मिली तो मुझे उन्होंने वहां बुलाया था, वो शायद उसके बाद वो कहीं लंदन जाने वाले थे लेकिन उससे पहले उन्होंने अव्वल नंबर फिल्म की उन्होंने बातचीत चल रही थी तो मुझे भी उन्होंने वहां मिलने के लिए बुलाया, तो मैं वहां गया था तो मुझे उन्होंने एक रोल ऑफर किया जो एक पुलिस वाले का रोल था।
1: अच्छा,
0: तो मैंने उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा, मैंने कहा देव साहब मुझे पुलिस वाले का रोल नहीं करना है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, तो मैं पुलिस वाले का रोल करके मतलब
1: इट इज नॉट,
0: मुझे हाँ ऐसा लग रहा था। उस फिल्म में आमिर खान साहब कास्ट हुए थे और उन्होंने मुझे कहा रायना आई एम रोल रियली सॉरी आई कांट गिव यू दैट, मैंने उनको कहा था कि वो जो सेकंड लीड रोल है जो नेगेटिव रोल था तो मैंने कहा था वो मुझे आप दे दीजिए ना इस फिल्म के लिए, तो मुझे वो पुलिस वाला रोल नहीं करना है। कहता आई एम सो सॉरी रायना आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस आदित्य अबाउट दैट रोल एंड आई हैव टू गिव इट टू हिम, आई कैन नॉट गो बैक ऑन माय प्रॉमिस, सो वी विल यू बेटर डू दैट वन, दैट्स अ गुड रोल ऑफ अ पुलिसमैन। तो मैं बहुत उनका फैन था, बहुत जबरदस्त फैन रहा हूं उनकी फिल्मों का भी, तो इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया तो मैं फिर थोड़ा सा मेरा मैंने कहा ये पुलिस वाला रोल मुझे नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं देव साहब मैं आपके साथ में नेक्स्ट फिल्म में ही काम करूंगा, इस फिल्म में पता नहीं ये क्या था मुझे मालूम नहीं, ये मेरी अब मैं अगर को कहूं गलतियां थी लेकिन उस वक्त मुझे सही लगता था, मुझे लगता था कि मेरा करियर का बिगिनिंग है, मेरा कोई है नहीं, मुझे वन ऑफ द लीडिंग रोल करना चाहिए चाहे नेगेटिव रोल में, नेगेटिवली मेरा बहुत अच्छा एक शौक था कि मैं नेगेटिव रोल्स करूं, मेरी आवाज और मेरी पर्सनालिटी और मेरी आंखों की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिव रोल विल सूट मी। तो उन्होंने जब वो कहा कि मुझे आदित्य को प्रॉमिस किया है तो मेरा फिर दिल थोड़ा सा हो गया,
1: फिर से टूट गया,
0: फिर थोड़ा सा हो गया कि हाँ मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ आपका कोई होना चाहिए
1: जी,
0: देयर हैज टू बी सम सपोर्ट। जैसे आप तो जानती हैं, इतिहास भी जानती हैं कि बहुत सारे लोगों को लॉन्च उनके घर वालों ने ही किया हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा
1: जी,
0: लेकिन किया तो है ना हमारा, मेरा ऐसा कोई था नहीं, कुछ लोगों को लेकिन भाग्य के अंतर्गत मिला भी है, जिनका कोई गॉडफादर नहीं था उनको भी मिला है
1: जी,
0: लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद देव साहब से अक्सर मिलना होता था, मुझे कश्मीरी बुलाते थे, ए कश्मीरी, क्योंकि म्यूजिक से भी मेरा रिलेशन था तो इसलिए मैं म्यूजिक के प्रोग्राम भी करता रहता था, मैं शोज भी करता रहता था।
1: अच्छा।
0: जैसा आपने अंदाजा लगाया एक्टिंग, और किशोर कुमार साहब हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं तो इसलिए जैसे वो एक्टिंग और सिंगिंग
1: दोनों करते थे
0: तो ऐसा ही हमारा भी कुछ वैसा ही था
1: जी।
0: लेकिन अब अच्छी अच्छी फिल्में कुछ मैंने वीर ज़ारा मुझे यश चोपड़ा जी के साथ में काम करने का मौका मिला और उस कव्वाली में उन्होंने अपने किसी मित्र से कहा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए जो जिसको म्यूजिक का नॉलेज हो, तो मेरे साथ में यश जी के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स की गई फिल्म सिटी में, तो वहां उन्होंने मुझे आई वाज कॉल्ड 10 बजे मुझे उन्होंने फिल्म सिटी बुलाया था, तो मैं वहां ड्राइव करके आया तो वो भी आए मेरे साथ में, तो यश जी से उन्होंने मुलाकात करवाई तो उन्होंने मुझे पूछा अच्छा कश्मीर के हो, अच्छा अच्छा म्यूजिक आता है वो, तो फिर उन्होंने मुझे वो उस वीर ज़ारा में उन्होंने मुझे कास्ट किया
1: जी।
0: उस कव्वाली है बहुत अच्छी, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई हुई आया तेरे दर पे दीवाना, ये सुना सकते
1: थोड़ा सा आप गा के, नहीं आप थोड़ा वही मैं कहने आई थी आप थोड़ा गा के सुना दें तो आगे वो कव्वाली हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचा देंगे जो

0: तो इस पे मैंने एक्टिंग की है, तो मुझे खुशी तो इस बात की थी कि यश चोपड़ा जी मेरा नाम लेके मुझे एड्रेस करते थे, रहना चलो अब तुम्हारा शॉर्ट्स होने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सरोज जी वहां से कोरियोग्राफ कर रही थी, हाँ पंकज जी रहना जी चलिए अब आपकी शॉर्ट्स लेने, तो इस तरह से नहीं ये लोग जब मुझे एड्रेस करते थे आई यूज टू फील रियली गुड अबाउट इट। एंड तो वो कवाली हुई उसमें, उस पर मैंने एक्टिंग की। उसके बाद कई और फिल्में, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है आमिर खान प्रोडक्शंस की, बंटवारा 1947, जिसका नाम पहले लाहौर 1947 था।
1: अच्छा।
0: अब उसमें सनी देओल और शबाना जी हैं, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर हैं, आमिर खान प्रोड्यूसर है, मेरा भी बहुत अच्छा है उसमें किरदार है
1: जी।
0: सनी के साथ बहुत सारे अच्छे हमारे साथ के रोल्स हैं। वो 14 अगस्त को रिलीज हो रही है, वो देखिएगा। और एक मेरी वेब सीरीज ऑन एयर है जियो हॉटस्टार पे, लुटेरे।
1: अच्छा।
0: और तनाव भी एक वेब सीरीज जो सुधीर मिश्रा ने की है, वो हंसल मेहता की प्रोडक्शन है
1: जी।
0: तो इस तरह की इस गेटअप में मेरे कुछ चीजें हैं।
1: आपको आने वाली फिल्म और सीरीज के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। और
0: बहुत शुक्रिया
1: जी, अभी है ना हमारे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, गढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे सामने जो इतना बड़ा आर्टिस्ट बैठा है, जिसके पास में संगीत का भी ज्ञान है, आवाज का भी ज्ञान है, जिनके पास दिग्दर्शन का भी ज्ञान है तो निर्देशन का भी ज्ञान है
0: जी,
1: जिनको पता है कि किस तरह से किस अभिनय को करना है, जो नेगेटिव किरदार भी कर सकते हैं, जो मस्ती भरे माहौल में भी जी सकते हैं, इस सब का निचोड़ एक कुछ ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए मिल जाए आपकी बातों से, आपके जज्बात से, ताकि हमारे जो श्रोता हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं वो आपकी उन बातों का सहारा लेकर आगे बढ़ सकें। तो एक कोई संदेश, एक कोई बात, एक कोई सीख हमारे आगामी पीढ़ी के लिए, या जो श्रोता भी इस राह में संघर्षरत हैं वो भी ये काम कर सके।
0: मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि ये जो कला क्षेत्र है इसमें ये तो एक तपस्या की तरह है
1: जी।
0: कला क्षेत्र में जब तक इंसान तपस्या भाव से इस फील्ड में नहीं आता तो वो भाग्य के द्वारा हो भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन है तो तपस्या
1: जी।
0: आपकी चीजों का सराह तभी जाएगा जब आप उस तरह का एक्ट करेंगे, उस तरह का गाएंगे, उस तरह का संगीत निर्देशन करेंगे
1: जी।
0: और उन सब चीजों के लिए तो स्टडी और दीवानगी की जरूरत तो होती है आपको। मीडियम का कितना ज्ञान है, उसमें आपकी कितनी दीवानगी है, आपने

0: अपने आप को उसमें कितना
1: ढाला है,
0: एनग्रॉस किया हुआ है, उसमें ढाला है। तो वो सब तो नए लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए तो ऐसा ही है कि वो दीवानगी की तरह से ही करेंगे, तब जाके होता है, तब जाके आपको सराहा जाएगा। अदरवाइज
1: अगर वो हारते हैं टूटते हैं तो क्या करें?
0: नहीं, हारना टूटना नहीं होता। देखिए, अगर आप सोच लेते हैं कि दीवानगी मतलब एक चीज ये करनी है तो करनी ही है
1: जी,
0: अब उसका निष्कर्ष कुछ भी निकले उसको, जैसे कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये एक श्लोक है, इसका एक्चुअल अर्थ ये है कि मेरा काम है कर्म करना, फल की इच्छा भी नहीं करना
1: जी।
0: तो हमको कर्म लगातार करने हैं, बिकॉज ये एक इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वन जन्म।
1: जी,
0: मुझे लगता है जन्म जन्मों की तपस्या के बाद अमिताभ बच्चन बनते हैं,
1: जी
0: जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद इतने बड़े बड़े महान कलाकार बलराज सहनी जैसे होते हैं
1: जी,
0: जो मतलब अपनी छाप छोड़ जाते हैं सदियों तक
1: जी।
0: तो वो एक इट्स नॉट, अगर 13 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को इंडियन कैप मिलेगी तो वो जन्म जन्मों के कर्म होते हैं
1: जी,
0: ऐसा कौन सा चीज उन्होंने सीख लिया कि वो सचिन तेंदुलकर बन गए। लता जी 11 साल की उम्र में उनको सक्सेस मतलब गाने का मौका मिला और वो आगे बढ़ी और सारा जीवन 94-95 की एज तक गाती रही।
1: जी,
0: मुझे लगता है कि इट्स ए कर्मा, इट इज द डेडिकेशन विच मैटर्स अ लॉट। आप अपने आप को निखार सकते हैं, कुछ चीजें बना सकते हैं, कुछ चीजों की त्रुटियों को खत्म कर सकते हैं, बट बेसिकली वो डेडिकेशन और वो जुनून जब तक नहीं होगा आप में तो, और आपने उसके लिए कुछ वैसा सैक्रिफाइस नहीं किया होगा ना, होता नहीं है। तो इट हैज टू बी डन विद द डेडिकेशन, टोटल डेडिकेशन,
1: बहुत मेहनत करनी पड़ेगी,
0: टूटना नहीं होता है,
1: टूटना नहीं है। जी, तो जब आपका इतना अच्छा विचार हमारे श्रोताओं तक जा रहा है तो एक कोई बात, एक कोई बड़ा सुंदर सा किस्सा और एक गीत, इतनी अपेक्षा तो हम आपसे कर सकते हैं।
0: चलिए मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल कल्चरल हब जैसा था, पेंटिंग भी थी, म्यूजिक भी था, शायरी भी थी, ये सब था
1: जी।
0: मैं जब रफी साहब और किशोर कुमार और मुकेश जी, जो तीन बड़े जो स्टॉलवार्ट्स हैं, मतलब इतने बड़े दिग्गज जो मेल सिंगर्स हुए हैं, उन तीनों का मेरे जीवन पे बहुत असर रहा है, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग देयर म्यूजिक और मैंने उनकी सिंगिंग की स्टाइल्स और अदायगी पे, जो लटके खटके झटके सब सबको मैंने शुरू से मैंने शोध किया, उस पर रिसर्च किया कि उनका क्या क्या कैसे कैसा स्टाइल है। फिर इस दौरान एक बीच में, ये तो गुरु हैं ही हमारे तीनों, और मेहदी हसन साहब भी बहुत अच्छा है उनका भी, वो भी हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं, एक और शख्स बीच में आए जिनका नाम था भूपेंद्र। तो भूपेंद्र पहले वो भी आकाशवाणी में कार्यरत
1: अच्छा,
0: थे, दिल्ली रेडियो में काम करते थे ये, और 12 स्ट्रिंग एकॉस्टिक गिटार बजाते थे।
1: अच्छा,
0: और मदन मोहन जी एक बार दिल्ली गए थे तो उन्होंने उनसे मुलाकात करके उन्होंने बंबई बुला लिया भूपेंद्र को।
1: अच्छा,
0: तो चेतन आनंद साहब की फिल्म थी हकीकत, उसमें भूपेंद्र को उन्होंने एज ए म्यूजिशियन उन्होंने गाया भी है
1: जी,
0: वो होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा।
1: हाँ,
0: उसमें पहला अंतरा भूपेंद्र ने गाया।
1: अच्छा,
0: मैं बड़ा प्रभावित हुआ था भूपेंद्र की आवाज से, बहुत ही अलग तरह की आवाज थी, बहुत ही अलग तरह का उनका एक टोनल क्वालिटी थी
1: जी,
0: और एकदम बेस वाली और कमाल की आवाज थी। तो मैं पता नहीं क्यों शुरू से जब छोटा ही था तो बहुत प्रभावित हुआ उनकी आवाज से, उनके गीत गाता था उन दिनों, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, मौसम फिल्म का गाना उनका आया, गरोंधा का एक अकेला इस शहर में, इस तरह के कई गाने उनके भूपेंद्र जी के उन दिनों आते थे। तो मैं सब पिकअप करता था, सब सुनता था, गाता भी था। एक बार बड़ी चाहत हुई, मैं बॉम्बे आया तो मैं भूपेंद्र से मिलूं
1: जी।
0: तो वो उस वक्त पाली हिल बैंड्रा में रहते थे
1: जी,
0: हाईलैंड बिल्डिंग का नाम था
1: जी।
0: तो मैं उनसे मिलने एक बार आ गया, तो मिलने आया तो मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा हूं, तो लिफ्ट खुली तो अंदर से भूपेंद्र बाहर आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ। बोले कहाँ से आए? मैं बोला कश्मीर से आया हूँ। तो बोला चलो चलो चलो ऊपर,
1: मिलने
0: फिर
1: की चाहत ने मिला दी।
0: नहीं, मैं मिलने गया ही था उनसे, तो देखा तो वो अंदर
1: लिफ्ट
0: से
1: में ही मिल,
0: लेकिन वो नीचे ही मिल गए
1: जी, जी।
0: तो फिर उनके साथ ऊपर उनके घर पे गए, तो वहां पे फिर बोला अच्छा बताओ क्या क्या है, वो ये बातें बातें हुई, फिर उन्होंने गिटार उठा ली तो साथ में हम लोग, मैं और भूपेंद्र जी, मैं उनको सुनाता रहा उनके गाने
1: जी।
0: तो बहुत खुश हुए। बाद में वो बहुत मिलते थे, अक्सर उनसे मिलना होता था, राम लक्ष्मण जी ने से भी उनसे भी मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने भी कहा मेरे पास नया भूपेंद्र आ गया है, इस तरह की बातें। तो मेरे जीवन में इस तरह के कुछ अच्छे किस्से हैं जो महान महान लोगों से मिले भी हैं। तो बॉम्बे जब आए थे शुरू शुरू में, तो हमारी कश्मीरी पंडित एसोसिएशन है यहाँ पे
1: जी,
0: तो उनका फंक्शन था, तो मुझे उन्होंने कहा कि एक गाना सुनाओ जैसे आप कह रही हैं।
1: हाँ।
0: तो मैंने पहला गीत यही गाया था
1: तो
0: जो मैं दो लाइन आपको सुना के

0: श्री पंकज रैना जी हमारे समक्ष हैं और उनके जीवन की बहुत सारी बातें हमने सुनी, संघर्ष को भी सुना और जीत को भी सुना, बहाव के साथ बहने को भी सुना और जीतने को भी सुना, और जहां नहीं जीते वहां अडिग खड़े रहने को भी सुना। ये सब सुनने के बाद जब पंकज जी हमारे सामने आए हैं, विविध भारती तक आए हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है पंकज जी विविध भारती का
1: जी।
0: इसमें केवल उद्घोषक नहीं है, उद्घोषकों के साथ में बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पीछे से परोक्ष में रहकर बहुत सारा काम करते
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी, मैं
0: और
1: करता
0: इन सब के साथ बहुत सारे श्रोता हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो उस बड़े से परिवार की तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहां तक आए, इतना साथ दिया, और बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
1: मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मैं यहां चला आया, और मुझे अपनी जड़ों से, अपने रूट से, अपने कश्मीर से, अपने दिल्ली की यात्रा से और बंबई की यात्रा से मुझे कुछ कहने का, साझा करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत दिल से, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे आज इस जगह पे मुझे बुला के बहुत ही एकदम आत्मविभोर कर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं।
0: बहुत धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डायरेक्टर

0: एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। उनकी पहली नजर ने दिखाया जादू, फूलों का शामियाना बनाने को दिल मचल उठा, आसमान में सैर करने के लिए उड़ चला दिल। हर मौसम में दिल को नजर आया बोगनविलिया का रानी गुलाबी रंग, हर हर्फ मोहब्बत का लफ्ज बन गया। न जाने क्या हुआ दिल को कि वो एक जिद्दी बच्चा बन गया। जमीन से आसमान की सैर करने पर लगेगी चोट, ये भूल गया दिल। उनकी पहली नजर ने दिखाया जादू कि दिल ने कहा मानना छोड़ दिया।

कोयल ने जब बागों में गाया गीत, जब पहाड़ों पर गिरी बर्फ, जब सर्दी में ओस की बूंदें सुबह के सूरज की किरणों का साथ पाकर मुस्कुराईं, जब क्यारियों में नए अंकुर फूटे, जब खिला गुलाबी फूल, तब तब उसकी यादों की आमद हुई, तब तब उसके मुस्कुराते होठ गुनगुनाए मोहब्बत के नगमे, तब तब नदी के दो किनारे एक साथ चलने को आतुर हो उठे।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। उसकी मीठी मोहक बातों ने दिल पर कब्जा कर लिया, छोटा सा दिल, भला उसे क्या पता कि मोहब्बत की राहों में फूल संग कांटे भी होते हैं। मासूम दिल भला कांटों में उलझने से कहां डरता है। जादू भरी नजर ने ऐसे इशारे किए कि दिल चल पड़ा उस राह पर जहां से जुड़ती थीं उसकी राहें। उसकी मोहब्बत की पुकार पर दिल को रोकना मुश्किल हो गया। उसका साथ जिंदगी का गीत बन गया।

भूलती नहीं वो आंखें जिनमें खुद के लिए प्यार का सागर था। उसने पलकें उठाई तो मोती झरे ऐसे समंदर की लहरों ने कई सीपियां एक साथ सौंप दी हों जैसे। उसकी पलकें झपकाने से नदी ने ठिठक कर देखा, झरने अपने रवाने में गुनगुना उठे। उससे मुलाकात क्या हुई, जीने का मकसद मिल गया।

ख्वाबों में तब्दील हसीन लम्हों को खोजता है दिल, शिकवे शिकायतों से लवरेज वो लम्हे गुम हो गए जिंदगी की जद्दोजहद में। वक्त उंगली छुड़ाकर दूर भागता रहा, हम वक्त का पीछा करते रहे, हसरतों की डोर पकड़कर दिल तेज रफ्तार गाड़ी की तरह भागता रहा जिंदगी की राहों पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: श्रोता मित्रों, 93.9 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून करियो छे विविध भारती नू वडोदरा केन्द्र। सवारे 8:30 लोकप्रिय हिंदी फिल्मी गीतों कार्यक्रम चित्रलोक, जेना प्रायोजक छे
2: अशोका द ग्रेट, एक्सक्लूसिव एथनिक एंड दुल्हा कलेक्शन, वडोदरा नो आधुनिक शोरूम, नवरंग सिनेमा रोड, रावपुरा, वडोदरा।
1: एम के फर्नीचर, पाचमाड नो भव्य शोरूम, प्रतापनगर ब्रिज नीचे, वडोदरा।
3: पूजा प्लस,
4: पूजा मॉनसून सेल मा फायदा नो वरसाद,
5: मेन्स गार्मेंट पर 50% सुधी डिस्काउंट।
4: पूजा प्लस, रावपुरा, वडोदरा।
3: सवारे 10 फोन इन तथा अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमों, जेना प्रायोजक छे
2: आर्क ब्लाइंड्स, शिवाकृति बिल्डिंग, दांडिया बाजार, वडोदरा।
6: सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी, अब नहीं रहेगी मच्छरों से परेशानी।
2: ये है आरके ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।
7: हर रोज सुबह 7 सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती। मजेदार नहीं, असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजों में, जीत फिल्म के गाने के साथ।

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं कहो ना प्यार है। इस फिल्म का शीर्षक गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, गीतकार हैं इब्राहिम आशिक और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगू, पिया है वहाँ से पहली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके और रास्ते पर,
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है हाँ।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
8: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
7: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
9: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
7: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
8: याद सताते हैं।
7: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
10: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए अनवर चंद्रानी मुखर्जी और प्रीति सागर की आवाजों में दुल्हा बिकता है इस फिल्म का गाना। गौहर कानपुरी ने लिखा इसे और संगीत संवारा है बप्पी लहरी ने।

प्यार में कसमें वादे की ये रस्में है बेकार। अरे प्यार में कसमें वादे की ये रस्में है बेकार। नतीजा अच्छा निकले।

ऐसे ही तो प्यार अमर हो जाता है सरकार, ऐसे ही तो प्यार अमर हो जाता है सरकार, नतीजा अच्छा निकलेगा। आजा मेरे यार करें हम दोनों आंखें चार, आज है किस्मत जोरों पे कर हमसे जम के प्यार, नतीजा अच्छा निकलेगा।

अगला गाना हमने लिया है बागवान फिल्म से, सुदेश भोसले और अलका याग्निक की आवाजें, समीर के हैं बोल और तर्ज बनाई आदेश श्रीवास्तव ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह

0: पहले तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अब से कुछ देर में शुरू होगा। भारत ने अब तक 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में लव स्टोरी फिल्म का गाना। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

पूजा प्लस, पूजा मॉनसून सेलमा आ वर्षे फायदानो वरसाद, मेन्स गार्मेंट पर 50% सुधी डिस्काउंट, पूजा प्लस, रावपुरा, वडोदरा।

आइए अब सुना जाए देव कोहली का लिखा और अनु मलिक का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं अभिजीत और पूर्णिमा की, फिल्म का नाम जुड़वा।

सुनहरे दौर के सदा बहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदा।

0: बिछड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए सुनिए देहाती डिस्को फिल्म का ये गीत, दिव्य कुमार ने गाया इसे, प्रणव वत्स ने लिखा और गणेश आचार्य ने संगीतबद्ध किया है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।

0: यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम तराने नए पुराने, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आशा भोसले और साथियों की आवाजों में हथकड़ी फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी है गीतकार और संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

0: साथ ही आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: तराने नए पुराने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज के शेष कार्यक्रम इस प्रकार है। अब से थोड़ी देर में शाम 6:35 से सुनेंगे संध्या रंजन, 6:45 से संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक भाग 3। आमंत्रित कलाकार हैं पंडित कालीनाथ मिश्र। शाम 7 से फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा जयमाला। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग। रात 8 से आपको सुनवाएंगे हवा महल के अंतर्गत झलकी अधूरी बात, लेखन V.M. आनंद का, निर्देशन विजय दीपक छिब्बर का। आज रात 8:15 से चित्रलोक, 8:45 से समाचार संध्या। रात 9 से आपके लिए, रात 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता उत्पल दत्त पर, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। रात 10 से सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 से ढलती जाए रात और रात 11 से सुनिएगा रंग तरंग। कल 20 अगस्त के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है। सुबह 6:05 से सुनेगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। 6:30 से झरोखा, 6:35 से सुनवाएंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 286। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनेगा संगीत सरिता। इसके अंतर्गत श्रृंखला आप सुन रहे ताल प्रवाह तबला वादक। कल आप सुनेंगे चौथा भाग इसका। कलाकार है पंडित कालीनाथ मिश्र। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 से सुनिएगा त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर नेहा गरकर का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 8:30 से चित्रलोक, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता सैफ अली खान पर। सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा आज के मेहमान। इसके अंतर्गत अभिनेता निर्देशक पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत सुनेगा, प्रस्तुति जुबैर खान की। सुबह 11 और रात्रि 11 से रंग तरंग सुनवाएंगे आपको। दिन में 12:05 से यादों की महफिल, दोपहर 1 का वक्त होता है सुरीला सफर कार्यक्रम का। त्रिवेणी सुनेंगे दोपहर 2 से, दोपहर 2:30 से सदाबहार नगमे, 3 से सखी सहेली। इसके अंतर्गत विलुप्ति की ओर भाषाएं और बोलियां, कहानी पद्मश्री की, इस गोदावरी दत्त की कहानी सुनेगा आप चित्रकार हैं। मुझे कुछ कहना के अंतर्गत जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना, उपयोगी टिप्स में कपड़ों की उम्र होगी लंबी, संवादक चंचल वर्मा और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 से हेलो फरमाइश, संवादक है मंजरी वर्मा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। शाम 5 सुनिएगा छाया गीत का पुनर्प्रसारण। शाम 5:30 से तराने नए पुराने। शाम 6:30 से झरोखा। शाम 6:35 से संध्या रंजन। शाम 7 से प्रस्तुत किया जाएगा फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनेगा इनसे मिलिए। इसके अंतर्गत गजल गायिका डॉक्टर रितु जौहरी से मंदाकिनी

जोशी की बातचीत का पहला भाग सुनवाएंगे प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। कल रात 8 बजे से सुनिएगा हवा महल के अंतर्गत प्रहसन, अभिनेत्री से भेंट, लेखन श्री एन राघवन का, निर्देशन मुख्तार अहमद का। रात 8:15 से चित्रलोक, रात 9 बजे से आपके लिए, रात 10 बजे से सुनवाएंगे आपको छाया गीत, आलेखम स्वर नेहा गरकर का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। रात 10:30 से ढलती जाए रात और रात 11 बजे से रंग तरंग। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या रंजन। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में मिस मैरी फिल्म से, राजेंद्र कृष्ण के बोल और हेमंत कुमार की थी तर्ज। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा
1: और फॉलो कीजिए।

0: विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से आप ही आप सुन रहे कार्यक्रम संध्या रंजन। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में हम दोनों फिल्म का ये गाना। साहिर लुधियानवी ने लिखा है इसे और तर्जबद्ध किया है इसे जयदेव ने।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं, आपको रामकृष्ण दास का नमस्कार। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं आज के तबला कलाकार श्री कालीनाथ मिश्रा जी का।
2: नमस्कार। नमस्कार
1: मिश्रा जी, आप बनारस घराने के बहुत ही सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। हमने सुना है कि बनारस के जो बाज है उसको पूरब अंग का बाज कहा जाता है। दिल्ली से तबला शुरू हुआ और उसके बाद लखनऊ आया और लखनऊ से बनारस। तो बनारस बाज का क्या खासियत है? इसमें हमने सुना है कुछ थपिया बाज भी होता है और दिल्ली किनार का बाज होता है, तो इस बारे में थोड़ा आप हमारे श्रोताओं के लिए प्रकाश डालें।
2: सबसे पहले मैं कालीनाथ मिश्रा अपने साथियों कलाकारों के साथ सुनने वाले सभी संगीत सरिता को मैं प्रणाम करता हूं। और जैसा कि दास बाबू ने जिक्र किया, थाप, हमारे बनारस घराने का जो थाप का एक
1: क्या बात,
2: ये जो तकाक का जो बोल है, पहले तो मैं बताऊं आपको दास बाबू की तबला का मतलब क्या होता है। तबला ये फारसी शब्द है, इसका नाम था तबल
1: जी।
2: और हमारे गुरु जी ने मुझे बताया कि त से होता है तल, ब से होता है बल और ल से होता है लय।
1: क्या बात,
2: और हमारा लय प्रवाह है ये, तो तीनों का एक समावेश होना चाहिए।
1: हाँ, इसी में मुझे याद आया किसी तबला वादक ने कहा है कि पखावज से तबला बना है।
2: जी हाँ, जी हाँ,
1: कि तब भी बोला इसे कुछ बात
2: जी, जी,
1: है।
2: हाँ,
1: इसके बारे में
2: पखावज
1: बताइए ना।
2: क्या है दास बाबू, कि पखावज को काट के तबला का निर्माण हुआ और ये सारा से जाता है हमारे अमीर खुसरू साहब को।
1: अच्छा,
2: हर म्यूजिक के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ पखावज मैच नहीं होता था, तो उन्होंने पखावज को काटा और सारा श्रेय जाता है हमारे दिल्ली घराने के सिद्धार्थ खान साहब को, जिन्होंने तबले के बोलों को निर्माण किया कि तबला कैसे बचेगा। तो पखावज को काटा, तो पखावज तो लकड़ी था, तो उसको काट के बनाया गया और सिद्धार्थ खान साहब ने बचाया उसको। तो थाप का जो अंदाज है वो हमारे श्रेय जाता है हमारे बनारस घराने के राम सहाय जी, बुंदी महाराज जी, किशन महाराज जी। किशन महाराज जी का थाप का तो खैर क्या बात है। थाप का एक अंदाज होता है कि आपके बोलों में वजन होना चाहिए।
1: अच्छा,
2: लेकिन वो थाप आप हर जगह किसी के साथ अगर आप संगत कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ, गाने के साथ,
1: नाच में ज्यादा थाप लगा,
2: नाच में, और अगर तबला प्लेयर तबला वादक सोलो बजा रहा है,
1: अच्छा,
2: तो वो उस वक्त स्टेज पर शेर है, वो थाप भी दे सकता है, जोर से बजा सकता है। वो थाप का एक अंदाज होता है, ये भी थाप है
1: जी,
2: लेकिन ये हम गाने के साथ कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ कर, लेकिन जब सोलो बजाएंगे
1: क्या कहें?
2: लगे कि किसी ने पानी में एक लाठी मार दिया।
1: आज आप कौन सा ताल बजाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए?
2: आज हमने सोचा कि ताल प्रवाह है, तो सुनने वाले श्रोताओं को मैं आज झपताल के बारे में बताता हूं। झपताल, वो पलक झपता है ना, वहां से शुरुआत हुई झपताल। 10 मात्रे का ताल है और इसमें भी दो ताल है। देखिए पहले कैसे बनाने वालों ने कैसा बनाया है।

0: कि रूपक ताल के तीन चार अलग अलग तालों का नाम है। तीन ताल में भी अद्धा ताल करते हैं, अलग अलग आदि ताल भी है। झप ताल में दो ताल है, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, एक पर ताली, तीन पर ताली, आठ पर ताली और छह पे खाली है। और इसी का एक ताल का नाम है सुल ताल, सुलफाक ताल, वो भी दस मात्रे का है। तो प्रस्तुत करता हूँ श्रोता झप ताल।
1: मैं इसमें और एक बात जानना
0: जी,
1: आपने सुल ताल के जिक्र की। हाँ। सुल ताल पखावज के लिए
0: जी, पखावज का बोल है वो।
1: और एक ताल होता है उसूले फाखता,
0: वही भाई है
1: वो। क्या? लेकिन वो पखावज पे तो नहीं बसता होगा।
0: नहीं, पखावज का ही है वो, धा। अच्छा। धा दिन।
1: और अमीर खुसरो की बनाई हुई ताल,
0: अमीर खुसरो साहब का है, लेकिन वो ही पखावज के अंदाज से बनाया।
1: अच्छा।
0: धा धा दिन धा टीट धा टेटे धा तगदे गिन धा, ये अंदाज है। अब वो झपताल कैसे बजेगा श्रोता, सुनिए दास बाबू प्रस्तुत है झपताल।

0: अब देखिए दास बाबू, ये हमारे बनारस की खास स्टाइल है
1: जी,
0: उसका एक अंदाज है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने के पहले आलाप जोड़ शुरू करते हैं बिना ताल के
1: जी,
0: उसी तरह से तबला वादक भी शुरू कर सकता है
1: जी,
0: जिसको कहते हैं हम आमद।
1: अच्छा,
0: ताल में आने का अंदाज।

इसको कहते हैं गमक, ये आपको ज्यादातर सरोद में मिलेगा। मुझे याद है कि मैं कार्तिक कुमार जी के साथ जब बजा रहा था इसी संगीत सरिता में जी, तो उन्होंने सुरबहार जो गमक, तो उसी का अंदाज है, बाएं का अंदाज़।

0: क्या बात है मिश्रा जी, आपने डग्गे का काम बड़ी अच्छी तरह से बताया, बहुत अच्छा लगा। इससे मुझे याद आ रहा है आप ही के घराने के एक बहुत अच्छे तबला वादक कुमार बोस जी,
1: क्या
0: पंडित
1: बात है?
0: कुमार बोस, उन्होंने भी डग्गा पर बहुत काम किया है।
1: आपको मैं बता दूं दास बाबू, आपने नाम जिक्र छेड़ा तो किशन महाराज जी के ऐसे ऐसे शागिर्द हैं, उसमें से इनको तो मैं

0: कहता हूं कि ही इज जस्ट लाइक टाइगर ऑन स्टेज कुमार दादा. उनका रियाज करने का अंदाज, अरविंद आजाद है देखिए पूना में
1: जी,
0: उनका भी एक अंदाज है. तो उनका जो तरीका है वो किशन जी के, महाराज जी के, हमारे गुरु जी के शिष्य हैं वो.
1: इसी सिलसिले में और एक बात याद आ रही है, जब मैं कुछ तबला वादकों से बात कर रहा था तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये बनारस के तबला वादक कभी कभी ढोलक का अंग भी डग्गे में दिखाते.
0: जी हाँ जी हाँ, एकदम जरूर है.
1: उसका क्या मामला है? और जब किशन महाराज जी से एक बार मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे ताल वाद्य का समावेश बनारस के तबले में आया है.
0: जी हाँ,
1: उसके बारे में थोड़ा बताइए.
0: मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन हमारा अभी ये एपिसोड चल रहा था झपताल
1: जी.
0: हम जब आगे के एपिसोड में आएंगे कि दादरा कहरवा क्या होता है, उसमें हम जरूर दिखाएंगे. दास बाबू, मैंने पहले भी कहा था कि पुराने फिल्मों में प्योर क्लासिकल को लिया गया है
1: जी.
0: आपको पता है फिल्म प्रोफेसर में झपताल का एक बड़ा सुंदर गाना है.
1: अच्छा,
0: लता दीदी और रफी साहब का गाया हुआ है. धी

ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी तीसरी कड़ी। जाने माने तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा

दे रहे हैं उस्ताद फारूक लतीफ खान और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी, तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला लेकर हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कॉर्न्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती। मजेदार नहीं, असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला। सभी फौजी साथियों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं देशभक्ति गीत के साथ, जिसे हमने लिया है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म से। अरिजीत सिंह की आवाज, मनोज मुंतशिर के बोल और आरको की है तर्ज।

फौजी साथियों, अब आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गाना। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन धूप।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कॉर्न्स एवं हवन सामग्री।

फौजी साथियों लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में देवदास फिल्म का गाना। गीतकार हैं नुसरत बद्र और संगीतकार हैं।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। जयमाला कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।
1: श्रोता मित्रों 93.9 मेगाहर्ट्ज़

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम जयमाला। फौजी साथियों, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश नो एंट्री फिल्म से सोनू निगम और अलीशा चिनॉय की आवाजें हैं, समीर के बोल और अनु मलिक की है तर्ज़।

फौजी साथियों, इस गाने के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं वीएम आनंद की लिखी झलकी अधूरी बात। निर्देशक हैं विजय दीपक छिब्बर।
1: हेलो रजीत।
2: मैडम आप
1: ओफो, तुमसे कितनी बार कहा है मुझे मैडम मत कहा करो, मुझे आप मत कहा करो, लेकिन तुम कुछ समझते नहीं हो।
2: मैडम आप भी कमाल करती हैं।
1: फिर मैडम
2: हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर साहब की बेटी
1: तो,
3: और मैं मेरा एक मामूली सा इंजीनियर।
2: अब भला मैं आपको आप ना कहूँ, आपको मैडम ना कहूँ, तो फिर क्या कहूँ?
1: तुम नहीं समझोगे रंजीत, तुम कभी नहीं समझोगे। मैं तुमसे पता नहीं तुम किस मिट्टी के बने हो, तुम मेरी बात सुनते भी तो नहीं हो। मैं तुमसे
3: मैडम इससे आगे और कुछ मत कहिएगा, आपसे पहले भी कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि भगवान
1: यहाँ ना आया करूँ, यही ना। लेकिन मैं यहाँ क्यों नहीं आऊंगी, मैं तो यहाँ हर रोज आऊंगी, आप मुझे रोक सकते हैं क्या?
2: लेकिन मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ ना। मैडम आप समझती क्यों नहीं, मेरे पास एक मिनट की भी फुर्सत नहीं आपसे बात करने के लिए।
4: सर दफ्तर में फिर आ गई
1: जी डैडी, वो क्या है ना कि मेरी सहेली का घर आपके दफ्तर के बिल्कुल बगल में है, तो मैंने सोचा उसके साथ बैडमिंटन खेल लेती।
4: लगता है तुम्हारी शटल कॉक इस दफ्तर में गिर गई और तुम उसे ही ढूंढने आई हो।
1: जी
3: व्हाट अ जोक सर।
2: देखिए ना मैडम, आपके पापा कितने जॉली नेचर हैं, हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, और फिर भी कभी कभी ऐसे मजाक करते हैं कि मैं तो हंसते हंसते लुटपुट हो जाता हूँ।
1: शट अप रंजीत, तुम मेरे डैडी की हर बात सुनते हो, समझते हो, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी तुम्हारी समझ में आ जाता है, लेकिन उनकी बेटी की कोई बात तुम क्यों नहीं समझते?
2: मैडम इसमें मेरा क्या कसूर है, आप जो भी बात करती है इतनी घुमा फिरा के करती है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता है।
1: What? यानी आज तक मैंने जो भी बातें की तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया?
2: नहीं मैडम।
1: तो आज मैं तुम्हें साफ साफ लफ्जों में बता देना चाहती हूँ कि मैं तुमसे
2: बहुत मैडम माय गॉड, मुझे 11 बजे पीडब्ल्यूडी एक बहुत जरूरी मीटिंग में पहुंचना, तो मैं चलता हूँ।
1: पता नहीं किस भोंदू को दिल दे बैठी, न मुझे कुछ कहने का मौका देता है, न खुद कोई बात समझता है, पाजी अनाड़ी कबाड़ी कहीं का। आज तक मेरा नाम भी नहीं पूछा।
5: आदिलाल तो नहीं आया सर, मैं
4: खैर कोई बात नहीं, मैं आप ही से बात करना चाहता था। ये बताइए दफ्तर में सब ठीक ठाक है ना?
5: यस सर, एवरीथिंग इज फाइन सर, हर आदमी बड़े शौक से और बड़े धड़ल्ले से काम कर रहा है सर।
4: वाह वाह क्या कहने, यानी कि इस दफ्तर में सारे काम धड़ल्ले से हो रहे हैं, बहुत खूब।
5: यस सर, ये सब आपकी गाइडेंस से ही हो रहा है सर।
4: अच्छा अच्छा, तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी गाइडेंस से हो रहा है, यानी कि हम अपनी खुशी से अपनी दुनिया लुटा रहे हैं।
5: यस सर जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा।
4: अरे मिस्टर तिवारी, वो लड़की यहाँ क्यों आती है?
5: लड़की कौन लड़की सर?
4: तो आपको अभी तक ये भी पता नहीं कि कोई लड़की इस दफ्तर में हर रोज आती है और हर रोज रंजीत के सामने आकर बैठ जाती है, अभी भी बैठी थी।
5: वो समझा, वो लड़की।
4: हाँ हाँ, वो यहाँ क्यों आती है?
5: जी छोड़िए सर, ऐसी लड़कियाँ तो यहाँ धक्के खाती फिरती रहती है, उसके माँ बाप ने तमीज तक तो सिखाई नहीं, हर वक्त ही करती रहती
4: है। अपनी जबान को लगाम दो। अरे वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी, उसका नाम किटी है।
5: वो आपकी बेटी है? वावा बहुत अच्छे हैं, वावा वंडरफुल, भगवान ऐसी एक बेटी आपको और दे सर। मुकर्रर रिशाद मोर वंस मोर।
4: थैंक यू। लेकिन मिस्टर तिवारी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे ये हमारा इंजीनियर रंजीत किटी से हास हास कर क्यों बातें करता है?
5: सर ही इज फॉलोइंग योर कंस्ट्रक्शन सर। इंस्ट्रक्शन?
4: व्हाट इंस्ट्रक्शन?
5: वो सर आपके ऑर्डर के मुताबिक इस दफ्तर में कर्सी वीक मनाया जा रहा है सर। जगह जगह बैनर लगे हैं, सर्विस विद ए स्माइल। रंजीत ये क्या सर, इस दफ्तर में हर आदमी हंस रहा है, बगैर मतलब के हंस रहा है सर।
4: लेकिन मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा ही सबॉर्डिनेट मेरी बेटी से हंस हंस कर बातें करे।
5: हंसने दीजिए सर, कर्सी वीक में सिर्फ 2 दिन तो बाकी रह गए, उसके बाद है किसी के मजाल? है कोई माई का लाल जो इस दफ्तर में हंस सके?
4: ओहो मिस्टर

0: Tiwari, this is very confidential and between you and me. रंजीत किट्टी से हंस हंस कर बातें करता है, इसलिए मुझे शक पड़ रहा है कि वो किट्टी से प्यार करता है. This I can't tolerate.
1: No, no, no, sir. आपको वहम हो गया है. रंजीत अगर किट्टी से हंस हंस के बात करता है तो उसका ये मतलब नहीं कि उससे प्यार करता है. वैसे तो आप भी मेरे से हंस हंस के बात करते हैं.
2: लेकिन सर, क्या आप अपने सीने पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं?
0: बिल्कुल
1: नहीं सर, आप उल्टा मेरी जड़ें काटने पर लगे.
2: अगर आप मुझसे प्यार करते होते
1: तो अभी तक मैं असिस्टेंट मैनेजर की कुर्सी पर नहीं होता सर, मैनेजर बन गया होता.
0: ओ मिस्टर तिवारी, तुम्हारी मेरी बात और है. हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, वो दोनों अभी जवान हैं.
1: लेकिन सर, उम्र की कोई बात नहीं होती, प्यार तो प्यार होता है. उम्र बचपन की, प्यार बचपन का.
0: लेकिन मैं इस मामले की तह तक जाना चाहता हूँ. मैं किट्टी से तो पूछ नहीं सकता कि वो रंजीत से बातें क्यों करती है हंस कर, क्योंकि वो मेरी बेटी है.
1: तो सर, आप रंजीत से पूछ लीजिए. आप उसे अपने कमरे में बुलाइए.
0: हाँ, ठीक है.
1: अब पहले आप उससे आधी बात कीजिए.
0: मैं आधी बात करूँ?
1: वो आधी बात समझेगा.
0: वो आधी बात समझेगा.
1: फिर वो आधी बात करेगा, आप आधी बात समझेंगे.
0: मैं आधी बात समझूं?
1: घुमा फिरा कर इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, जब हो जाएगा तो सारी बात क्लियर हो जाएगी.
0: ओ वेरी गुड आइडिया मिस्टर तिवारी, वेरी गुड.
1: यस सर.
0: आप जाकर रंजीत को फौरन मेरे पास भेज दीजिए. मैं इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करके सारा सच उगलवाता हूं.
1: अभी गया और अभी आया.
0: वो अपने आप को समझता क्या है.
3: मैं आए कम इन सर.
0: नो ओके यस यस कम इन.
3: सर आपने मुझे बुलाया.
0: मैंने तुम्हें बुलाया? मुझे तो याद नहीं आ रहा.
3: कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं. आप इतने बड़े अफसर हैं, भला आपको कैसे याद रह सकता है कि आपने किसे बुलाया और किसे नहीं बुलाया. खैर कोई बात नहीं सर, अब जब मैं आ ही गया हूँ तो.
0: तुम हंसते क्यों जा रहे हो? अच्छा अच्छा, तो दफ्तर में कर्सी वीक चल रहा है.
3: यस सर.
0: सर्विस विद अ स्माइल.
3: यस सर, सर्विस विद अ स्माइल.
0: अब कितने दिन रह गए हैं तुम्हारे हंसने में? दो दिन. हंस लो बेटा, हंस लो, फिर कभी नहीं हंस पाओगे.
3: सर आप ये मजाक करते हैं. अब जब तक आप जैसे अफसर की छत्र छाया मेरे सिर पे रहेगी, मैं तो हंसता ही रहूंगा सर.
0: रंजीत, जो मैं तुमसे पूछूंगा वो ठीक ठीक बताना. अगर तुमने घुमा फिरा कर या कोई आधी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम सचमुच?
3: सचमुच सर, सचमुच सर, मैं तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि आप हाँ कह दें.
0: हैं?
3: सर आप हाँ कह देंगे तो मैं अभी इसी वक्त अपने मम्मी पापा को लखनऊ से यहाँ बुलवा लूंगा.
0: ओ तो बात यहाँ तक पहुँच गई. वाह बरखुरदार, मैंने तो सोचा था कि मैं पूछूंगा तो तुम ना कर दोगे. तुम मेरी बात सुनकर टाल मटोल करोगे, लेकिन तुमने बड़े धड़ल्ले से कह दिया कि तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो. बेटे तुम मुझे जानते नहीं हो. मैं
3: आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ सर. मैं जानता हूँ कि मैं आपसे एक बार भी रिक्वेस्ट करूंगा तो आप ना नहीं कहेंगे. अब देखिए ना सर, मैं इस शहर में अकेला रहता हूँ. मैं इस अकेलेपन से बहुत तंग आ गया हूँ. आई वॉन्ट टू लीड अ फैमिली लाइफ.
0: ओफ, मैंने तुम्हारी हर बात का ठेका ले रखा है. अरे मैंने तुम्हें नौकरी दी और उसके बाद साल के अंदर प्रमोशन दिया, और अब
3: आप सर बस ये एक बात और मान लीजिए प्लीज.
0: शट अप रंजीत, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और भूल जाओ.
1: अरे तुम कहाँ
0: और वो कहाँ?
3: वो कहाँ? Oh, distance is no problem, sir. अब देखिए ना सर, जब आप मेरी ये बात मान लेंगे तो फिर मैं आपसे एक कार भी मांग लूंगा आने जाने के लिए.
0: What? यानी कि अगर मैं हाँ कर दूं तो तुम कार भी मांगोगे? रंजीत रंजीत, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो. उसका ख्याल छोड़ दो.
3: ठीक है सर, अगर वो मेरी किस्मत में नहीं है तो कोई बात नहीं. लेकिन आप ही बताइए सर कि वो कौन खुशनसीब है जिसे आपने हाँ कही है.
1: अरे who are you?
0: तुम पूछने वाले कौन हो?
3: सर मैं,
0: अरे मैं जिसको चाहे हाँ करूं. आउट.
3: सर लेकिन मैं.
0: गेट आउट.
3: सर लेकिन मैं.
0: गेट आउट.
4: किटी,
0: रोती क्यों जा रही हो? कुछ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है?
5: देखो किटी, तुमने मुझे हर बात बता दिया ना, अब अपने डैडी को भी बता दो बेटा.
0: डैडी? अरे अरे मैं बता दूं ना बेटी, बता दूं मैं तुम्हारा डैडी हूँ.
6: अच्छा डैडी, मैं ना
0: बका बका,
6: मैं ना
0: बका
6: करने लग गई हूँ.
0: तुम प्यार करने लग गई हो? अरे तो फिर इसमें रोने की क्या बात है? अभी तो प्यार शुरू हुआ है, सारी उम्र पड़ी है रोने के लिए.
6: लेकिन डैडी, जिससे मैं प्यार करती हूँ ना, वो तो मुझसे प्यार करता ही नहीं है.
0: हाँ? कौन है वो बेवकूफ?
6: वो बेवकूफ ना रंजीत है.
0: रंजीत? कौन रंजीत भाई?
5: अरे वही रंजीत.

0: रंजीत जी आपकी कंपनी में इंजीनियर है
1: क्या किटी तुम उस रंजीत से प्यार करती हो?
2: हाँ डैडी, लेकिन है ना वो मुझसे प्यार करता ही नहीं है, वो तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करता। उसने तो आज तक मेरा नाम भी नहीं पूछा।
1: लेकिन बेटी वो तुमसे प्यार करता है।
2: नहीं डैडी, वो मुझसे प्यार नहीं करता।
1: वो तुमसे प्यार करता है।
2: वो मुझसे प्यार नहीं करता,
1: वो तुमसे प्यार करता है।
0: किटी को ज्यादा पता है तुम्हें? रंजीत किटी से प्यार करता है तुमसे?
1: चलो जो भी है, मैं उसे पसंद नहीं करता।
0: क्यों जी, क्या कमी है रंजीत में?
1: है, अरे जिस कंपनी का मैं जीएम हूँ उसी में वो एक मामूली सा इंजीनियर है। मैं किटी का उससे मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करता।
2: या तो मैं रंजीत से शादी करूंगी या तो मैं मर
0: जाऊंगी। नहीं अभी मैं ठीक किए देती हूँ उन्हें। अरे मैंने कहा क्यों रुला रहे हो लड़की को? रंजीत इतना अच्छा है, अभी छोटा इंजीनियर है फिर बड़ा भी बन जाएगा, स्मार्ट है, खानदानी है। अरे ऐसा लड़का फिर कहाँ मिलेगा?
1: ला ला ला ला ला ला, लेकिन
0: लेकिन क्या?
1: अब मैंने तो उसे आज बुलाकर बहुत डांटा। मैंने उसे डराया, मैंने उसे धमकाया कि खबरदार वो मेरी बेटी से मिला तो।
0: ओहो, कोई काम ठीक से मत करना, ये लड़का हाथ से नहीं जाने दो। उसे कह दो, उसे कह दो हमें सब कुछ मंजूर है।
1: ओफो, मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर हूँ, जीएम हूँ, और अपने सबॉर्डिनेट से कह दूं को वो मेरी बेटी से शादी कर ले?
0: तो क्या मैं कहूँ?
1: क्या मतलब?
0: क्या यम यम यम यम यम अरे तुम्हें क्या जरूरत है ये सब कहने की? देखो देखो देखो, इधर आओ, आधी बात तुम करो,
1: आधी बात मैं,
0: आधी वो समझेगा,
1: ठीक
0: है ना? आधी वो करेगा, आधी आप समझोगे, है ना? फिर बात को घुमा फिरा कर इधर की बात उधर, जब सारी बातें हो जाएंगी तो हर बात क्लियर हो जाएगी।
1: ब्रिलियंट, पुची पुची,
3: समझ गए ना?
4: May I come in?
1: Oh, Ranjit, come in, come in, come in, my boy, come in. Come in, come in.
4: Sir, आप अभी तक हंस रहे हैं?
1: क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या?
4: नहीं सर, वो कर्टसी वीक तो कल खत्म हो गया ना?
1: ओफो, कर्टसी वीक खत्म हो गया तो क्या हुआ? मेरा कर्टसी पीरियड अब शुरू हो रहा है।
4: यस सर, यस सर।
1: अरे देखो ना रंजीत, मैंने जाने परसों तुम्हें गुस्से में क्या क्या कह दिया, भूल जाओ उसको।
4: कोई बात नहीं सर, आप हमारे जीएम हैं, मतलब मैं आपकी बात का कैसे बुरा मान सकता?
1: देखो आज मैं मूड में आ गया हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें?
4: मुझे सर, मैं क्या मांगूं?
1: बकअप बकअप।
4: नहीं सर,
1: मैं बकअप
5: मुझे एक बरसाती चाहिए।
1: व्हाट व्हाट बरसाती? यू मीन रेनकोट?
5: नहीं सर, रेनकोट नहीं, मुझे रहने वाली बरसाती चाहिए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, वो बरसाती। अरे बरसाती क्यों रंजीत, तुम्हें कोठी मिलेगी, कोठी,
4: कोठी,
1: समझ गए ना, कोठी।
4: हाँ सर, समझ गए समझ गए समझ गए।
1: और मांगो, मैं तैयार हूँ, मांगो मांगो।
4: सर अगर मुझे आने जाने के लिए कार,
1: कार, अरे दे दी, समझ गए ना, और मांगो मांगो मांगो। नाउ कम टू द पॉइंट, बी क्विक, क्विक, क्विक।
5: नहीं सर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
1: अच्छा अच्छा, मैं आधी समझूंगा, फिर वो आधी कहेगा, फिर मैं आधी। मैं समझ गया समझ गया, तुम जो आधी बात कह रहे हो ना वो मैं पूरी समझ गया। अरे बेटे तुमने इतनी चीजें मांगी, मैंने सब दे दी। देखो ना, अब एक चीज हम तुम्हें अपनी चॉइस की देना चाहते हैं।
4: अपनी चॉइस की?
0: हाँ। अरे तुम यहाँ अभी तक खड़े हुए हंस रहे हो? हाँ? तुमने रंजीत से बात किया नहीं?
1: अरे वही तो कर रहा हूँ, लेकिन ये कार, कोटी, एसी, डीसी और बरसाती मांग रहा है।
0: अरे बरसाती मांग रहा है, पागल है? अरे हम तुम्हें रेनकोट देंगे, जूते देंगे, चप्पल देंगे, मोजे देंगे, छतरी देंगे, सब कुछ देंगे।
1: और देंगे अपनी किटी।
4: हाँ। किटी
1: किटी किटी
4: किटी किटी
1: किटी।
5: ओ अब समझा, किटी यानी के बिल्ली।
0: बिल्ली नहीं, हमारी प्यारी सी किटी,
1: जिसे हमने बड़े प्यार से पाला है।
5: नहीं सर, उसे आप खुद ही पालिए, मुझे नहीं चाहिए।
1: ओफो माई डार्लिंग
0: किटी,
1: मेरी आंखों का तारा
0: किटी,
1: मेरे जिगर का टुकड़ा
0: किटी।
5: ओ सर मुझे नहीं चाहिए बिल्ली, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है।
1: ओ यू डफर, किटी नहीं,
0: हमारी रंजीत।
6: अभी आपने वीएम आनंद की लिखी झलकी सुनी, अधूरी बात। निर्देशक थे विजय दीपक छिब्बर। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न हुआ, अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे

0: मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता, केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के

0: साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
1: सोशल मीडिया हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म द वे सिटीजन्स रिसीव, शेयर एंड रेस्पॉन्ड टू इन्फॉर्मेशन। यू शुड यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नॉट ओनली टू इन्फॉर्म द एंगेज बट ऑल्सो टू लिसन, अंडरस्टैंड एंड रेस्पॉन्ड टू कंसर्न्स ऑफ द पीपल।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जाँच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जाँच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के दो लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमरीका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियेला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके, दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में चलती का नाम गाड़ी फिल्म के गाने के साथ। मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार SD बर्मन।

हर रोज शाम सुनिए सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत, जिसकी प्रायोजक है विकू वज्रदंती। मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।

हमारी अगली पेशकश आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में लीडर फिल्म से बोल हैं शकील बदायूनी के और तर्ज नौशाद की।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज में कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना। SH बिहारी हैं गीतकार और संगीतकार हैं OP नैयर।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए मुकेश और कंचन की आवाजों में धर्मात्मा फिल्म का गाना। गीतकार हैं इंदिवर और कल्याण जी आनंद जी हैं संगीतकार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
4: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
5: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
4: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
6: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
4: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में कटी पतंग फिल्म का गाना। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे कटी पतंग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी थे गीतकार और संगीतकार थे आर डी बर्मन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में चाइना टाउन फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं रवि।

चाइना टाउन फिल्म के गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ।

0: और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: श्रोताओं नमस्ते। आज बात एक ऐसे अभिनेता की जो चरित्र भूमिकाएं निभाते हुए भी अपने हर किरदार को यादगार बनाने का हुनर रखते हैं। अपनी भावपूर्ण आँखों और संवाद अदायगी के अंदाज से चेहरे पर मुस्कान खिला देते हैं। आज के फनकार हैं अभिनेता, निर्देशक, लेखक और नाटककार उत्पल दत्त।
1: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।

0: सब गोलमाल है।
1: उत्पल दत्त, ये नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने वो सारे किरदार तैर जाते हैं जो उनके अभिनय से अमर हो गए हैं। फिर चाहे वो मूछों के दीवाने गोलमाल के भवानी शंकर हों, या पढ़ी लिखी बहू लाने के सख्त खिलाफ किसी से न कहना के कैलाशपति, इन अतिशयोक्ति पूर्ण किरदारों में उत्पल दत्त के अलावा किसी और की कल्पना हम कर ही नहीं सकते।

जिस तरह उत्पल दत्त के अभिनय और हाव भाव को भूलना मुश्किल है, उसी तरह मुश्किल है उनके अनोखे अंदाज में कहे कुछ शब्द, जैसे अच्छा हैं या चौंक कर उनका ई कहना। वो इन कुछ शब्दों में ही अपने अलग अलग भाव बड़ी आसानी से प्रकट कर देते और दर्शक उनके इन भावाभिव्यक्ति पर लोट

0: उत्पल दत्त का अभिनय इतना स्वाभाविक लगता कि दर्शकों को वो अपने आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति की याद दिला जाते। अपने मजाहिया अंदाज वाले किरदारों के लिए लोकप्रिय हुए उत्पल दत्त कभी बेवजह हंसाने की कोशिश करते नजर नहीं आते, बल्कि वो अपने सहज अभिनय से ही लोगों को पेट दुखते तक हंसने पर मजबूर कर देते और उनके चेहरे पर ऐसी किसी कोशिश का निशान तक नहीं दिखता।
1: सिर्फ आलू का पराठा क्यों बेटा, मैं तुम्हें कलकत्ते का राजभोग खिलाऊंगा, दिल्ली का सोन हलवा, मथुरा

0: बनारस का, बनारस का
1: कलाकंद,
0: कलाकंद खिलाऊंगा।
2: मगर सर इतनी सारी मिठाइयां।
0: अरे बेटा नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो पुलिस की मार कैसे सहोगे बेटा।
2: पुलिस की मार,
0: पुलिस की मार।
3: उत्पल दत्त के सहज अभिनय के पीछे उनकी रंगमंच में की गई सालों की मेहनत चमकती है। 29 मार्च 1929 को उस वक्त पश्चिम बंगाल और अब बांग्लादेश में स्थित बारिसल में उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा कलकत्ता में पूरी हुई। इस दौरान ही अपनी युवावस्था में उनका रुझान अंग्रेजी थिएटर की ओर होने लगा। 1947 में वो थिएटर ग्रुप से जुड़ गए और अभिनय करने लगे। उनके पहले ही किरदार ने मशहूर रंगमंच निर्देशक जेफ्री कैंडल का ध्यान आकर्षित किया। उत्पल दत्त उनकी थिएटर कंपनी के साथ 2 सालों की भारत पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों की लंबी यात्रा में शामिल हो गए।

की दुनिया ने उत्पल दत्त के लिए विचारों की एक नई राह खोल दी। उन्होंने अपने थिएटर ग्रुप की स्थापना की, जिसका नाम रखा लिटिल थिएटर ग्रुप। शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, गोर्की, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे देश विदेश के बड़े बड़े दार्शनिक, लेखक और समाज सुधारकों की कहानियों पर वो नाटक रचने लगे। एक वक्त के बाद उत्पल दत्त को ये एहसास हुआ कि वो अपने नाटकों से जो संदेश आम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें भारतीय पृष्ठभूमि के नाटक रचने होंगे। यहाँ से वो एक नाटककार और लेखक की भूमिका में ढल गए। उनके लिखे कई नाटक आज भी बदलाव लाने वाले नाटकों के तौर पर पहचाने जाते हैं।

उत्पल दत्त इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। उनको रंगमंच पर एक ऐसी शख्सियत के तौर पर पहचाना जाता है जो कला के माध्यम से समाज सुधार की बात करते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध नाटकों में शामिल हैं ओंगार, टीनेर तलवार, फेरारी फौजी, आज केर शाहजहां, मानुषेर अधिकार, लोहा मानव, बैरिकेट, दूस्वप्नार नगरी, ए बार राजार पाला और कल्लोल। अपने कुछ नाटकों में उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों पर चोट करने का साहस किया। कल्लोल के लिए उन्हें जेल में कुछ महीने भी बिताने पड़े, लेकिन वो अपने विचारों से टस से मस न हुए और सामाजिक जागरण तथा बदलाव की बातें करते रहे।

का फिल्मों में आना भी रंगमंच के कारण ही संभव हुआ। रंगमंच में उनको ओथेलो की भूमिका में देख बांग्ला फिल्मकार मधु बोस

ने अपनी फिल्म माइकल मधुसूदन में मुख्य भूमिका के लिए चुना। ये फिल्म क्रांतिकारी भारतीय कवि माइकल मधुसूदन दत्त के जीवन पर आधारित थी। इसके बाद उत्पल दत्त कई बांग्ला फिल्मों में नजर आए। इनमें शामिल है मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म भुवन शोम। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया।

बांग्ला फिल्मों की बातें करें तो उत्पल दत्त वहाँ अलग अलग भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ते रहे। 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित फिल्मकार सत्यजीत रे की आखिरी फिल्म आगंतुक में उत्पल दत्त के किरदार मनमोहन मित्रा को सराहना मिली। सत्यजीत रे की ही फिल्म जॉय बाबा फेलूनाथ में मगनलाल मेघराज के किरदार में उत्पल दत्त एक विलेन की भूमिका में दिखे। उनकी कुछ उल्लेखनीय बांग्ला फिल्मों में भुवन शोम, आगंतुक, जॉय बाबा फेलूनाथ के साथ ही नाम शामिल है पद्म नादिर माझी का।

सात हिंदुस्तानी फिल्म से हिंदी फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले उत्पल दत्त जिस भूमिका में होते उसमें इस तरह ढल जाते कि बस वो किरदार के रूप में ही नजर आते। जैसे द गुरु फिल्म में सितार वादक जाफर खान के किरदार को वो बड़ी ही सहजता से निभाते नजर आते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे कि वो एक अभिनेता नहीं बल्कि एक सितार वादक ही हों। वहीं बासु चटर्जी की फिल्म शौकीन में उनके किरदार जगदीश भाई अपने दोस्तों के साथ वाकई शौकीन और शातिर नजर आते हैं।

दत्त 1950 में कलकत्ता के एक स्कूल में इंग्लिश टीचर थे और अपने विद्यार्थियों के प्रिय हुआ करते थे। कुछ ऐसा ही वास्तविक किरदार उन्होंने निभाया फिल्म गुड्डी में। गुड्डी में प्रोफेसर गुप्ता उर्फ मामा जी के किरदार में ढलकर फिल्मी दुनिया को असली मानने वाली फिल्म की हीरोइन गुड्डी को फिल्मी दुनिया की वास्तविकता दिखाने का वो प्रयास करते हैं। इस फिल्म के जरिए न जाने कितने लोगों के लिए वो एक टीचर बनकर उनका दिल जीतने में कामयाब हुए होंगे।

जहाँ एक और गुड्डी में उनका किरदार फिल्मी दुनिया की असलियत बताता है, वहीं फिल्म रंग बिरंगी में वो नजर आते हैं पुलिस इंस्पेक्टर धुरंधर भाटावड़ेकर के रूप में, धुरंधर भाटावड़ेकर जो फिल्मों और

फिल्मी दुनिया के सभी लोगों से नफरत करता है। फिल्म रंग बिरंगी में उनकी एंट्री तकरीबन फिल्म के अंतिम चरण में ही होती है, लेकिन उनके आते ही जैसे फिल्म की पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द ही घूमने लगती है। कुछ सीन्स में ही नजर आने के बावजूद धुरंधर भाटावड़ेकर हमें याद रह जाते हैं और फिल्म में अपने अभिनय का एक अलग ही रंग भर देते हैं।

अभिनय में माहिर उत्पल दत्त फिल्मों में नहीं आना चाहते थे, ये जानकर शायद आपको आश्चर्य हो, क्योंकि उनका पूरा ध्यान रंगमंच की ओर ही था। वो अपनी कला का उपयोग समाज को बदलने में करना चाहते थे, लेकिन उनका कहना था कि फिल्मों में वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। कई बार तो वो फिल्म करके भूल भी जाते कि उन्होंने कौन से किरदार निभाए और फिल्म की कहानी क्या थी, लेकिन ये उनका सहज अभिनय ही था जो दर्शकों को यूं बांध लेता कि वो कभी उन किरदारों को भूल ही नहीं पाते थे।

0: उत्पल दत्त ने कई किरदार निभाए हैं। बांग्ला और हिंदी फिल्मों को मिलाकर तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उनके नाटकों की अलग ही गिनती है, जिसमें से कुछ उन्होंने खुद लिखे। उत्पल दत्त अपने चेहरे, हाव भाव और चश्मे के भीतर से झांकती आंखों से कुछ यूं अभिनय करते कि मानो उनका पूरा व्यक्तित्व ही किरदारों के अनुसार बदल जाता। उस पर संवाद अदायगी के दौरान आवाज का उतार चढ़ाव देखने वाले को बांध लिया करता। कभी उनके किरदार बेहद सुलझे हुए होते तो कभी बिल्कुल अनोखे।
1: नहीं पूरा।

उत्पल दत्त के निभाए किरदारों की बात आती है तो जहां हम उन्हें कॉमेडी किरदारों में ज्यादा याद करते हैं, वहीं जब जब उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई बिल्कुल अलग नजर आए। उन्हें खलनायक वाले किरदार में देखकर हम कभी ये सोच ही नहीं सकते कि ये वही अभिनेता हैं जो कॉमेडी करते नजर आते हैं। उन्हें खलनायक बने हमने देखा फिल्म अमानुष में मुनीम घोषाल के रूप में, वो साहू जी बने नजर आए फिल्म थी बरसात की एक रात, द ग्रेट गैम्बलर में डॉन सक्सेना, तो इंकलाब में सीताराम का किरदार उन्होंने निभाया।

उत्पल दत्त के सहज अभिनय को कई बार सराहा गया। यूं तो दर्शक हमेशा ही उनके किरदारों को पसंद करते रहे, लेकिन उन्हें कई बार पुरस्कारों के जरिए भी प्रोत्साहन मिला। उन्हें कई पुरस्कार मिले, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सम्मान हैं: संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड।

अभिनय के साथ ही उत्पल दत्त ने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। इनमें शामिल हैं मेघ, घूम भांगर गान, झार, बैसाखी मेघ, माँ और इंकलाब के बाद। साल 1960 में उन्होंने रंगमंच और फिल्म अदाकारा शोभा सेन से शादी की। दोनों की इकलौती संतान विष्णु प्रिया दत्त भी आगे चलकर रंगमंच से जुड़ी और उससे संबंधित काम करती हैं।

16 अगस्त 1993 को कलकत्ता के एक निजी अस्पताल में उत्पल दत्त का हृदयाघात से निधन हो गया। अंतिम दिनों तक वो अभिनय में सक्रिय रहे। टीवी शो व्योमकेश बख्शी में उनका किरदार और आखिरी फिल्म मेरा दामाद रही। ये फिल्म उनकी मृत्यु के 2 साल बाद रिलीज हुई। उत्पल दत्त भले ही इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन वो अपने पीछे अनगिनत किरदारों की वो दुनिया छोड़ गए जो किरदार आज भी हमें हंसाते हैं और सिखाते हैं जीवन जीने की कला।

आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था सहज अभिनय, भावपूर्ण अदायगी और आँखों से अपने भाव जाहिर करने वाले अभिनेता, निर्देशक, लेखक और नाटककार।

0: शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है किशोरदन? एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छायांकित कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: छाया गीत के प्रायोजक है वीको वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, एक छोटे से कमरे के कोने में एक लड़की खिड़की के पास बैठी है। खिड़की खुली है, चांद की रोशनी उसके चेहरे पर उतर आई है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। उसकी आंखें बार बार आसमान में चांद को देखती हैं और फिर उस रास्ते पर टिक जाती हैं जहां से उसे किसी के आने की उम्मीद है। दूर कहीं नदी के किनारे खड़ा युवक अपनी हथेली हवा में फैलाकर मुस्कुरा देता है और पूरी रात चांद दोनों के बीच एक खामोश संदेशवाहक बन जाता है।

हवा और ठंडी हो गई, पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे हैं, जुगनू और चमकने लगे हैं, चांद जैसे मुस्कुरा रहा है। रात का सन्नाटा अब डरावना नहीं बल्कि प्यार से भरा हुआ लग रहा है। लड़की ने खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला, हवा ने उसकी उंगलियों को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसका हाथ थाम लिया हो और थपथपा दिया हो। तुम आए थे ना, लड़की ने पूछा। उस रात किसी ने किसी को नहीं देखा, फिर भी दोनों ने एक दूसरे को बहुत करीब से महसूस किया था।

जब चांद, तारे, चांदनी, नदी, पहाड़, हवा और रात की खामोशी किसी प्रेम कहानी के साथी बन जाएं, तो फिर दूरियां भी मोहब्बत को रोक नहीं पाती। चांद आज भी हर रात निकलता है, हवा आज भी खिड़कियों को छूती है, थपथपाती है, जुगनू आज भी अंधेरे में रोशनी बिखेरते हैं, और कहीं न कहीं दो दिल आज भी उसी चांदनी रात में एक दूसरे से मिलने की दुआ करते हैं। रात का सन्नाटा तब डरावना नहीं, बल्कि प्यार से भरा हुआ लगता है।

इस अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। तारे उस रात प्रेमी युगल की अधूरी बातें सुनते रहे, जुगनू उनकी उम्मीदों की तरह टिमटिमाते रहे, नदी उनके प्यार की कहानी अपने साथ बहाती रही, पहाड़ उनकी मोहब्बत के गवाह बने खड़े रहे और हवा हवा हर पल एक दिल से दूसरे दिल तक प्यार का एहसास पहुंचाती रही। दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन उनके दिल एक ही धड़कन में बंध चुके थे अब।

रात और गहरी हो चुकी थी। भीगी भीगी चांदनी खिड़की से होकर कमरे में उतर रही थी। कमरे की खिड़की के पास बैठी वो सुंदर सी लड़की कांपती हुई आवाज में आसमान की ओर देखकर फुसफुसाई, सुन रहे हो ना? मैं आज भी उसी खिड़की पर बैठी हूँ तुम्हारे इंतजार में। जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकले, हवा ने अपना रुख बदल लिया। वो पहाड़ों को छूती हुई जंगलों से गुजरी और सीधे नदी किनारे जा पहुंची, जहां वो लड़का बैठा था। हवा ने उसके गालों को धीरे से छुआ। लड़का मुस्कुराया, बोला, हाँ, तुम्हारी खुशबू आज भी इस हवा में बसी है। रात का सन्नाटा अब खामोश नहीं था, उसमें दो दिलों की धड़कने थी।

उस रात चांद उनका आसमान था, तारे उनकी दुआ थे, हवा उनका संदेश थी, नदी उनकी आवाज थी, पहाड़ उनके सहारे बन गए और भीगी हुई चांदनी उनकी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत गवाह। उस रात चांद चांदनी बरसाने लगा था, तारे दुआ बन गए थे, जुगनू नदी के किनारे से उड़ते हुए हवा के साथ उस खिड़की तक पहुंच गए। नदी की हर लहर पुकार रही थी, दो दिल एक दूसरे के लिए ठहर गए थे। कमरे के कोने में बैठी वो प्यारी सी लड़की की आंखें अब चमक रही थी, उन आंखों में उम्मीद की चमक थी, हाँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये दूरी खत्म होगी, यही चांद यही तारे यही हवा हमारे मिलन के गवाह बनेंगे।

और अब छाया गीत से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: तिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादेव की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित

0: प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्सटेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट छटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure.